फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत

0: डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, सकारात्मक सोच हर मुश्किल को आसान बना देती है। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 325। 6:45 पर संगीत सरिता में आप सुनेंगे श्रृंखला विविध भारती के खजाने से, गायक के जी गिंडे से बातचीत, प्रस्तुति है छाया गांगुली की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर सुनिए आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित होगा पार्श्व गायिका लता मंगेशकर पर, प्रस्तुति मनीषा जैन की। 10 सुनिए पिटारा में उजाले उनकी यादों के, संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, संपादन सहयोग है झरना सोलंकी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 11 रंग तरंग कार्यक्रम, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 सुनिए सखी सहेली, 4 पिटारा में सुनिए सेहतनामा, पीसीओडी आईवीएफ इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। 5:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन, 7 सुनिए जयमाला कार्यक्रम, 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिए एक ही फिल्म से, आज की फिल्म है विक्टोरिया नंबर 203।

रात 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी नई कमीज। लेखन है कुमुद नागर का, निर्देशन है चंद्रप्रभा भटनागर का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा रणबीर कपूर पर, प्रस्तुति शकील बख्शी की। रात 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। 10:30 पर ढलती जाए रात। और रात 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

आधी रात बीत चुकी है। शक्तिबाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। संजीवनी लेकर हनुमान अभी तक नहीं आए। लक्ष्मण को हृदय से लगाकर श्री राम विलाप कर रहे हैं। हे भाई, तुम तो कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। मेरे लिए तुमने माता पिता तक को छोड़ दिया। वन वन भटकते हुए शीत, घाम, वर्षा, आंधी सभी कष्ट सहे। अब तुम्हारे उस प्रेम को क्या हो गया? तुम उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि एक दिन मुझे मेरे प्रिय भाई का वियोग सहना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचन की मर्यादा को भी भुला देता। पुत्र, स्त्री, धन, घर परिवार, इस जगत में सब कुछ मिल जाते हैं। नहीं मिलता तो वो है सहोदर भाई। स्त्री के लिए ऐसे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा? मुझे परम हितकारी जानकर माता ने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को मेरे हाथों में सौंपा था। अब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? श्री राम के कमल सरीखे नैनों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ तो अद्वितीय और वियोग रहित हैं, किंतु अपने प्रिय भाई के लिए विलाप करते हुए मनुष्यों की दशा दिखा रहे हैं। ये भी उनकी एक लीला है। तभी वहां संजीवनी लेकर हनुमान आ पहुंचते हैं। उधर अनेक उपाय करके अपने भाई कुंभकर्ण को जगाकर रावण उसे सारी कथा सुना रहा है।

0: मित्रों नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम चुन लाए हैं सुविख्यात गायक केजी गिंडे से सुप्रसिद्ध गायक दिनकर कैकिणी की बातचीत, आइए सुनते हैं।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम आप सबको देश के जाने माने गायक कलाकार एवं राग संगीत के विद्वान पंडित केजी गिंडे, कृष्ण जी गिंडे से भेंट कराना चाहेंगे। नमस्कार पंडित जी।
2: नमस्कार
1: गिंडे जी। तो इस 60 साल की लंबी अवधि के कुछ अनोखे अनुभव संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बताने का कष्ट करेंगे?
2: अवश्य।
1: आपका जन्म कर्नाटक में हुआ, आपके पिताजी डॉक्टर थे और परिवार के अन्य सभी सदस्यों ने दूसरा व्यवसाय अपनाया। ऐसी स्थिति में केवल आपने संगीत क्षेत्र में प्रवेश क्यों और कैसे किया?
2: ये तो एक संयोग कहिए
1: जी।
2: मेरे बचपन में ही मेरे घर में संगीत का वातावरण रहा। मेरे पिताजी वैसे भजन कीर्तन करते ही थे, उसकी वजह से मेरे सबसे बड़े भाई जो सुविख्यात मेंदू यानी मस्तिष्क के तज्ञ न्यूरोसर्जन थे
1: जी, जी।
2: उनके प्रोत्साहन से मुझे ये इस कला में अधिक रुचि हुई और मैंने नाट्य संगीत बहुत सुना और 5वें वर्ष में मैंने पहली संगीत का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया।
1: अच्छा।
2: उसके बाद फिर मेरे बड़े भाई साहब बंबई आए और पंडित भातखंडे जी के द्वारा मुझे गुरुवर रतन जनकर के जी के पास
1: जी
2: मेरी आयु के 11 वर्ष से मुझे सौंपा गया।
1: यानी आपके बड़े भाई डॉक्टर
2: राम गिंडे
1: हाँ। वो भी काफी संगीत,
2: हाँ वो खुद भी गाते थे, हारमोनियम बजाते थे, फ्लूट बजाते थे।
1: अच्छा।
2: सारंगी भी बजाते थे
1: जी।
2: लेकिन वो व्यवसाय से उन्होंने गाना बजाना नहीं किया। वैसे तो मेरे सब भाई शास्त्रीय संगीत जिसको रागदारी संगीत हम कहेंगे
1: जी।
2: उसमें काफी रुचि रखते हैं।
1: अच्छा।
2: और इस तरह से मैं लखनऊ भेजा गया और तब से करीब करीब 38 साल मैंने गुरुजी के पास रहा। वो तो आप जानते हैं
1: पंडित
2: रत्नजनकर जी के पास
1: जी। हाँ। एक सवाल मैं करना चाहूंगा।
2: बोलिए।
1: जो कि आमतौर पे जिसको हम ले लिसनर कहते हैं
2: हाँ।
1: वो हमको क्या करते हैं
2: हाँ।
1: वो कहते हैं कि एक अच्छा गायक बनना हो तो आप क्या राय देंगे?
2: अच्छे गायक बनने के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा गुरु और पर्याप्त संगीत की साधना
1: जी।
2: ये सब सुविधा अगर हो तो मुझे विश्वास है कि अच्छा कलाकार अवश्य बन सकता है
1: जी।
2: लेकिन अच्छे गायन का प्रदर्शन सुनने का अवसर मिलना, इन सब बातों का होना आवश्यक है।
1: अच्छा। और एक सवाल है
2: हाँ।
1: एक अच्छा राग संगीत का श्रोता बनने के लिए क्या करना पड़ता है?
2: उसको जितना अधिक से अधिक वो रागदारी संगीत सुनता रहे तो अच्छा मार्मिक श्रोता अवश्य बन सकता है
1: जी। क्योंकि ये संगीत तो श्रवण विद्या है।
2: बराबर है।
1: जितना सुनेंगे
2: ज्यादा सीखने से ज्यादा सुनना ये आवश्यक है। और मैं समझता हूँ ये संगीत सरिता कार्यक्रम उसमें एक दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है
1: जी। हाँ, जी हाँ।
2: और उसमें से मुझे मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि एक सामान्य श्रोता भी इस कार्यक्रम के माध्यम से काफी रुचि लेने लगा
1: सकता है।
2: बिल्कुल।
1: तो एक श्रोता बनने के लिए एक तो चीज हुई कि सुनना जरूरी है।
2: अवश्य।
1: किस टाइप का म्यूजिक सुनना पड़ेगा उसको?
2: पहले तो कंठ संगीत जरा हजम करना बहुत मुश्किल होता है
1: जी। हाँ।
2: लेकिन इसलिए वो अगर वाद्य संगीत को सुने और तद अनुरूप अगर जो आजकल जिसको कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत या रागदारी संगीत के आधार पर जो फिल्मी संगीत आजकल कंपोज होता है ये रचा जाता है उसको भी अगर वो सुनता रहे तो कम से कम रागदारी संगीत के नजदीक आने लगता है
1: जी। अच्छा। आप जब संगीत की शिक्षा ग्रहण करते रहे
2: हाँ।
1: उस समय क्या आप काफी रियाज करते होंगे?
2: मैं रियाज अवश्य करता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी करता था
1: जी।
2: रियाज जितना आवश्यक था उतना ही मैंने किया। लेकिन मुझे सबसे बड़ा सुयोग ये रहा कि मुझे अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनने का अवसर अवश्य मिला और उसका फायदा मुझे बहुत मिला।
1: और आपको तो मैंने देखा है कि काफी बड़े बड़े उस्तादों के पीछे भी आप गाए हैं।
2: हाँ, मुझे अवश्य सभी
1: लाभ मिला।
2: बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों के पीछे मुझे गवाया है। बिल्कुल। खान साहब, फैयाज खान साहब, मुश्ताक हुसैन खान साहब, निसार हुसैन खान साहब, कई लोगों के पीछे मैंने गाया है।
1: तो मतलब ये है कि जैसे कि आजकल कहा जाता है घराने
2: हाँ,
1: तो अलग अलग घरानों के गाने जो हैं
2: हाँ।
1: और जो गवैये हैं
2: हाँ।
1: उनका गाना सुनना और उनके साथ संगत करना
2: हाँ।
1: इसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा
2: अवश्य अवश्य। लेकिन उसमें एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि एक विद्या एक गुरु के पास सीखते हुए मेरा सुधा भी ऐसा रहा कि मुझे रतन जनकर जी ने
1: जी
2: सभी गायकियों की बारीकियां समझाते हुए उन्होंने एक बुनियादी तालीम ऐसी दी कि जो मैं हर एक का गाना अनुकरण कर सकता था।
1: अच्छा,
2: ये उनकी शिक्षण की दिशा थी।
1: बिल्कुल।
2: और उसी वजह से मैं विभिन्न घरानों के गायकों के साथ भी गा सका।
1: जी हाँ, नहीं ये एक अच्छी बात ये है
2: हाँ।
1: कि रतन जनकर जी
2: हाँ।
1: एक कूप मंडूक वृत्ति के नहीं थे।
2: बराबर।
1: उन्होंने अपनी तो तालीम दी
2: हाँ।
1: लेकिन हम लोगों का या आपका कहिए
2: बराबर है
1: कि दिमाग खोला
2: बराबर
1: इसके वजह से
2: हाँ।
1: हम ये गाना अच्छा ये घराना अच्छा वो ठीक नहीं ऐसा हम
2: हमारे हमारे गुरु जी आपको जानते ही हैं कि हर एक विद्यार्थी को अपने जो गुण हैं उसको विकास करवाते थे अपना अनुकरण नहीं करवाते थे
1: जी।
2: विद्यार्थियों में जो पोटेंशियलिटी है
1: जी
2: उसी को वो आगे चलाना चाहते थे उसी को विकास करवाना चाहते थे और इसी वजह से उनके जितने शिष्य हैं वो सभी अपने अपने तई उन्होंने अपनी कला में विकास किया है।
1: क्या संगीत विषय को व्यवसाय की दृष्टि से लिया जा सकता है? जाहिर है कि सभी छोटी छोटी के कलाकार तो बन नहीं सकते
2: हाँ।
1: तो ऐसे अभिलाषी व्यक्तियों के लिए आप क्या सुझाव देंगे?
2: संगीत को व्यवसाय बनाना एक नसीब की बात होती है
1: जी।
2: जैसे आप खुद ने कहा है कि सभी कोई चोटी के कलाकार नहीं बन सकते हैं।
1: लेकिन आजकल आपने देखा
2: हाँ।
1: कि यूनिवर्सिटी में भी संगीत चलता है
2: हाँ, बराबर है।
1: तो सभी संगीत लेना चाहते हैं व्यवसाय बनाना

0: एक गहराई से विकास होना चाहिए, शायद वो उसका स्वरूप कुछ और होने लगा है। और सामान्य श्रोताओं के तब जनसाधारण के लिए हम अगर संगीत करना चाहेंगे तो बराबरी के स्तर पर उसका विकास होगा, ना कि गहराई की ओर से, क्योंकि इसके लिए एक साधना के लिए काफी अरसे की जरूरत होती है।
1: अच्छा, तो गिंडे जी, प्रश्न तो काफी हैं हमारे इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी भाइयों बहनों को, हम दोनों की तरफ से हम धन्यवाद देते
0: हैं। और से भी और आपकी ओर से भी जी। मैं फिर से अपनी ओर से सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: विविध भारती के खजाने से आज हम चुन लाए थे सुविख्यात गायक केजी गिंडे से सुप्रसिद्ध गायक दिनकर कैकिणी की बातचीत। ये बातचीत विविध भारती में वर्ष 1985 में संगीत सरिता के अंतर्गत प्रसारित हुई थी। प्रस्तुत करता थी छाया गांगुली। मित्रों, आइए सुनते हैं केजी गिंडी का गाया राग चारुकेशी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए पूरे आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमले ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2,000 रूपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। इसके जरिए बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के युवाओं के नदी सफाई अभियान की सराहना की। एसआईआर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का राहुल गांधी पर पलटवार। समान नागरिक संहिता पर बोले मुख्यमंत्री, प्रदेश में बहुविवाह स्वीकार नहीं किया जाएगा। और 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित, आईबीए और बैंक यूनियनों में बनी सहमति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात की 138वीं कड़ी में प्रदेश के युवाओं के नदी सफाई अभियान की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक व्यक्ति से शुरू हुआ छोटा प्रयास धीरे धीरे बड़ा अभियान बन सकता है और इससे ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। उन्होंने इसे जन भागीदारी की अच्छी मिसाल बताया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती आने वाली है। इस मौके को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता पर बापू के संदेश को दोहराया और लोगों से अपने आसपास सफाई बनाए रखने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है। कल भोपाल में भाजपा कार्यालय में हुई पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से अपनी पार्टी और गठबंधन तक नहीं संभल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच बढ़ती दूरी का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी को पहले अपना कुनबा संभालना चाहिए। उन्होंने एसआईआर पर कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर बार बार आरोप लगाकर लोगों के बीच भ्रम और अविश्वास पैदा कर रही है। भोपाल के रविंद्र भवन में कल विश्व हिंदू परिषद की ओर से अशोक सिंघल जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता को समय की मांग बताते हुए कहा कि प्रदेश में बहुविवाह स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक देश और प्रदेश में दो तरह के कानून नहीं चल सकते।
1: एक विधान एक प्रधान, तो मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू हो गया। ये हमारे सौभाग्य की बात। तो हम जब वहां बात कर रहे थे, जब यूसीसी पारित करने वाला विषय चला, उस विषय के लिए लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा एसएमएस डाल करके इस विषय को फैलाने का काम किया। 10 लाख से ज्यादा सुझावों का संकलन हमने समाज के बीच में जाके किया। 40% से ज्यादा मुस्लिमों ने समर्थन किया।
0: सीहोर जिले में कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 36 सड़कों के निर्माण का भूमि पूजन किया। इन सड़कों से 41 बसाहटों के गांव मुख्य मार्गों से जुड़ेंगे और 19,000 से ज्यादा लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। श्री चौहान ने अधिकारियों को सभी सड़कों का निर्माण 1 साल में पूरा करने और गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने इछावर में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की भी घोषणा की, जिसके लिए 50 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि इस साल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए 8 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर कल रात IBA और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। सीहोर जिले के बुधनी में दूधी की लकड़ी से निर्मित मनोहारी खिलौना बनाए जा रहे हैं। ये खिलौने पर्यावरण के लिए अनुकूल माने जाते हैं, क्योंकि इनमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर जिले के संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
3: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वोकल से लोकल का सबसे सटीक उदाहरण है सीहोर जिले के बुधनी में दूधी की लकड़ी से निर्मित मनोहारी खिलौनों उद्योग। बुधनी के खिलौने पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली माने जाते हैं क्योंकि इनमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के जिला महाप्रबंधक श्री अनुराग वर्मा ने बताया कि
4: बुधनी के जो परंपरागत शिल्पी हैं उनके द्वारा दूधी लकड़ी से खिलौनों का निर्माण किया जाता है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी फेमस है। उनके लिए शासन ने एक खिलौने क्लस्टर का बुधनी में निर्माण किया क्योंकि हमारे जो परंपरागत शिल्पी हैं एक ही जगह सभी लोग आए जिससे कि इनको बड़ा मार्केट मिलेगा।
3: ये उद्योग लगभग 100 से 200 वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ की विश्वकर्मा समुदाय की कई पीढ़ियां इस कला को आगे बढ़ा रही है।
5: मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा है। सरकार की मदद से अब मैं और मेरा परिवार इन लकड़ी के खिलौनों का व्यवसाय कर रहे हैं। आज हमारा यह व्यवसाय हमें आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है।
6: मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा है। पहले तो पारंपरिक उपकरणों से हम ये खिलौने बनाते थे लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लकड़ी के खिलौने उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है जिसके चलते अब हम नवीनतम उपकरणों का प्रयोग खिलौने बनाने में कर रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान।
0: उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल पूजा अर्चना के बाद अब्दालपुरा स्थित अपने पैतृक मकान पर खुद गिरी चलाकर इसे तोड़ने की शुरुआत की। अब्दालपुरा में करीब 272 मकान सड़क चौड़ीकरण की सद में हैं, जिनमें हिंदू मुस्लिम और बोहरा समुदाय के लोग भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री की बहन और नगर निगम सभापति का मकान भी इसकी सद में आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए शहर के में स्थानीय लोगों का सहयोग जरूरी है। इसके अलावा डॉक्टर यादव ने पीएम ई बस सेवा और उज्जैन दर्शन सेवा की भी शुरुआत की। आज विश्व रेबीज दिवस के मौके पर लोगों को इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। रेबीज के लक्षण सामने आने के बाद बीमारी लगभग हमेशा घातक होती है लेकिन समय पर इलाज शुरू किया जाए तो मौत को रोका जा सकता है। संक्रमित कुत्ते के काटने या खरोंच पर घाव को तुरंत साबुन या बहते पानी से करीब 15 मिनट तक धोना चाहिए। बिना देरी के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। घाव पर मिर्च तेल राख या कोई भी घरेलू उपचार नहीं करना चाहिए। इसी कड़ी में कटनी में भी आज आमजन को रेबीज जैसी घातक बीमारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शाजापुर जिले के शाजापुर में कल सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगन मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों और माताओं से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा की जानकारी ली। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अब बारिश का दौर थमने लगा है और अगले 4 दिनों में कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से उज्जैन इंदौर ग्वालियर चंबल संभाग में तेज धूप खिलने लगेगी। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। आपको समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने हितग्राहियों से संवाद कर शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। नर्मदापुरम में सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। हाल ही में आंगनबाड़ी केंद्र बांसखेड़ा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैतूल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सोयाबीन फसल में पीला मोजैक रोग से फसल प्रभावित होने पर फसल की वास्तविक स्थिति का प्राथमिक आकलन किया जाएगा। झाबुआ में सेवा संकल्प अभियान के तहत कन्या शिक्षा परिसर रोटला में करियर काउंसलिंग और मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। और जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नौजवान फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गाना साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
1: के सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए बुजदिल फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संग।

रही है कार्यक्रम हम है रही प्यार की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म के गाने के साथ, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

आज हम याद कर रहे हैं स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर को, बॉलीवुड संगीत के इतिहास में एक बहुत ही अहम नाम। अभी आपने सुना मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर की आवाज में गाया ये गाना। आइए अब सुनते हैं येसुदास के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना, त्रिशूल फिल्म से साहिर लुधियानवी के बोल खयाम का संगीत।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: टावर हाउस से सुनते हैं अगला गाना, मुकेश के साथ लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

हम है रहे प्यार के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं राजा रानी फिल्म से ये गाना। किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है संगीत की गहराई है भावों में मिठास है
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम
0: वो है संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। फिल्म है रामपुर का लक्ष्मण।

0: कार्यक्रम का अगला गाना तलाश फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला।

इसी के साथ आज का हमेरा ही प्यार की कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे थे आज कार्यक्रम में लता मंगेशकर की आवाज में सारे गाने। जानिए इनके बारे में और बातें आज के फनकार कार्यक्रम में 9:30 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवन प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
2: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खूंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119

0: 125वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
1: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 30 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, एसआईटी गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। देश के वीर सपूतों की जब भी बात होती है, शहीद भगत सिंह का नाम पूरा देश गर्व से लेता है। महज 23 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हुए भगत सिंह आज भी साहस और विचारों के इनकलाब की मिसाल है। 6 जून 1923 को दिल्ली की सत्र अदालत में उन्होंने कहा था, पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। आज इनके याद के दिन पर विविध भारती परिवार की तरफ से शहीद आजम भगत सिंह को शत शत नमन। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से आप सुन रहे हैं ये गाना, सुखविंदर सिंह और ए आर रहमान की आवाज में, ए आर रहमान का म्यूजिक।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे हैं मोहब्बत है फिल्म से गाना, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, दिल तो पागल है इस फिल्म से। उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल, उत्तम सिंह का संगीत।

दिल तो पागल है फिल्म से आप सुन रहे थे उदित नारायण के साथ लता मंगेशकर की आवाज। लता मंगेशकर का नाम इंडियन म्यूजिक और हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अलग ही जगह रखता है। अपनी आवाज और अपने लंबे म्यूजिकल करियर के थ्रू उन्होंने कई जनरेशंस को अपने गानों से जोड़ा। उनके गाने आज भी लोगों की यादों का हिस्सा है। आज उनकी याद का दिन है। जानिए उनके बारे में कुछ बातें, कुछ किस्से 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में। चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। बेवफा फिल्म से बोल समीर के संगीत नदीम श्रवण का।

0: संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

आज रणबीर कपूर का बर्थडे है। 2007 में सांवरिया से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले रणबीर ने वेकअप सिड, रॉकस्टार, बर्फी, ये जवानी है दीवानी और संजू जैसी फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी एक्टिंग से एक खास फैन फॉलोइंग बनाई। विविध भारती परिवार की तरफ से रणबीर कपूर को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। रणबीर कपूर की मटरगश्ती आप सुन रहे हैं तमाशा फिल्म से। मोहित चौहान की आवाज में इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

शेखर अफजियानी और कैरलिस्ता मोंटियारो की आवाज़ में आप सुन रहे हैं अनजाना अनजानी फिल्म से ये गाना। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अनविता दत्त के साथ इन्होंने ये गाना लिखा है, विशाल शेखर का संगीत।

हम आपको याद दिला दें, आज रात का आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर केंद्रित होगा रणबीर कपूर पर। कार्यक्रम का अगला गाना अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में तू झूठी मैं मकार फिल्म से, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल प्रीत

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम चार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते थे दो लाइन चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में तुमने कूदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

28 सितंबर 1929 को इस दिव्य स्वर का आगमन हुआ। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती मंगेशकर के जीवन में उनकी पुत्री के रूप में तब किसे पता था कि यह स्वर एक दिन अपने आभा से न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व को आलोकित करेगा।

संगीत प्रेमियों के हृदय मंदिर में गूंजता लता जी का ये सात्विक स्वर। लता जी की आयु मात्र 13 वर्ष ही थी जब उनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर इस दुनिया से विदा हो गए और लता जी के संघर्षमय जीवन की शुरुआत हुई। भाई बहनों में वरिष्ठ होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी भी उन पर थी। संकट की इस घड़ी में मददगार साबित हुए नवयुग चित्रपट संस्था के मालिक मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी। किशोर वयीन लता मंगेशकर को गाने का पहला अवसर

0: बोला तो वो था एक मराठी भावगीत।
1: महाराष्ट्री होने के नाते मराठी फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों से लता जी की संगीत यात्रा का शुभारंभ स्वाभाविक था। सुधीर फड़के, दत्ता डावजेकर, वसंत प्रभु, वसंत देसाई, यशवंत देव, हृदयनाथ मंगेशकर जैसे नामी गिरामी संगीतकारों की रचनाओं को अपने शुचिरभूत मधुर स्वर से श्रृंगारित किया है लता मंगेशकर ने। भक्ति गीत हो या भावगीत, लोकगीत हो या सिने संगीत, लता जी के गाए मराठी गीतों के विशाल साम्राज्य से कुछ गीतों की झलक सुनते हैं।

0: स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने मराठी फिल्मों के लिए आनंद घन के नाम से संगीत निर्देशन भी किया।
1: ये फिल्में हैं मराठा तितुका मेळबाबा, राम राम पाहुणा, तांबडी माती, मोहित्यांची मंजुळा और साधी माती।

हमारे देश की लगभग 36 प्रादेशिक भाषाओं में लता मंगेशकर ने गीत गाए हैं, जिनमें प्रमुख हैं मराठी, बांग्ला, राजस्थानी, डोगरी, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, असमिया, तेलुगु, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, सिंधी और तमिल। बांग्ला संगीत जगत को लता मंगेशकर का विशेष योगदान रहा। सलिल चौधरी और हेमंत कुमार जैसे मूर्धन्य संगीतकारों की इन रचनाओं को लता जी के स्वर में सुनकर बंग भूमि ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बंगाली संगीत प्रेमियों को परितृप्त होते देखा जाता है।

अपने संगीत जीवन के आरंभिक समय में लता जी कुंदनलाल सहगल और नूर जहां जैसे प्रस्थापित गायकों की शैली से प्रभावित थीं। कालांतर में उर्दू की तालीम हासिल करके लता जी ने अपनी भाषा को और अधिक समृद्ध किया।

0: शास्त्रीय संगीत के नित्य अभ्यास और साधना से ही ऐसे दैवीय स्वर किसी कंठ से निस्सृत होते हैं। लता मंगेशकर के स्वर में भक्ति रचनाओं को सुनकर ही श्रवण भक्तों को नाद ब्रह्म की अनुभूति होती है।
1: संत तुलसीदास, संत मीराबाई, संत सूरदास, संत कबीरदास और गुरु नानक देव जी की रचनाएं शब्द लता जी के स्वर से जब निस्सृत होते हैं तो मन भक्ति भाव से भर उठता है।

मूर्धन्य गायक पंडित भीमसेन जोशी के साथ जब लता जी ने राम का गुणगान किया और नारायण आराधना की तो वातावरण भक्ति रसमय हो उठा।

0: यूं तो लता जी के संगीत संसार से कुछ मोती चुनना हमारे लिए अत्यंत कठिन है, परंतु फिर भी ऐसी रचनाओं को याद करते हैं जिनमें लता जी ने आंचलिक गायन शैली को पूर्णत्व प्रदान किया।
1: ये है राजस्थान की मांड।

श्रोताओं, हमारे जीवन की सभी अवस्थाओं को प्रभावित करने वाला कंठ है लता जी का। इस मंजुल स्वर में हमने कभी लोरी सुनी, तो कभी बचपन का गीत,

0: लता जी के संगीत सागर को इस कार्यक्रम की गागर में समेटना लगभग असंभव सा है। हमारे देश की पहचान है लता जी,
1: श्री कृष्ण के मुरली की तान है लता जी।

0: आलेख, शोध और स्वर
1: मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
2: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: अनूपपुर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात गांव के विकास से जुड़ी पहल की। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में वीबीजी रामजी मिशन के तहत जिला स्तरीय पंच सम्मेलन हुआ। इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ग्रामीण विकास और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर बात की। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि गांव का विकास ही विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा। अब बात बारिश के मौसम में राशन की। अनूपपुर में पात्र परिवारों को अगस्त और सितंबर दोनों महीनों का राशन एक साथ दिया गया। प्रशासन ने बारिश को देखते हुए पहले ही दोनों महीनों के खाद्यान्न सामग्री राशन दुकानों तक पहुंचा दी थी। इसी पात्र परिवारों को लगातार दो महीने राशन लेने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ी। इसी कड़ी में जिले में संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर समरसता संकल्प अभियान चलाया गया। 20 अगस्त से शुरू हुई कलश रथ यात्रा अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए 10 सितम्बर को अमरकंटक में सम्पन्न हुई। इस दौरान सामूहिक आरती, गुरुवाणी पाठ, भजन संध्या और समरसता संकल्प जैसे कार्यक्रम हुए। अभियान के जरिए संत रविदास के समता, सेवा और सामाजिक न्याय के संदेश को लोगों तक पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मैहर के कार्यक्रम से सिंगल क्लिक के जरिए अनूपपुर की 1,25,342 लाडली बहनों के खातों में करीब 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी। हर बहन के खाते में योजना के 1500 रुपए के साथ रक्षाबंधन के शगुन के तौर पर 250 रुपए भी दिए गए। अब रुख करते हैं जंगलों का, जहां साल के पेड़ों को बचाने की तैयारी चल रही है। अमरकंटक में साल बोरर कीट के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए विशेषज्ञों की कार्यशाला हुई। इसमें वैज्ञानिकों ने कीट की पहचान, निगरानी और उसके प्रकोप को नियंत्रित करने के तरीकों पर चर्चा की। जंगलों और पर्यावरण को बचाने के लिए अनूपपुर में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। कलेक्टर रत्नाकर झा ने सरकारी संस्थानों और सरकारी जमीन पर यूकेलिप्टस समेत विदेशी प्रजातियों के पौधे लगाने पर रोक लगा दी है। अब इनकी जगह स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल पेड़ पौधे लगाने पर जोर रहेगा। पर्यावरण के साथ बात युवाओं और राष्ट्र निर्माण की। अनूपपुर के पीएम श्री तुलसी महाविद्यालय में महर्षि अरविंद की जयंती पखवाड़े के तहत व्याख्यानमाला आयोजित हुई। विद्यार्थियों को महर्षि अरविंद की जीवन, कर्म योग और राष्ट्रप्रेम से जुड़े विचारों के बारे में बताया गया। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। जिले में 9वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है हमारे आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका, पोषण मेले और गर्म पके भोजन की गुणवत्ता की सामुदायिक निगरानी जैसी गतिविधियां हो रही हैं। और अब बात उन जलाशयों की जो जिले की जल सुरक्षा से जुड़े हैं। अनूपपुर के 15 चिन्हित जलाशयों की बांध सुरक्षा का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम जलाशयों की संरचनात्मक स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और दूसरे तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है। इस जांच में जोहिला, कंटूर, नानघाटी, बोहिता समेत जिले के 15 जलाशय शामिल हैं। जिले के लिए एक और सम्मान की खबर है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में तय लक्ष्य से ज्यादा राशि जुटाने पर कलेक्टर रत्नाकर झा को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिले ने 3,63,000 रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 4,23,550 रुपए जुटाए। और अब बात सेवा और जनभागीदारी की। अनूपपुर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों की श्रृंखला चलाई जा रही है। जिला अस्पताल समेत जैतहारी, कोतमा, फुनगा, परसराजगढ़, अमरकंटक और दूसरे स्थानों पर भी शिविर लगाए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को मोजर बियर पावर प्लांट जैतहारी में भी रक्तदान शिविर होगा। इसी सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चल रहा है। अभियान की शुरुआत अमरकंटक में मां नर्मदा के पूजन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। जिले भर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। 2 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और आखिर में बात अनूपपुर के त्योहारों और भाईचारे की। ईद मिलादुन्नबी का त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन और कजलिया जैसे पारंपरिक पर्वों में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने हरतालिका तीज पर निर्जला व्रत रखकर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही 10 दिन तक चले गणेश उत्सव का भी जिले में शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण समापन हुआ। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे अनूपपुर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: मदन जी की यादें और भी शेयर की जाएं और मदन जी से जुड़ी कुछ और बातें हमारे साथ बांटिए, म्यूजिक रूम की बातें, रिकॉर्डिंग की बातें।
1: म्यूजिक रूम में मैं उनके कभी नहीं गया
0: जी।
1: म्यूजिक रूम में एक दफा उनके साथ मैं गया था, मास्टर जी के साथ,
0: सोनिक साहब के साथ।
1: हाँ, सोनिक साहब सावन भादों का बैकग्राउंड कर रहे थे उनकी।
0: अच्छा।
1: अपनी फिल्म का।
0: हाँ।
1: तो मुझे बोलते उत्तम यहाँ मदन जी का चलते हैं, वहां चल के बैठेंगे। तो मदन जी का पियानो था वो। दूसरी दफा मैंने उनका म्यूजिक रूम देखा, पहली दफा जब मैं सुनाने गया था वायलिन
0: जी,
1: दूसरी दफा ये मैं मास्टर के साथ अरेंजमेंट करता था
0: तब
1: उनका लिखता था। तब हम लोग ऐसे 3-4 दिन उनके म्यूजिक रूम में गए, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक लिखा। बस मेरी मदन साहब की ये यादें हैं। हाँ, एंड की जो याद है, लास्ट की, उनका गाना चल रहा था मौसम का गाना, दिल ढूंढता है
0: जी,
1: दिल ढूंढता है। गाना अरेंजमेंट किया ज्ञान वर्मा ने। ज्ञान वर्मा को कोई और रिकॉर्डिंग दी तो मुझे बोला उत्तम तू कंडक्ट कर ले।
0: तो इस गाने की रिकॉर्डिंग को आपने कंडक्ट किया?
1: इस गाने की जो फाइनल रिकॉर्डिंग है वो कंडक्टिंग मैंने की, म्यूजिक सारा उसका था।
0: अच्छा।
1: तो जब मैं कंडक्ट कर रहा था तो सामने मदन साहब बैठे हुए थे, मदन साहब, कौशिक साहब सब बैठे थे, भूपी जी गा रहे थे। तो मुझे इतना याद है कि वो गाना खत्म होते होते तक उनका सर जो है वो टेबल पे लगा हुआ था,
0: पैनल की टेबल।
1: ही डजंट रिमेम्बर कि गाना खत्म हो गया।
0: अरे बाप रे।
1: He was so drunk, कहतो या I don't know what state of mind he was. वो पूरे ऐसे बैठ के, बाद में गाना हम लोगों ने पास किया।
0: अच्छा।
1: भूपी जी ने और कौशिक साहब ने और मैंने, हम लोगों ने गाना सुना, ये टेक ओके है। He doesn't know anything. It was so pathetic.
0: ये दौर जो है वो निराशा का, बीमारी का,
1: लेकिन तमाम चीजों का दौर। गाना देखे, दिल ढूंढता है
0: जी।
1: तो जी देखिए वो गाना

0: वही पोएट्री है, उसको एक सैड और एक, और ये इसका बहुत चर्चा हुआ था इंडस्ट्री में।
1: जी, एक
0: मुझे
1: ही गाने
0: हमको
1: के।
0: याद है कि अरे यार मदन जी का क्या गाना आया, सैड भी है और हैप्पी भी है, बहुत चर्चा हुआ था इस गाने पे।
1: क्या प्यारी बात है,
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: और ये गाना जो है सैड वाला, ये मैं कंडक्ट कर रहा था, ये फिल्म सेंटर का गाना है
1: जी,
0: और 60-70 म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा ज्ञान ने, बहुत अच्छा म्यूजिक
1: इसमें एक
0: ऑर्केस्ट्रा।
1: मेटल फ्लूट सुनाई देती है।
0: हाँ, वो की फ्लूट है वो,
1: जी
0: उसकी मुरली जी ने बजाया है,
1: वाह
0: जो
1: वाह वाह,
0: सेक्सोफोन के बहुत
1: क्या बात है।
0: मुरली सिंह करके,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: पंचम जी के असिस्टेंट भी थे
1: बिल्कुल,
0: और हमने साथ में बहुत काम किया उनका।
1: मुरारी दादा को मैं विविध भारतीय लेके आया था और इनसे बहुत
0: हाँ
1: लंबी बातें रिकॉर्ड की
0: हाँ
1: थी।
0: वो मतलब ऐसी फ्लूट फिर इंडस्ट्री में बजी नहीं,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल,
0: उनसे शुरू हुई उन पे खत्म हो गई,
1: क्या बात
0: ऐसा
1: है
0: हुआ।
1: जी।

0: मदन जी की कुछ और यादें हैं।
1: मदन साहब की एक बात मुझे आज भी याद है। रोशन जी गुजरे थे
0: जी, अचानक उनका निधन हो गया था। अचानक।

0: हंसते हंसते।
1: एक पार्टी में थे वो,
0: तो शायद दूसरे दिन सुबह का टाइम था, उनकी बॉडी को ले जाना था यश, तो मदन जी लेफ्ट उनके बॉडी के बिल्कुल सर के पास बैठे हुए थे
1: जी जी
0: मदन जी, और हम लोग यहाँ, मैं था और काफी लोग खड़े हुए थे,
1: इंडस्ट्री के लोग, म्यूजिक के लोग वाले।
0: खड़े हुए, मैं बिल्कुल नजदीक खड़ा, तो मदन साहब यहाँ लिटरली गालियां दे रहे थे रोशन जी को।
1: अरे बाप रे,
0: लिटरली गाली, मैं आने गाली नहीं बता सकता
1: जी,
0: लिटरली माँ की गाली दी, लिटरली बहन की गाली दी, और कहा कि रोशन तू तो छोड़ के चले गया, अब मैं जवाब किसको दूंगा।
1: अरे बाप रे, अरे गजब,
0: आप सोचिए क्या भाव है,
1: क्या भाव है कि अब मैं जवाब किसको,
0: डेड बॉडी पड़ी हुई है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सारे तू चले गया, तू चले गया, मैं जवाब किसको दूंगा अभी,
1: किसके लिए म्यूजिक
0: बनाऊंगा।
1: अद्भुत बात है
0: ये, मुझे आज भी याद है।

0: और कुछ 15-20 साल 25 साल के बाद में हमारा एक सोनिक साहब का छोटा भाई राज, राज सोनिक जो
1: जी
0: मेरे यहाँ काम करता था, लास्ट तक मेरे साथ काम किया। हमारी कुछ बात नहीं, तो बोला मैं तो आपके बाजू में खड़ा हुआ था। मैंने कहा ये बात सही है? उन्होंने गालियाँ, बोले गालियाँ इतनी गालियाँ दे रहे थे कि हम सोच नहीं सकते। मतलब मदन जी को ये पता ही नहीं कि लोग बैठे हुए यहाँ पे एंड ही इज अब्यूजिंग हिम।
1: लेकिन वो इतने जज्बाती हो गए थे,
0: जज्बाती हो गए थे, इतना
1: जी
0: प्यार था, एक आत्मा का जिसको प्यार कहते हैं
1: वो था।
0: सारे तू तो चले गया, किसको जवाब दो? जैसे
1: क्या दौर था, क्या
0: जैसे
1: लोग थे।
0: जैसे संगीत ही चले गया हो ना, ऐसा हो गया ना।
1: जी
0: क्योंकि उस दौरान में बहुत रिस्पेक्ट थी एक दूसरे की। अगर आपने एक अच्छा गाना लिख दिया तो आपको लिखने वालों के 15 फोन आ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: एक साहिद साहब ने अच्छा गाना लिख दिया तो मजरू साहब भी फोन कर रहे हैं, आनंद बख्श भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है। तो आज अगर आप अच्छा कुछ करते हो तो उसको खत्म कैसे किया जाए ये सोचा जाता है।
1: जी
0: ये दौर में फर्क हो गया।
1: जी जी
0: वो दौर था प्यार का, अब दौर है दुश्मनी का।
1: जी जी जी
0: कि दुश्मनी कैसे की जाए।
1: आपने मदन जी का जिक्र किया और उसके बाद रोशन साहब का जिक्र आया, उनसे भी आपका एक नाता रहा है, उनसे जुड़ी यादें शेयर कीजिए।
0: बड़ी खूबसूरत, हम लोग पहली रिकॉर्डिंग बजाने गए, कुछ 7-8 बच्चे लोग थे।
1: अच्छा,
0: उन्होंने बुला लिया उनको, और मुझे याद है कि श्याम राव जी और भूपी जी और केरसी जी,
1: ये म्यूजिशियंस थे।
0: ये उनके अरेंजर थे,
1: अच्छा,
0: ये उनके सलाहकार थे केरसी और श्याम राव। भूपी जी तो दोस्त थे उनके। तो हम लोग पहुंचे, पूरा रेसल वेसल हो गया 10:15 बजे।
1: जी
0: छोटा सा आदमी आता है 4.5 फुट का, रोशन जी आ गए।
1: हाँ, वो छोटे कद के थे।
0: पहली दफा देखा उनको
1: जी

0: आते ही किसी से कुछ कोई बात नहीं, सीधा ऐसे आए अंदर, ऐसे जैसे वो मैडम बैठी हैं ऐसे अंदर चले गए।
1: जी
0: अंदर से माइक्रोफोन ऑन करके बोलते हैं, हाँ म्यूजिक सुनाओ। अभी म्यूजिक सुनाओ, अभी जब तक केसी जी 1-2 नहीं बोलेंगे हम तो बजा ही नहीं सकते, हम सब बैठे हुए हैं, आवाज आ रही है कि म्यूजिक सुनाओ। तो केसी चुप, शामराव भी चुप, गोपी भी चुप, हम सब चुप बैठे, कम से कम 60-70-80 म्यूजिशियन तो होंगे। फिर अंदर से, अरे म्यूजिक क्यों नहीं बजाते, म्यूजिक सुनाओ, केसी शामराव म्यूजिक सुनाओ। फिर चुप।
1: अरे
0: अब ये मैं हम सोच रही है, नहीं बच्चे हैं कि ये क्या हो रहा है, म्यूजिक बोल रहा है म्यूजिक सुनाओ, हम सब चुप बैठे हो, म्यूजिक रेडी है। फिर केसी बोलते, ऐसे थोड़ी ना सुनाएंगे।
1: अरे
0: हाँ तो फिर कैसे सुनाओगे, पहले अपने प्यार से बोलिए तो सही। अभी प्यार कौन सा, अंदर से माँ बहन की कहे शुरू हो गई। अरे हम तो हैरान हो गए, मैं कह यार ये कौन सा प्यार है यार, वहां की वहां गाली म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, अब सुनाओ के सुना। हाँ अब सब थालिया में, अब सुनाएंगे म्यूजिक। और उसके बाद म्यूजिक शुरू
1: ये
0: हुआ,
1: प्यार था, ये
0: म्यूजिक
1: स्टाइल
0: शुरू
1: थी।
0: हुआ, आशा जी थी या पता नहीं कौन था, आशा जी आई, रिहर्सल किया 2-2.5 घंटे 3 घंटे में गाना खत्म।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: ये पहली याद थी उनके साथ,
1: क्या बात है।
0: ऐसा एटमोसफियर। आप सोचो कि वो म्यूजिशियन कह रहा है पहले हमको गालियां दो
1: तब
0: तब
1: बजाएंगे,
0: हम बजाएंगे।
1: गजब गजब
0: तो ये एटमोसफियर था
1: जी।
0: देशन।
1: उनके साथ आपने कुछ गाने बजाए?
0: गाने बजाए लेकिन कुछ याद नहीं कौन कौन से गाने बजाए। हाँ
1: अच्छा,
0: याद नहीं।
1: SD बर्मन,
0: अरे बर्मन दादा तो, अरे बाप रे,
1: उनकी यादें माटी है
0: बर्मन साहब क्या तो बजा ही रहते, क्योंकि सेम ग्रुप था
1: जी।
0: पंचम जी का। इतना मुझे याद है कि महबूब में रिकॉर्डिंग थी और देव साहब की फिल्म थी,
1: हाँ
0: शायद गाइड होगी,
1: ओके,
0: तो हम लोग बजा रहे थे, रिहर्सल होगी रिहर्सल होगी, तो बर्मन साहब ने कुछ मलोरी जी को पीस बताया, बीच में खड़े होके, महबूब स्टूडियो की बात है, पीस बताया उन्होंने, तो उन्होंने वो पीस बताया और मैंने वो यहाँ से वो पीस बजा दिया।
1: अरे गजब।
0: तो ऐसे मुड़ के देखा, मलोरी को पूछते बंगाली में, कौन बजाया, बोले वो लड़का है, फिर से बोलो बजाने के लिए। तो मैंने फिर से बजा दिया, तो उन्होंने को बोलते सबको बोलो ऐसा बजाने के लिए
1: अरे बाप रे, गजब।
0: जैसा उत्तम बजा रहा है ऐसा। यूनुस जी मैं बैठा था 2nd या 3rd रो में, सेकंड डे सबको ऑर्डर हुआ कि सेंटर का जो पहला बीच की कुर्सी है वो उत्तम की होगी।
1: ओ
0: दादा ने मुझे प्रमोट कर दिया,
1: वाह
0: मैं 3rd रो से 1st रो में आ गया।
1: वाह वाह वाह, एक महान संगीतकार थे
0: एक
1: वो, और
0: महान
1: अपनी धुन के
0: संगीतकार,
1: पक्के।
0: बहुत जबरदस्त।
1: कुछ और घटना याद आती
0: और
1: है
0: एक टाइम ऐसा आया कि जब बासु मुरारी ने छोड़ दिया था,
1: जी?
0: तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा जो आम तौर पे कोई नहीं करता, बट मेरे से होती चली गई।
1: अच्छा
0: क्यों हुई मुझे नहीं पता, बट
1: जी,
0: मेरे से ये चीज होती चली गई जो कोई नहीं करेगा, किसी ने की नहीं होगी और आगे भी कोई नहीं करेगा, जो ये मेरे से होती चली गई, मैंने नहीं किया, होती
1: जी
0: चली गई।
1: जी
0: बर्मन साहब ने मुझे बुलाया काम के लिए, अरेंजमेंट के लिए,
1: अच्छा
0: हाँ कि मेरे साथ काम करो। तो मैं गया, बैठा, उत्तम बासु मुरो तो छोड़ के चले गया। मैंने कहा हाँ दादा, वो तो पता चला, वो तो वहाँ बैठे हैं मद्रास में, तो हमको गान करना है इसका, गोल्डी का, बहुत इमिडिएटली गान करना है, तुम करो। मैं बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, क्या क्या सोच रहे हो? मैं कहा दादा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम हमको ना बोलता है? मैं कहा दादा आपको ना नहीं बोल रहा। फिर मैं दादा मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो जिसके अंडर में मैंने काम किया हो वो कुर्सी में कभी नहीं लेता। मैंने कहा आपके साथ बहुत बजाया है, बासु मुरारी काम कर रहे थे, अब आप उनकी कुर्सी मुझे दे रहे हो। मैं कहा दादा मैं नहीं कर पाऊंगा। यूनुस कैन यू बिलीव इट, वो आदमी उठा,
1: हाँ
0: दादा उठे और मेरे कंधे पे एक हाथ रखा,
1: जी
0: एक शाबाशी का एक हाथ रखना होता है, एक फील होती है उसमें,
1: जी जी
0: खूब भालो खूब भालो
1: खूब बालो,
0: खूब भालो। मैं चला गया,
1: आपने किसी म्यूजिशियन की जगह नहीं ली लेकिन
0: मैंने किसी अरेंजर की जगह नहीं ली। मेरे
1: जी
0: को सबका ऑफर आया,
1: जी
0: कलन जी का ऑफर आया, पप्पी लहरी का ऑफर आया, अनु मलिक मेरे पीछे, शंकर किशन का ऑफर आया, आर डी बर्मन का, बाद में जब वासुदा चले गए तो मुझे ऑफर आया, कभी मैंने कहा, मदन जी का ऑफर आया मुझे,
1: जी जी
0: मैंने कभी नहीं लिया।
1: सिर्फ इसलिए कि आपको किसी
0: मैं
1: दूसरे
0: उनके
1: म्यूजिशियन
0: अंडर
1: का
0: में, उनके अंडर में काम कर चुका हूँ, मैं अभी कैसे जाऊँ उनके,
1: जी
0: एज ए म्यूजिशियन चले जाऊंगा, म्यूजिशियन ठीक है, बट ऐसे अरेंजर में नहीं लिया मैंने, आज तक किसी की जगह नहीं ली,
1: क्या बात है।
0: कभी नहीं।

0: लेकिन एज ए म्यूजिशियन आप बजाते रहे
1: पास, एज ए म्यूजिशियन बजाता,
0: दादा के लिए भी बजाता।
1: हाँ हाँ दादा के लिए, लेकिन बाद में फिर वो ग्रुप पूरा चेंज हो गया था
0: जी,
1: फिर वो अनिल अरुण आ गए थे।
0: हाँ हाँ,
1: तो फिर वो ग्रुप पूरा फिर जा ही नहीं सके, बजा ही नहीं सका, उनके एंड में तो बिल्कुल नहीं बजा सका उनके साथ।

0: उत्तम जी देखिए, नौशाद साहब की, मदन मोहन की हमने बातें की, हमने रोशन साहब की बातें की, एसडी बर्मन की बातें की, और कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनकी बातें करनी जरूरी है?
1: देखिए जी, मैंने तो सब क्या बजाया है, कोई

0: इतना संगीत का नहीं था 1962 के बाद,
1: जी
0: चाहे वो श्री रामचंद्र साहब हो, चित्रगुप्त जी हो।
1: चित्रगुप्त जी क्या अभी बजाया?
0: हाँ,
1: और अन्ना क्या अभी बजाया?
0: अन्ना क्या बजाया? अन्ना क्या तो एक किस्सा है, बहुत संगीतमयी किस्सा है वो।
1: बताइए।
0: वो किस्सा जरूरी है आज के लोगों के लिए, वो किस्सा सुनना बहुत जरूरी है। एक तो क्या, अन्ना बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर 70-80 म्यूजिशियन बैठा हुआ है और अन्ना की एंट्री हो गई तो सब साइलेंट हो गए।
1: अच्छा।
0: हाँ, फिर आप अगर एक सुई भी फेंकोगे तो उसकी भी आवाज आएगी, इतना डिसिप्लिन था। और अन्ना का क्या था कि अन्ना ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उसके मुलाजिम हैं, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उनके म्यूजिशियन हैं, रिकॉर्डिंग के बाद वो हमारे दोस्त हैं।
1: वाह वाह वाह, पूरा मूड बदल जाएगा।
0: ये उनका फर्क था। और रिकॉर्डिंग के बाद ये वही अन्ना है, आप कोई सोच भी नहीं सकते।
1: जी।
0: तो हम लोग रिकॉर्डिंग बजा रहे थे
1: जी,
0: और अच्छा गाना, मुझे गाना याद नहीं है, अच्छा गाना था, रिहर्सल विहर्सल किया, गाना रिहर्सल हो गई, रफी साहब आए, रफी साहब ने रिहर्सल किया, अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तो अंदर से शर्मा जी की आवाज आई, अन्ना की आवाज आई, जॉनी चलो टेक शुरू करते हैं, जॉनी गोम्स उनके असिस्टेंट थे, ओके सर, 1-2 दिया उन्होंने, म्यूजिक शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, पकड़ा गया, म्यूजिक बन गया, अंतरा शुरू और अंतरा चल रहा है, अंतर के बाद जहां क्रॉस आया
1: जी,
0: क्रॉस शुरू और अंदर से कट हुआ,
1: अरे अरे
0: आवाज आई कट कट, कुछ पता नहीं क्या है, क्यों कट हुआ, एक टेक कट हो गई, सेम जगह में दूसरी टेक कट हुई,
1: क्रॉस पे
0: कट हुई, तो अंदर से आवाज आई। अच्छा, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जब अंदर से बोलते थे तो म्यूजिशियन भी सुना करते थे और सिंगर भी सुना करता था।
1: जी जी,
0: क्योंकि सिस्टम ऐसा था। अभी हम सब शांत, 70-80 म्यूजिशियन शांत बैठा हुआ है, हुआ क्या है? अभी अन्ना बोल रहे हैं, रफी साहब आप मोहम्मद रफी हो, आप सबके मोहम्मद रफी हो, आपको कौन नहीं जानता, आपको कौन नहीं सुनता, लेकिन क्या है, ये गाना श्री रामचंद्र का है, अगर आप श्री रामचंद्र को नहीं गाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये श्री रामचंद्र का गाना है? चुप रफी साहब, आप जो ये क्रॉस गा रहे हो ना, ये शंकर जयकिशन की जगह है, मेरी जगह ये है।
1: गजब।
0: उन्होंने अपनी जगह गा के सुनाई, मेरी जगह ये है, ये श्री रामचंद्र की जगह है, वो शंकर जयकिशन की जगह है, और आपको श्री रामचंद्र की जगह गाना है। रफी साहब सॉरी सॉरी अन्ना, सॉरी अन्ना, सॉरी अन्ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
1: फिर से शुरू हुआ,
0: शुरू हुआ, डे खत्म हो गया।
1: वाह, इसलिए ये बार बार अड़चन आ रही थी।
0: ओके हो गया, एक छोटी सी जगह थी, बोले वो शंकर जयकिशन की जगह है, ये मेरी जगह है।
1: गाना याद है?
0: नहीं गाना वही तो प्रॉब्लम ये है ना, उस टाइम इतना काम करते थे, सुबह अलग दोपहर को अलग, जैसे अभी यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, चौथा इंटरव्यू, कहाँ याद रहेगा क्या क्या बोला।
1: जी जी जी,
0: ऐसी हमारी हालत थी
1: जी।
0: सुबह मदन साहब का बजा रहे हैं, दोपहर को श्री रामचंद्र का बजा रहे हैं, रात को जिंगल कर रहे हैं, सुबह 7 बजे फिर जिंगल कर रहे हैं, फिर शंकर जयकिशन का बजा रहे हैं, तो ये हालत
1: लगातार भागदौड़ होती,
0: लगातार भाग।
1: उत्तम जी, बहुत भागदौड़ चल रही थी, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ बजा रहे थे, फेलो म्यूजिशियंस के साथ किस तरह के रिश्ते थे, जैसे केरसी दादा से, बजी दादा से, मनोहरी दादा से,
0: ये सब लोग जी। ये तो ऐसा था ना, ये आप सोचिए कि जब मेरी शादी हुई तो मैं शायद 7 या 8 घंटे या 6 घंटे वाइफ के साथ पास रहता था घर में, बाकी तो सब इनके साथ ही रहता था
1: जी।
0: तो केरसी जी, भूपी जी, मरोरी जी, और उसके बाद भज्जी, ये सब लोग तो मतलब आप सोचो 16-16 घंटे हम साथ में थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वक्त इन लोगों के साथ बीता,
0: ज्यादा गुजरी जो लाइफ है वो इनके साथ ही गुजरी है।
1: तो आपके सबसे पक्के दोस्तों में से कौन थे? इनमें
0: पक्के दोस्तों में भज्जी था।
1: अच्छा।
0: भज्जी एक वकील थे, म्यूजिशियन थे।
1: हाँ।
0: वो भी गुजर गया अभी। भज्जी, वकील, भूपी जी,
1: भूपिंदर सिंह जी, जो बहुत बड़े गायक भी थे और गिटारिस्ट थे,
0: और केरसी जी।
1: जी,
0: ये हम लोग काफी अच्छा ग्रुप था, रात को साथ में बैठना
1: जी,
0: और मैंने सबको छोड़ना क्योंकि मैं नहीं पीता था
1: जी,
0: लेकिन ड्राइवर इनका मैं था, गाड़ी भी मेरी, ड्राइवर भी मैं, और छोड़ना भी इनको।
1: पार्टियां वो लोग करेंगे,
0: पार्टियां वो लोग करेंगे, क्योंकि सब दोस्त थे, लेकिन छोड़ूंगा सबको मैं घर में।
1: इन सब में सबसे बदमाश कौन थे?
0: बदमाश तो सारे थे। सारे बदमाश थे
1: जी जी।
0: म्यूजिशियन जो है ना
1: जी,
0: एक्चुअली बदमाश होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि
1: आप भी थी बदमाशियां?
0: हाँ, नहीं, हमारी बदमाशी भी क्या, म्यूजिक में निकलती थी।
1: अच्छा,
0: म्यूजिशियन जो है वो स्मार्ट होता है
1: जी,
0: क्योंकि उसको जब प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो बहुत माइन्यूट काम करना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: एक एक सुर को पकड़ना और सुर में लाना और सुर में बजाना, ये एक आत्माई ढांचा है कि जब तक अगर आपके पास आत्मा नहीं है। इलैयाराजा साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि म्यूजिशियंस आर बॉर्न नॉट मेड।
1: वाह वाह वाह, पैदा होते हैं बनाए नहीं जा सकते। इलैयाराजा का जिक्र निकल गया, मुझे ये पता है कि आपने सिर्फ मुंबई के फिल्म जगत में ही काम नहीं किया बल्कि आपने साउथ में भी बहुत सारा काम किया है।
0: जी, मैंने राजा मुझे लेके गए साउथ में अपनी फिल्म के लिए
1: जी,
0: और मैंने राजा साहब के कुछ 600 फिल्में का गाना मिक्सिंग मैंने की है।
1: 600 फिल्में, तो जीवन भर का काम होता है ये तो।
0: हाँ, बट वो तो 35 फिल्में एक साल में करते थे ऐसा मुझे एक्टर पैदा नहीं होगा।
1: तो आपने बहुत वक्त मद्रास में भी बिताया।
0: मेरा एक पांव मद्रास में, एक पांव बॉम्बे में।
1: तो वहां आप बतौर अरेंजर होते थे,
0: जैसे अभी मैंने बताया मिक्सिंग, मैं मिक्सिंग करता था
1: आई,
0: और कभी कभी उनकी बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो कंडक्ट करता था, कभी कोई सोलो होता तो सोलो भी बजाता था।
1: वाह,
0: और हम साथ में खाना खाते थे, साथ में चलते थे।
1: लैंग्वेज की प्रॉब्लम?
0: कुछ नहीं, म्यूजिकल लैंग्वेज।
1: क्या बात है, इलैयाराजा की म्यूजिक में बहुत लेयर्स होती हैं, बहुत इंट्रिकेट काम होता है।
0: बहुत।
1: तो कुछ यादें बताइए।
0: मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है और किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, किसी भी संगीतकार को बुरा नहीं लगना चाहिए, उनसे बड़ा म्यूजिक कोई नहीं है।
1: क्या बात है,
0: इसलिए हर आदमी अपनी अपनी जगह है
1: जी,
0: बट ही इज द मैन हु नोज अबाउट म्यूजिक फ्रॉम ए टू जेड।
1: वाह,
0: लिखना खुद, पढ़ना खुद, कंपोज खुद करना, एक एक म्यूजिशियंस को क्या बजवाना है, ये ही नोज।
1: वाह,
0: तो ये मोस्ट लर्नेड, हमारे यहाँ के जो संगीतकार थे बहुत बड़े बड़े संगीतकार, उनका कोई जगह ही नहीं, जैसे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, बर्मन साहब, आर डी बर्मन, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन, इनको चाहिए एक सहारा लिखने वाला। एक नोटेशन लिखने वाला चाहिए, और ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए जो ऑब्लिगेटो बनाए, जो कॉर्ड डाले
1: जी,
0: वहां पे अरेंजर की जगह है
1: जी,
0: जैसे मैंने किया, जैसे मैंने अरेंजमेंट किए तो मेरी एक जगह थी वहां पे।
1: बिल्कुल,
0: बट इलैयाराजा के वो किसी की जगह नहीं है,
1: इलैयाराजा का खुद करेंगे
0: सारा काम, खुद करते, इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा डायरेक्टर है।
1: क्या बात है,
0: जैसे मैं आज अगर मैं करता हूं, जब मैं अपना काम करता हूं, मेरा सारा काम खुद का है, मैं लिखता भी खुद हूं, जब सोलो पीस होते बजा भी कुछ, लेकिन स्टिल व्हाट राजा साहब जो लिखते हैं वो एक आम आदमी नहीं लिख सकता, एक जानकार भी नहीं लिख सकता और आम आदमी भी लिख सकता।
1: सदमा का गाना मुझे याद आ रहा है।
0: हाँ, सुरेश वाड़कर
1: जी, आपने बजाया?
0: मैंने बजाया।
1: ऐ जिंदगी गले लगा दी।

0: इलिया राजा की बातें हुई, मुझे एक चीज याद आई, नय्यर साहब।
1: ओहो,
0: उनसे जुड़ी हुई यादें हैं, एकदम हम बीच में स्किप कर गए। बल्कि मुझे तो ये भी याद आता है कि जब उनकी वापसी का दौर था तब भी क्या कुछ काम किया आपने, निश्चय वगैरह जो फिल्में आई थी?
1: तब मुझे बुलाया था
0: जी,
1: मेरी वही प्रॉब्लम थी।
0: नहीं, आपने मना कर दिया?
1: ना, नहीं कर पाया आपके साथ। नय्यर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड संगीतकार इन द इंडस्ट्री
0: जी,
1: स्पेशली फॉर म्यूजिशियंस, स्पेशली फॉर सिंगर्स ऑफ दोज डेज, रफी साहब। और क्योंकि हमको जो 6-6 महीने के बाद पैसे मिलते थे
0: जी,
1: वो सेट पे पैसे दिलाने वाले नय्यर साहब।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: फॉरन ये काम किया, ये पैसे
1: नहीं, उनका ये था कि भी ये प्रोड्यूसर को बोला कि कल रिकॉर्डिंग है तो इतने पैसे ले आना, ये मैंने किस्सा सुना हुआ है
0: जी जी,
1: ये पैसे ले आना। तो प्रोड्यूसर बोलता है इतने पैसे क्या जरूरत है, वो तो पैसे 3 महीने के बाद दें। अच्छा, कब दोगे? 3 महीने, तो 3 महीने के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे।
0: जी,
1: तो नय्यर साहब इज द डायरेक्टर जिन्होंने म्यूजिशियंस को सेट पे पैसा दिलाना और 500 से 5000 रुपए करना सिंगर का, ये नय्यर साहब।
0: वाह,
1: रफी साहब 500 रुपए लेते, 5000 रुपए दिलवाया उनको और म्यूजिशियंस का पूरा। और किसी ने अगर सोलो अच्छा बजा, मनोरी जी तो हमेशा उनसे, किसी ने ऐसा सोलो बजा दिया तो जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुई जेब में 500 रुपए डाल दिया, 100 रुपए डाल दिया, जो भी डाल दिया,
0: जो अच्छा बजाया उसका इनाम।
1: तो ये नय्यर साहब थे।
0: वाह, अब बाद में नय्यर साहब की शैली में

0: तुषार भाटिया ने अंदाज अपना अपना में म्यूजिक दिया था।
1: हाँ, वो मैंने किया है।
0: वो आपने किया है?
1: हाँ।
0: उसके बारे में बताइए।
1: वो ही बस मैंने दो या तीन गाने किए, उसके ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि मेरा टाइम नहीं था मेरे पास। और बहुत पूरा कॉपी म्यूजिक, पूरा
0: नैयर साहब की शैली,
1: पूरी नैयर साहब को लेके। और क्या होता है ना, देखिए नैयर साहब नैयर साहब है,
0: बिल्कुल
1: आप उनको कितना भी कॉपी कर लो, नैयर साहब है।
0: हाँ,
1: आप कॉपी हो,
0: बिल्कुल।
1: आप आज अगर आप किसी का काम कॉपी कर रहे हो तो यू आर ए कॉपी, यू आर नॉट ओरिजिनल। डू समथिंग ओरिजिनल ना।
0: बहुत सही बात करें।
1: आपको इतनी बड़ी फिल्म मिली है, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, सलमान खान आमिर खान की फिल्म कर रहा है
0: जी।
1: अच्छा, कुछ डिफरेंट म्यूजिक दिया होता तो आज शायद कुछ अलग होता।
0: हम सब ये बात करते हैं कि नैयर की शैली के गाने।
1: हाँ, तो बात वही आ गई ना
0: जी।
1: हार्डली चले वो गाने, ज्यादा नहीं चले, क्योंकि जब ओरिजिनल सुनना तो फिर नैयर सबको ओरिजिनल सुनते हैं ना।
0: हाँ, गीतकारों से किस तरह के रिश्ते रहे जब आप म्यूजिशियन थे तब?
1: हाँ, मैंने सबके साथ एज ए अरेंजर, साहिर साहब के साथ, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ, और उस टाइम के जो योगेश और इंदिवर जी, सबके साथ काम किया हुआ।
0: जी जी जी
1: रिश्ते भी अच्छे थे। नमस्ते नमस्ते थी।
0: बख्शी साहब,
1: बख्शी साहब के साथ मैंने एज ए म्यूजिशियन काम नहीं किया, मुझे बख्शी साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे।
0: मुझे पता है ये बात, तो मैंने सोचा कि इसका जिक्र आगे दिल तो पागल है कि टाइम करेंगे।
1: मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे वो बख्शी साहब। एक तो वो पान खाते रहना
0: और पीकदान,
1: वो पीकदान रखना और उसमें थूकते रहना, लेकिन दिल तो पागल आई।
0: हाँ,
1: अभी हम गाने कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि दिल तो पागल कर रहा। मैं तो अपना टेलीफिल्म कर रहा था, यशराज फिल्म्स की।
0: हाँ, ये बताया गया था कि ये एक टेलीफिल्म है।
1: टेलीफिल्म है।
0: और कतई नहीं बताया गया कि स्टार कास्ट क्या है।
1: नहीं, वो टेलीफिल्म ही थी।
0: ओके।
1: गानों ने कन्वर्ट कर दिया दिल तो पागल है। उन्होंने जब गाने सुने तो उन्होंने कहा कि यार ये गाने तो फिल्म के लग रहे हैं। आदि ने सुना, भाभी जी ने सुना, मनमोहन सिंह जो कैमरामैन थे उन्होंने सुना, यश जी ने सुना, संजीव कोहली
0: बड़े
1: लड़के
0: जी
1: वही तो लेके गए मुझे।
0: अच्छा,
1: ये बहुत बड़ा जिक्र है।
0: इसको
1: होल्ड रखते हैं,
0: इसको होल्ड रखते हैं।
1: हाँ।
0: यहाँ सिर्फ एक झलक हमने सुना दी।
1: हाँ।
0: आपके जो म्यूजिक की यात्रा की बातें हो रही थी और उसमें हमने बहुत अलग अलग तमाम संगीतकारों को याद किया, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि चूंकि बहुत भागदौड़ थी तो एक दिन में सबसे ज्यादा कितने गाने आप करते थे?
1: देखिए जी, एज ए म्यूजिशियन जो है ना, वो समझिए सुबह मदन साहब का बजाया, दोपहर को नौशाद साहब का बजाया, दो गाने।
0: वाह, दो लेजेंड लोगों के साथ काम हो गया आधे दिन में।
1: नहीं, एक दिन में।
0: अभी तो एक शिफ्ट बची है।
1: नहीं, एक दो शिफ्टों में
0: जी।
1: सुबह एक शिफ्ट जो है वो मदन साहब के लिए।
0: अच्छा, सुबह की पूरी।
1: और दोपहर को 3 से 7 या 3 से 8 या 3 से 9 दूसरे प्रोजेक्टर के लिए।
0: जी जी,
1: ये हमारा उस टाइम पे लॉ था, यू कैन नॉट प्ले मोर देन दैट।
0: दो से ज्यादा नहीं
1: कर सकते। लेकिन साथ साथ में जिंगल चलते थे
0: जी,
1: एड फिल्म के गाने चलते थे, तो वो सुबह हम 7 बजे करते थे और उसके बाद रात को 9 बजे बैकग्राउंड खत्म किया, 9 बजे के बाद फिर जिंगल किया, तो रात को 12-12 एक एक बजे काम करते थे।
0: और जिंगल में भी इतना सारा म्यूजिक होता था?
1: जिंगल में ज्यादा नहीं, 7-8 म्यूजिशियन, 10 म्यूजिशियन बहुत हुए। लेकिन एज ए अरेंजर मैंने दिन में 7-7 गाने किए हुए।
0: बाप रे बाप, सब अलग अलग लोगों के लिए।
1: हाँ, मतलब समझिए एक किसी का, जैसे आप आज कोई भी एल्बम उठा लो, चाहे वो पंकज उदास हो, तलत अजीज हो, जगजीत हो, भूपेंद्र हो, सबके जो पहले फर्स्ट एल्बम है ना वो मैंने किया हुआ है।
0: अरे बाप रे, तो द लेटेस्ट भी आपने किया जगजीत का?
1: जगजीत की जो फिल्में, जो हिट गाने हैं, वो सारे मेरे किए हुए हैं।
0: बिल्कुल।
1: उसके पहले ओपनिंग के जो गाने हैं वो सब मेरे किए हुए हैं। तलत के, आपके गुलाम अली का एक एल्बम आया था मिराज़े गज़ल, वो मेरी की हुई है सारी।
0: आशा भोसले और गुलाम अली,
1: वो सारी मेरी की हुई है।
0: अरे क्या बात है, तो मिराज़े गज़ल में से एक गजल सुनी जाए फिर।
1: जरूर जरूर सुनिए, उसमें वायलिन सोलो बहुत है।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह,
1: आप सुन लीजिए उसको।
0: म्यूजिक अरेंजमेंट की बात बहुत हो रही है और आप बता रहे हैं कि आपने कई बार एक एक दिन में 7-7 गाने अरेंज किए। हमारे श्रोताओं में से बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता कि ये म्यूजिक अरेंजमेंट क्या चीज होती
1: है, क्या होता है। यस,
0: है ना।
1: यस।
0: तो ये आप बताएं कि असल में गाना बनता किस तरह से है और उसमें म्यूजिक अरेंजर का काम म्यूजिक डायरेक्टर से कितना अलग है।
1: देखिए, यहाँ पे कंडक्टर का चांस तो मुझे सभी चाचा ने दिया
0: जी,
1: लेकिन म्यूजिक अरेंजमेंट का चांस जो है वो मुझे दिया शंकर शंभू।
0: शंकर शंभू कवाल सर,
1: जो कवाल थे। मुझे मैसेज आया कि आओ बुलाया, तो मैं गया मिलने के लिए।

0: मैं जी बोले हम एक पंजाबी फिल्म कर रहे हैं और बेटा तुम अरेंजमेंट करो। मैंने कहा जी मैंने कभी अरेंजमेंट किया ही नहीं। बोले नहीं करो। दे आर दी पर्सन हु मेड मी अरेंजर।
1: गजब, ये किस साल की बात होगी?
0: 60s की होगी।
1: जी जी
0: हाँ 60s, 65 मोस्टली 65
1: जी,
0: क्योंकि 65 से मैंने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया था तो पहला उनका। उसके बाद में मैं जैसे ही मैंने अरेंजमेंट करना शुरू किया तो जितने भी छोटे म्यूजिक थे जैसे इकबाल कुरैशी, छोटा इकबाल, बी एन बाली, ऐसे काफी लोग छोटे छोटे म्यूजिक थे सबने मुझे बुलाना शुरू कर दिया
1: अरेंजर के तौर पर।
0: और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि मुझे मिलते थे 30 रुपए में दो गानों का अरेंजमेंट करना। 30 रुपए में
1: जी
0: दो गानों का अरेंजमेंट करना, तो दो गाने सुबह दो गाने शाम, तो दिन के 60 रुपए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन हुआ क्या, मैं इतना बिजी हो गया तो जो म्यूजिशियन आए बजाने के लिए वो 100 रुपए दो गाने का लें, कोई 80 ले, कोई 100 ले, कोई 70 ले, कोई 75 ले, और मुझे मिले 30 रुपए।
1: अरे अरे,
0: तो एक दिन मैं एक संगीतकार के यहाँ पहुंच गया सुबह 7 बजे। 7 बजे नॉक किया मैंने, अरे उत्तम तुम कहाँ से आ गए सुबह सुबह? जी आ गए। अच्छा आ जाओ, चाय पियोगे? मैं कहा जी पी लेंगे। मैंने कहा सर आपसे एक बात करनी थी। बोलो बोलो। मैंने कहा आप मुझे 30 रुपए दो गानों के देते हैं, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, कंडक्टिंग करता हूँ, सब करता हूँ, और जो हमारे म्यूजिशियन आते हैं वो कोई 100 रुपया ले जाता है, कोई 70 रुपया ले जाता है, कोई ऐसे, तो मेरा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, कल बताता हूँ। वो कल कभी नहीं आई। उन्होंने मुझे निकाल ही दिया।
1: ओ
0: पैसे मांग लिए, जाओ आउट। अब बताओ, आपको जब नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी पैसा मांगने की।
1: जी जी।
0: फिर उसके बाद जो मिलता रहा मैं करता रहा, फिर मेरा नाम धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, फिर अपने आप ही लोगों ने मेरे पैसे
1: बढ़ाने शुरू किए। और म्यूजिक अरेंजमेंट में बहुत सारे काम शामिल हैं।
0: म्यूजिक अरेंजमेंट में मैंने जितना जिंदगी भर काम किया
1: जी,
0: मैंने ये काम किया कि एक तो आपने मुझे गाना दे दिया,
1: हाँ
0: ठीक है, आपने एक मेलोडी दे दी मुझे, अब उस मेलोडी के हारमोनी, उस मेलोडी के बीच के म्यूजिक, चाहे वो ओपनिंग म्यूजिक हो, बीच का म्यूजिक हो, वो सारा मैंने बनाया
1: जी।
0: अब पूरे म्यूजिशियंस को रिहर्सल कराई, अब मैंने रिकॉर्डिंग भी करवाई, क्योंकि साउंड मेरा अपना बैलेंस नहीं होता तो आई नेवर यूज्ड टू ट्रस्ट एनीबॉडी, मैं मेरा बैलेंस मैं ही करूंगा।
1: अच्छा, तो पैनल पर भी आप ही बैठेंगे?
0: हाँ, मेरे साथ रिकॉर्डिंग के साथ मैं बैठता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए
1: जी।
0: तो मैंने जिंदगी में जो भी काम किया ना वो वन मैन शो किया। म्यूजिक का काम था गाना दे दो,
1: मतलब म्यूजिक डायरेक्टर ने केवल ट्यून बनाई
0: और उसमें भी बहुत सारी चीज मैंने करेक्शन की है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि कई ऐसे म्यूजिक आते थे जिनको ताल का ही पता नहीं होता था, वो लेके आ जाते थे ये सब ऐसा गाना है, उसको ताल में ठीक करना, उसको ठीक करना, आर्टिस्टों को सिखाना, आशा जी होती थी, लता जी होती थी, मुझे ही पूछती थी कि गाना उत्तम इसको कैसे करना है, इसको या क्या जो भी करना है। तो मेरा वन मैन शो रहा है
1: फिल्म
0: हम आपके हैं कौन।
1: क्या बात है,
0: हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया जो है
1: ये भी बताना जरूरी कि ये फिल्में वो हैं जिनमें म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण थे लेकिन अरेंजर आप थे।
0: अरेंजर मैं था, बैकग्राउंड म्यूजिक सारा मेरा है, म्यूजिक सारा मेरा है, अरेंजमेंट पूरा मेरा है, सब कुछ, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरी है पूरी, मेरे बिना कुछ वहां हिलता नहीं था
1: जी।
0: तो इसलिए मैंने ऐसे अरेंजर जो काम किया है वो राइट फ्रॉम टिल रिलीज मैंने काम किया है। तो ये एज ए अरेंजर जो मेरी जो पोस्ट रही वो मैंने आपको बताई है
1: जी जी।
0: बाकी कई पुराने संगीतकारों में बहुत खास बात ये थी कि वो म्यूजिक अपना खुद बनाते थे,
1: फर्स्ट म्यूजिक, सेकंड म्यूजिक,
0: साहब म्यूजिक खुद, मेलोडी खुद बना देते थे
1: जी।
0: नौशाद साहब हो गए, शंकर किशन, ये सब लोग अपना म्यूजिक बना देते थे, तो अरेंजर खाली लिखता था।
1: अच्छा अच्छा,
0: अरेंजर लिखता था, उसको थोड़ा सजाना बजाना, कॉर्ड डालना, वायलिन बजाएगा, चेलो बजाएगा या क्या बजाएगा, वो सब करते थे। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने वन मैन शो शुरू किया।
1: तो आप तय करते थे कि यहाँ इतने वायलिन होंगे, मैंडोलिन आएगा कि गिटार आएगा,
0: क्योंकि म्यूजिक सारा मेरा होता था ना
1: जी। और वो पीसेस भी कैसे बजाए जाएंगे, उनका चलन क्या होगा, वो सब आप तय करते थे। मदन साहब
0: क्या था, रा रा री री तिरी री, वो बजा दिया
1: जी,
0: और वो पीस मेरा है, मैंने उसको कंपोज किया, बज गया गलती से, मैंने कंपोज नहीं किया
1: जी जी।
0: तो ऐसे जितने भी म्यूजिक है कंपोज पीसेस हैं, मैंने प्यार का उठा लीजिए,

0: यहाँ से वो कबूतर जा जा में जो पूरा रिदम है।
1: हाँ
0: या मेरे रंग में रंगने वाली के पहले का जो ग्रैंडियोर है
1: हाँ
0: वो बहुत कमाल है।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: उजाले उनकी।

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये भजन आप सुन रहे थे। गांधीज फेवरेट भजन बाय लता मंगेशकर इस एल्बम से आपने इसे सुना। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं और आप सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल गालिब। इस एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में मिर्जा गालिब का ये कलाम।

0: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: मोहब्बत इस गजल इस एल्बम से ये गजल आपने सुनी। राजेश चोहरी ने इसे लिखा, भूपिंदर सिंह का संगीत और आवाजें भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में नक्श लायलपुरी का ये कलाम।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और आप आपको सुनवाते हैं सईद राही का कलाम। मधुरानी के संगीत से सजा है, पिनाज मेसानी ने इसे अपनी आवाज दी।

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

दिल्ली सिक्स का गाना आप सुन रहे थे, रेखा भारद्वाज और एस सुजाता मजुमदार, श्रद्धा पंडित की आवाजों में प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति, करसन सागरथिया और साथियों की आवाजें, महबूब के बोल स्माइल दरबार का संगीत।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
5: हमें तुम्हारी लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
4: इंतजार कीजिए।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

everybody come together. Yeah.

तो दिल दे दे। इस एल्बम से आप सुन रहे थे पेनाज की आवाज में गीत जिसे लिखा राजू शौरी ने, रहमान राजन का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आप सुनते हैं सिल्क रूट। इस एल्बम से मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजों में उन्हीं का लिखा और उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत।

0: सिल्क रूट बूंदे। इस एल्बम से आप सुन रहे थे मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल को।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और अब सुनवाते हैं सुनो तो दीवाना दिल। इस एल्बम से कमाल खान की आवाज में रूप जौहरी के बोल, कमाल खान का ही संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई।

0: इस वार्षिक बैठक में सदस्य, प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधा तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर पर्यटन से जुड़ी सेवाओं और जानकारी के लिए एक साझा डिजिटल व्यवस्था, नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना गाप्रदाश्वली ट्रॉफी जीतने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों की जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान में आयोजित एशियाई खेलों 2026 में भारत की ईशा सिंह ने आज आईची नागोया में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने आईची नागोया में महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम गरम को हराया। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था। गत चैंपियन भारत को ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होने के कारण सेमीफाइनल में जगह मिली है। सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और नेपाल, कृपया दोबारा सुने, सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में अभिनेता रणबीर कपूर के जन्मदिन के अवसर पर हम सुनवा रहे हैं उन्हीं के अभिनीत फिल्मों से गीत।

शान की आवाज में सांवरिया फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, समीर के बोल, मोंटी शर्मा का संगीत। आइए अब सुनते हैं वेकअप सिड फिल्म से यह अगला गीत। क्लिंटन सर्जो, डोमिनिक सर्जो और लॉय मेंडोसा की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगो जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का, बस अभी लौटते हैं।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में अभिनेता रणबीर कपूर अभिनीत फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है।

0: अजय प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म के गीत का गीत आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर और सुजैन डिमेलो की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। रॉक स्टार फिल्म का ये गीत सुनिए, मोहित चौहान की आवाज है, इरशाद कामिल ने इसे लिखा, ए आर रहमान का संगीत।

निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में आप सुन रहे थे बर्फी फिल्म से ये गीत। आशीष पंडित ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, यादों की महफिल।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
2: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
3: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
2: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
4: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आपने सुना जग्गा जासूस फिल्म का गीत। अरिजीत सिंह और अमित मिश्रा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अभिनेता रणबीर कपूर अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: एनिमल फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, सोनू निगम की आवाज, राजशेखर के बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का, माफ कीजिएगा, हर्षवर्धन रामेश्वर का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: तीन अक्टूबर को विविध भारती में कौन आ रहे हैं ये तो हमें आपको अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि ये जवानी है दीवानी फिल्म का अगला गीत आपको सुनवाने वाले हैं बेनी दयाल, शेफाली अलविज का की आवाजें हैं अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत। और हाँ, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ये जवानी है दीवानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। बैंड दयाल और शेफाली की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बेनी दयाल की आवाज में आप सुन रहे थे रॉकेट सिंह फिल्म से गीत, जयदीप साहनी के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल, जिसमें अभिनेता रणबीर कपूर के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में शेखर अस्तित्व के बोल आपने सुने। विक्रम मोंटोरसे ने इसे संगीत से सजाया। संजू फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम यादों की महफिल में अब सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज में इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत, तमाशा फिल्म के इस गीत में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और उसमें ही छुपे होते हैं कार्यक्रम के गीतों के शब्द या कई बार गीत भी। तो आज की इबारत आपको

बता देते हैं, आज की इबारत है जिंदगी की अजीब दास्तान है ये, रेडियो पर एक आवाज सुनी और हम उसके प्यार में खो बैठे, बस उस आवाज से बंधे हम उसे ढूंढ ही रहे थे कि किसी का झुमका मिला। आ जा रे परदेसी, कहती दूर से गूंजी वही आवाज, एक बार फिर उसी दिशा में बढ़ चले हम। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हमारा हाल पूछता रहा, पर हमने तो खुद से वादा किया था कि उसे ढूंढ ही लेंगे, तो बस वादा निभाना ही था। दौड़ते भागते नदी के किनारे पहुंचे ही थे कि पायल छनकाती वो नाज से बोल उठी, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। इस अंदाज से उसने अपने जुल्फ को झटका कि हम भी दिल थाम कर कह उठे, प्यार किया तो डरना क्या। ये सुनना था कि वो कह उठी, मनमोहना बड़े झूठे। हमने भी मुस्कुराकर कहा, इस इश्क में जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है। ये सुनकर वो भी कह उठी, मिल गई मंजिल मुझे। आज भी उस बात को याद करके जिया जलता है, न जाने क्यों होता है यही जिंदगी के साथ। इस इबारत में नजर आ रहे होंगे आपको कई गीत, पर क्या इसमें आपने पहचानी कोई और भी खास बात, ये हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल पहचान ली है वो खास बात। आपने पहचान लिया है कि आज की इस इबारत में छुपी हुई है वो शख्सियत जिनका आज जन्मदिवस है या कहें जयंती है। और हमारे साथियों ने कहा भी कि स्वर कोकिला लता जी की आवाज केवल एक आवाज ही नहीं है, भारतीय फिल्म संगीत की आत्मा है। उनके गाए हर गीत में जादुई एहसास भरा हुआ है। कुछ कालजयी गीत ऐसे हैं जो मानवीय संवेदनाओं, प्रेम की अनिश्चितता और विरह के चरम बिंदु हैं। जीवन से जुड़ी कश्मकश, अधूरे रिश्तों का दर्द, उनके स्वर में हर संगीत प्रेमी को अपने बहुत करीब लगते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कुछ आवाजें हमें वक्त की उन पुरानी गलियों में घुमा देती हैं, जहां यादें ताजा हो जाती हैं, कुछ खुशी की, कुछ गम की, कुछ अपनेपन का एहसास कराती हुई आज के सफर को लता जी की खूबसूरत आवाज और याद और भी सुरीला बनाएगी। तो बिल्कुल सही आपने पहचाना कि आज के इस कार्यक्रम में हम इन गीतों की बातें तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की बातें भी होंगी, क्योंकि आज है उनकी जयंती। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज के कार्यक्रम में उनके गीत हम ना सुनाएं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत के शब्दों को अगर लता जी की सुरीली आवाज से जोड़ें तो जैसे एक पूरी प्रेम कहानी संगीत में ढल जाती है। रेडियो पर गूंजती उनकी आवाज कभी आजारे परदेसी बनकर दिल को पुकारती है, कभी पत्ता पत्ता बूटा बूटा बनकर अपने पन का एहसास कराती है। उनकी आवाज में पायल की छनक, जुल्फों का अंदाज, इश्क की तमन्ना और मंजिल पाने की खुशी सब कुछ महसूस होती है। लता जी की आवाज सचमुच ऐसी सुरीली दास्तान है जिसे सुनकर जिंदगी भी एक खूबसूरत गीत लगने लगती है। तो जब जिंदगी ही हमें गीत लगने लगती है उनकी आवाज को सुनकर, तो क्यों ना कार्यक्रम का आगाज भी किया जाए और एक गीत आपको सुनवाया जाए। तो ये बताइएगा कि गीत किस फिल्म से हमने लिया है। आवाज पहचानने के लिए तो आज हम कहेंगे ही नहीं।

दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, फिल्म का नाम सही पहचाना, यही हमारे सवाल का जवाब था। और हमारे साथी लता मंगेशकर जी के लिए बहुत सी बातें लिख भेज रहे हैं अपने मन से। हमारे एक साथी कहती कि जो अमर स्वर लता है कहलाती, उस लता दीदी की आज जन्म जयंती, उस सुरीला सफर के गीतों भरी संस्कृति कह रही है ज्योति से सुरदीप्ति की भावभीनी आरती। हमारी ओर से लता जी को विनम्र नमन, श्रद्धा सुमन। तो इस तरह से बहुत से हमारे जो साथी हैं वो लता मंगेशकर की आवाज़ से जिस तरह से जुड़ते हैं उनको वो हमें बता रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लता जी के एक साक्षात्कार में सुनी थी कि कैसे वे गायिका उमा देवी के साथ रिकॉर्डिंग के समय माइक पर पहुंचने के लिए स्टूल पर खड़ी होकर गाती थी और उमा जी के जरा सा स्पर्श से वे स्टूल से गिर पड़ी थी। और जैसा कि उन्होंने कहा, आज भी वो समय याद आता है तो उन्हें बेहद हंसी आती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे जन्म से पहले ही हमारे घर में रोजाना विविध भारती सुनने का माहौल था और जब से मैंने होश संभाला लता दीदी की आवाज में विविध भारती पर उनके सुरीले गीत सुनते रहे हैं और विविध भारती सुनने का शौक आज तक बरकरार है। और हम कहेंगे कि फिर लता जी की आवाज भी रोजाना सुनने का ये सिलसिला भी बरकरार हुआ, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा तो नहीं जाता जब उनकी आवाज में एक भी गीत आपने न सुना हो, बल्कि कई गीत आप जरूर सुनते हैं रोजाना उनकी आवाज में। हमारी और साथी कह रहे हैं कि लता मंगेशकर जी भारतीय संगीत की अमर स्वर कोकिला थी। उनकी मधुर और भावपूर्ण आवाज ने कई पीढ़ियों के दिलों को छुआ। उन्होंने हिंदी के साथ अनेक भारतीय भाषाओं में हजारों गीतों को अपनी आवाज दी। उनके स्वर में प्रेम, विरह, भक्ति, संवेदना के अलग अलग रंग सुनाई देते थे। संगीत की दुनिया में उनका योगदान अद्वितीय है और उनकी आवाज भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर बनकर हमेशा गूंजती रहेगी। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन लता मंगेशकर से जो आपकी यादें या भाव जुड़े हैं वो तो आप हमसे साझा कर रहे हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप उनसे मिल पाते तो एक लाइन में या एक पंक्ति में बताइए कि क्या कहते उनसे। ये आपको हमें बताना है कमेंट्स के जरिए। अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज पर नहीं पहुंचे हैं तो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप पहुंच सकते हैं इस पेज पर। और अगर आपके पास फेसबुक का ऐप है तो आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी में लिखिए, ब्लू टिक वाला ये जो पेज आपके सामने खुलेगा वहाँ आपको सुरीला सफर की पोस्ट मिलेगी और यहाँ आपको कमेंट करके बताना है कि अगर आपको मौका मिलता लता मंगेशकर से मिलने का तो एक पंक्ति में आप उन्हें क्या कहते, क्योंकि इतना ही मिलने का मौका मिलता ना। और एक बात आप हमें बता सकते हैं कि आवाज़ के अलावा लता मंगेशकर जी के व्यक्तित्व की वो कौन सी बात है जो आपको बहुत प्रभावित करती है। और आवाज़ की बातें तो हम कर ही रहे। हमारे एक और साथी हैं वो कहते हैं इस बारे में कि लता मंगेशकर जी की संगीत यात्रा पर कुछ लिखना मानो सूरज को उसकी रोशनी का परिचय देने जैसा है। उनकी आवाज़ सिर्फ गीतों में नहीं करोड़ों दिलों की धड़कनों में बसी है। समय बदलता गया, पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन उनके सुर आज भी वही अपनापन, वही सुकून, वही भावनाएं जगाते हैं। उनका नाम भारतीय संगीत के उस उजले अध्याय की तरह है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। तो चलिए उसी आवाज में सुनते हैं ये गीत और आपको बताना है कि इस गीत को लिखा किसने है और फिल्म का नाम।

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की लघु कथा सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि उस अदम्य मानवीय भावना का दस्तावेज है जो कल्पना के सहारे अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाती है और जिंदगी की अनिश्चितताओं के बीच भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। ये जीवन की उस निरंतर यात्रा का प्रतीक है जहाँ इंसान अपनी मंजिल को पाने के लिए हर मुश्किल पार करने के लिए तैयार रहता है। तो हमारे साथियों से हमने पूछा था कि अगर आपको लता मंगेशकर से एक बार मिलने का मौका मिलता तो आप उन्हें क्या कहते, एक पंक्ति में हमें बताइए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लता दीदी से अगर मैं मिल पाता तो कहता कि सरस्वती माता के साक्षात दर्शन तो मैंने नहीं किए परंतु आपसे मिलकर और देखकर मेरे सरस्वती माँ के दर्शन मुझे सरस्वती माँ के दर्शन हो गए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लता दीदी के गीतों को सुनते ही बड़े हुए, जवान हुए और अब बुजुर्गों में भी आ गए। लता दी के गीतों से सुबह होती है और रात भी वैसे ही होती है। उनके जाने के बाद भी हर रोज उनके गीत बड़ी शिद्दत से बजते हैं, उनकी कमी नहीं खलती क्योंकि उनको कभी देखा ही नहीं, वैसे ही आज हम उनके गीत सुनते हैं। ये कहा कर जा सकता है कि कलाकार अपनी कला के जरिए अमर होता है और इसी तरह से उनकी आवाज़ हमारे साथ बनी हुई है और बनी रहेगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि लता दीदी से मिलते तो बस उनको देखते रह जाते और सिर्फ उनके चरण स्पर्श कर लेते। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर मुझे मिलने का अवसर मिलता तो शायद ऐसे महान व्यक्तित्व के सामने शब्दों की नहीं सिर्फ श्रद्धा की जरूरत होती है और मेरी श्रद्धा का सबसे सच्चा शब्द होता धन्यवाद लता जी। कितनी खूबसूरती से आपने अपने भावों को बयान किया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर हमें मिलने मिलता तो हम कुछ नहीं कहते, केवल उन्हें नमन कहते क्योंकि कुछ कह ही नहीं पाते। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इस इबारत की सबसे खास बात यह है कि इसमें भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के अमर गीतों और धुनों को किसी जीवित एहसास की तरह बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है। आज़ादी परदेसी से लेकर प्यार किया तो डरना क्या तक के बोल महज पंक्तियां नहीं बल्कि दो प्रेमियों के बीच संवाद और भावनाओं की धड़कन बन जाते हैं। आवाज की तलाश को संगीत की एक ऐसी रोमानी यात्रा यहाँ बनाया गया है जहाँ कल्पना और पुरानी यादें मिलकर एक जादुई और नॉस्टैल्जिक माहौल रच देती है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की इबारत के शब्दों में लता दीदी के इतने सारे गीत बन रहे हैं कि लिस्ट बनाते बनाते हम थक जाएंगे, इसलिए मन में ही सोच लिया है कि सारा गीत और पहला गीत ही हमारे मन का हो गया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम इस तरह से जब खुद को समर्पित कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे मन की हो जाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनकी आवाज सिर्फ गीत नहीं थी, एक एहसास थी जिसने पीढ़ियों के दिलों को छुआ और भारतीय संगीत को दुनिया भर में एक अलग पहचान दी। आज भी उनकी मधुर आवाज हमारे दिलों में उतनी ही जिंदा है और हमेशा गूंजती रहेगी। लता जी को सादर नमन। और भी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी है लेकिन जिस आवाज की हम बात कर रहे हैं अगर उसका साथ हमें कार्यक्रम में मिलता रहे तो मजा दुगुना हो जाएगा। तो चलिए सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। बताना है कि संगीत किसका है और फिल्म का नाम।

मधुमति फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर मैं लता जी से मिलने का मौका मुझे मिलता, मैं तो हल्का बीकानेर होकर देखती रहती, मेरे मुंह से शायद ही कोई शब्द निकलते, बस यही सोचती कि साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन करें, इतना साधारण व्यक्तित्व और इतनी अद्भुत कला। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि लता जी को एक बार जयपुर आने का प्रोग्राम था, एयरपोर्ट पर मेरे पति की ड्यूटी थी, जब पता चला कि लता जी आ रही हैं तो इन्होंने हमें भी घर से बुला लिया, तब साक्षात सुर साम्राज्ञी के दर्शन हुए, उनकी वो मुस्कान आज भी याद है। तो भाई कुछ चुनिंदा जो ऐसे लोग हैं जो भाग्यशाली हैं जिन्होंने उन्हें देखा, इनमें आपका भी नाम शामिल है। हमारे एक साथी हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ा इन्होंने अपना एक संदेश भेजा है जिसको हम छोटा करके बता रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विविध भारती एक है, एक विविध भारती एक ही लता मंगेशकर। आएगा आने वाला गीत से हिट हुई लता मंगेशकर का लगभग हर गीत अनमोल है, इसलिए 6 दशकों से अधिक के लंबे सुरीले सफर में कई पीढ़ियां इनकी दीवानी रही हैं। हम स्त्रियों के सुख दुख के हर क्षण के गीत हैं इनके गीत कोश में, शायद इसलिए लता जी के बेहतरीन गानों की लिस्ट बनाना आकाश से तारे तोड़कर लाने के समान है, सब एक से बढ़कर एक। और आगे इन्होंने कई गीतों के बारे में बात की है और उससे संबंधित बातें लिखी हैं। हालांकि बहुत से साथियों के कमेंट हैं इसलिए हम इनके कमेंट पूरा नहीं पढ़ रहे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की भारत में जैसे लता जी की जादुई आवाज ने गीतों के मोतियों को एक धागे में पिरो दिया हो। उनके स्वर यात्रा में प्रेम है, विरह है, शरारत है, इंतजार है और जिंदगी के अनगिनत रंग भी हैं। उनकी आवाज की मिठास और सादगी ने पीढ़ियों को संगीत से जोड़ा और हिंदी फिल्म संगीत को एक अमिट पहचान दी। आज वो हमारे बीच नहीं है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी हमारे साथी ने। और कह रही है हमारे साथी कि आज सुबह से खूबसूरत गीतों का इंतजार रहेगा, सुबह से रात तक रेडियो पर एक ही आवाज गूंजती है, स्वर कोकिला लता जी संगीत का पर्याय है, वो कोई भी गीत गाए मन मोह लेता है। विविध भारती पर कई गीत पहली बार सुने और बेहद ही पसंद आए, लता जी को सादर नमन। एक और साथी कह रहे हैं कि आज हम सबकी सरस्वती माँ की याद का दिन है, हमारे देश का गौरव, आन बान और शान है लता जी, उनके गाए हुए गीत हमारी विरासत है, आज जो भी गीत सुनवाएंगे बड़े ही प्यारे लगेंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के गद्यांश में एक बात जो इशारा कर रही है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में, लता जी के स्वर से आज की गीतों की महफिल रोशन होगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गायिकी के पटल पर लता जी का नाम एक अलग ही अक्षर की तरह लिखा गया है। वे सिर्फ लता जी नहीं बल्कि सरस्वती हैं, हम उन्हें गायन की देवी की तरह पुकारते आए हैं, वे हर भारतीय के मन में गहरे तक बैठी हैं, सुबह से लेकर रात तक उनके गाए न जाने कितने गीतों से हम रोज समृद्ध होते हैं फिर भी मन नहीं भरता। हम अक्सर किसी सुंदर जमीन से छत तक फैली हुई किसी बेल को लता कहकर पुकारते हैं, वे भी बेल की तरह इस जमीन से आसमान तक हम सबके हृदय पर विराजमान है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के लंबे इंतजार के बाद एक ही गाना याद आ रहा है कि तुम संग नेह लगाकर हार गई सजना। कोकिल कंठे सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता जी स्वयं सुर साध्वी साधना रत स्वयं सरस्वती की साक्षात मूर्त के रूप में अविरत हो अंतर ध्यान हो गई। हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि आज बेटी के रूप में लता जी इस दुनिया में आई थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हिंदी सिनेमा की संगीत यात्रा में लता जी नाम माँ शारदा की तरह वंदनीय है, हर आयु वर्ग में जीवन की हर परिस्थिति में उनके गीत अपने से लगते हैं, बचपन के लिए लोरियां, युवा काल के लिए प्रेम गीत, विरह गीत और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले गीत, जिंदगी के विविध रंगों को लता जी ने अपनी देवी आवाज से एक रंगोली की तरह सजा दिया है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही तो भाई एक गीत तो सुनना बनता ही है। चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत किसने लिखा।

0: परख फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, और आज सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के गीतों से सजी है ये हमारा ये कार्यक्रम। और हमारे साथी कह रहे हैं कि अगर मैं लता जी से मिलता तो सिर्फ एक ही गाना गाने का अनुरोध करता, ए दिले नादान फ्रॉम रजिया सुल्तान। वही हमारे रजिया सुल्ताना फिल्म। और हमारे एक साथी कह रहे हैं मधुमति फिल्म का नाम पूछना यानी कि मैट्रिक के विद्यार्थियों से दो का पहाड़ा पूछना, पर कभी कभी अच्छा लगता है ना मैट्रिक के विद्यार्थियों को भी दो का पहाड़ा बताना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आजा रे परदेसी ये गाना मेरे पापा जब काम पर चले जाते थे तो हमारी माँ ये गाना गाकर मेरे पापा को याद किया करती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये गाना केवल गाना नहीं बल्कि लता मंगेशकर, सलील चौधरी और शैलेंद्र की त्रिमूर्ति द्वारा रचा गया संगीत का एक उत्कृष्ट दस्तावेज है। गीतों में एक अलौकिक रहस्य और तड़प है। लता जी ने अपनी आवाज में जो पुकार और कंपन पैदा किया सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देता है। आजारे के बाद जो आलाप और गूंज है वो पहाड़ियों में भटकती एक आत्मा की व्याकुलता को पूरी तरह जीवंत कर देती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गीत चुनने में आपको भी मुश्किल होगी लेकिन काफी बेहतरीन गीत आपने इसमें शामिल किए हैं। भाई जब शख्सियत ऐसी होगी सामने तो गीत चुनना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो पल केवल एक मुलाकात नहीं बल्कि इतिहास के एक पन्ने को छूने जैसा होता जिसने 7 दशकों तक पूरी दुनिया को अपनी आवाज से बांधे रखा। हम शायद भावुक हो जाते, हमारी आंखों में खुशी के आंसू होते और हम बस उन्हें सम्मान से प्रणाम करना चाहते, नतमस्तक होते। खुशी के आंसुओं से आंखें धुंधला जाती और उनकी धुंधली तस्वीर जीवन भर के लिए हृदय में बसाए आ जाते। कितना अच्छी तरह से आप अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। और हमने हालांकि बहुत से गीत तो शामिल कर दिए हैं भारत में लेकिन सारे गीत सुनवाना तो संभव नहीं है, और भी इतने सारे गीत हैं, सबकी पसंद अलग अलग, लेकिन जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो चलिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम बताइए और बताइए संगीतकार का नाम।

लता मंगेशकर की आवाज़, साथ में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोशन का संगीत, साहिल लुधियानवी की बोल। सही जवाब आप सभी ने दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज के मौके पर लता जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वो केवल एक नाम नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के जज्बात का नाम है। हिंदुस्तान की आवाज़ है। लता जी का पूरा जीवन ही संगीत की साधना और संगीत से अटूट मोहब्बत का अफसाना रहा है। उन्होंने जब भी गाया है तब ऐसा लगा ही नहीं कि शब्द हैं बल्कि भावनाएं बह रही हों, ऐसा ही लगा। प्यार की कशिश हो, जादुई जुदाई का दर्द हो, देशभक्ति का जज्बा हो या भक्ति का सुकून, उनकी आवाज़ हर इंसान के दिल का आईना बन गई। आज भले ही वो हमारे बीच ना हो, लेकिन जब भी कोई झुमका हवा में गिरेगा, जब भी कोई परदेसी पुकारेगा या जब भी कोई दिल कहेगा कि प्यार किया तो डरना क्या, तब तब मुस्कुराती हुई लता दीदी हमारे साथ होंगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के प्रोग्राम में जो सुरीले गीत हैं, कई सुरीले गीत होंगे और उनने सारे गीतों के नाम लिखे हैं जो कि शामिल भी हो रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे कि आज की इबारत पढ़कर लगा कि जैसे गीतों ने मिलकर एक खूबसूरत कहानी कह दी हो। एक आवाज़ से शुरू हुआ सफर तलाश में बदल गया और फिर वही तलाश दिल की मंजिल बन गई। सच है, कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं आती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्वर की देवी और कोकिल कंठी लता मंगेशकर जी के गाने किसी भी भाषा में हम सुनते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसका अर्थ नहीं है कि स्वर किसी भाषा से बंधा नहीं है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि विविध भारती से हमें लता मंगेशकर जी का कोई गीत सुनने ना मिला हो। और उन्होंने कहा आगे सत सत नमन। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि कभी कभी कोई आवाज़ सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, दिल में अपना घर बना लेती है। फिर वो इंसान उस आवाज़ के पीछे पीछे यादों, गीतों और एहसासों की गलियों में भटकता रहता है। आज की इबारत भी ऐसी एक तलाश की कहानी है जहां हर मोड़ पर एक गीत मिलता है, हर गीत में एक एहसास और हर एहसास में लता जी की मधुर आवाज़ की छाया। यही तो संगीत का जादू है कि बरसों बाद भी कोई धुन सुनते ही दिल उसी पुराने सफ़र पर निकल पड़ता है जहाँ प्यार भी है, इंतज़ार भी और यादों की हल्की सी कसक भी। तो भाई, जब प्यार प्यार की बातें हो गई हैं तो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनके बारे में क्या लिखना, अगर लिखें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। बस इतना कि एक सूर्य, एक चांद, एक लता जी, भगवान ने उनको बनाकर वो सांचा ही तोड़ दिया होगा। ना कोई उनके जैसा हुआ है, ना कोई होगा। तो भाई, ये सारी जो भावनाएं आपकी हम तक आ रही हैं, तो इन भावनाओं पर शायद ये गीत सबसे अच्छा रहेगा। आप हमें बताइए संगीत किसका है।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत आपने सुना, नौशाद का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज। हमारे बहुत से साथी कह रहे हैं कि भाई आज के इस मौके पर ये गीत सुनना चाहिए था या वो गीत सुनना चाहिए, तो इस तरह से गीतों की लिस्ट तो वो भेज रहे हैं। भाई कहा जाए तो हम तो इस मौके पर उनके सारे ही गीत सुनने चाहते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज इतने सारे गीतों को दी है, अनगिनत गीतों को दी, तो उन गीतों को सभी को सुन पाना क्या संभव है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए अलग अलग कार्यक्रमों में आज के दिन क्या और लगातार 365 दिन उनकी आवाज़ में वो गीत हम सुनते रहते हैं और अपनी पसंद के गीतों को रोज़ाना हम सुन ही पाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि विविध भारतीय लता जी का साथ तो ऐसा है जैसे सुर और संगीत का अटूट बंधन। बचपन की यादों से लेकर आज तक जब भी विविध भारती पर लता जी की आवाज़ गूंजती है तो दिल सुकून से भर जाता है। उनका हर गीत हमारे जीवन में किसी न किसी खूबसूरत याद से जुड़ा हुआ है। रेडियो के सबसे प्यारे मंच विविध भारती के माध्यम से लता दीदी के सदाबहार गीत हमारे दिलों में जिंदा रखने के लिए पूरी टीम को उन्होंने धन्यवाद दिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं लता जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरे पास उनके हर गाने का एक संग्रह है। पहले कैसेट में रहता था, आज फिलहाल पेन ड्राइव में है, क्योंकि जब भी कहीं सफर पे जाती हूँ तो अपनी ही पेन ड्राइव लगाती हूँ। मुझे अपने पसंदीदा गाना सुनना बहुत पसंद है। घर में भी वो लता जी को जब तक ना सुन लूँ मुझे चैन नहीं होता। और एक बात मुझे बहुत पसंद है लता जी की कि उनकी आवाज़ तो पसंद है, साथ ही साथ उनकी जो सिंप्लिसिटी थी वो हमेशा एक सी रही। एक उनको बहुत ज़्यादा चमक धमक में मैंने नहीं देखा और मुझे ये बेहद पसंद आता है। हमारे एक और साथी ने कहा कि अगर मैं उनसे मिलती, ये आपने पूछा था अगर हम मिलते तो क्या कहते, तो मैं उनसे कहती कि आप जैसी आवाज़ मुझे भी मिल जाए, आप बहुत ही अच्छी लगती हैं, उनकी सादगी अच्छी लगती है, हमेशा सफ़ेद साड़ी में उन्हें मैंने देखा। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि हमें लता दीदी के बहुत से गीत बहुत पसंद हैं, पर कुछ गीत हमें बहुत ताकत देते हैं, जैसे जब दिल को सतावे गम तो छेड़ सकी सरगम, ऐ दिले नादान तू गम से ना घबराना, ऐसे गीत हमें बहुत पसंद है। तो कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं और बताइए किस फिल्म से लिया है।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और बात हो रही है स्वर कंठिल कोकिला लता मंगेशकर की। ससुराल फिल्म का गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब भी आपने दिया। लता मंगेशकर से आप किस तरह से रखते हैं नाता, ये आप हमसे बता रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ हमारे कानों को नहीं, हमारे दिल को छू जाती है। वो आज भी हमारे साथ हैं उनकी आवाज़ के साथ, और उनकी बहुत से ऐसे गाने हैं जो सुनने का मन करता है। वैसे ही हमारे साथी ने बहुत से गाने हमारे साथी लिख लिख के भेज रहे हैं, लेकिन सारे गीत एक साथ एक घंटे में सुनाना, बल्कि हम कहते एक दिन में सुनाना भी मुश्किल है। तो वो गीत सुन लेते हैं जिनकी बातें हमने इबारत में की है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। बताइए कौन सी फिल्म का गीत है।

0: से न पूछो कि तुम
1: भाई। यही बात हम कह सकते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के लिए भी कि हमसे ना पूछिए कि आप हमारे कौन हैं। चोरी चोरी फिल्म का गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और लता मंगेशकर के साथ मन्ना डे की आवाज़ आपने सुनी। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं तो आपकी ढेरों बातों के साथ हम भी इस बात से बिल्कुल कहते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि एक ही घंटे में पूरा गीत सुनना, सभी पसंदीदा गीत सुनना तो मुश्किल है, लेकिन ये गीत शामिल ना हो तो बिल्कुल भी बात ना बने। तो हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत, और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। लेकिन लता मंगेशकर की आवाज से सजा हुआ सजे हुए कई गीत आपको आज के बहुत से कार्यक्रमों में सुनने के लिए मिलते रहेंगे। तो बस दीजिए इजाजत आज के इस कार्यक्रम से।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम आए दिन बहार के।

और अब हम आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, आर डी बर्मन का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम बेमिसाल।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने अपने अदम्य साहस और शौर्य से स्वतंत्रता आंदोलन को नई धार प्रदान की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की उनकी भावना आज भी युवाओं को साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताती है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगत सिंह का साहस, राष्ट्रभक्ति और विचार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम जारी है। कलेक्टर रोशन सिंह ने बताया कि छतरी चौक स्थित शाही मस्जिद का एक हिस्सा समाजजनों द्वारा स्वेच्छा से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले मकान, दुकान और धर्मस्थल संबंधित समाजों के सहयोग से हटाए जा रहे हैं।
1: 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है और जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे उनकी व्यवस्थाओं के लिए जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो मार्गों का चौड़ीकरण चल रहा है, मास्टर प्लानिंग के हिसाब से सड़कों का चौड़ीकरण चल रहा है, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सभी व्यक्ति, सभी धर्म समुदाय के लोग जो है स्वतः इसमें अपना योगदान कर रहे हैं और उनके जो मकान, धर्मस्थल जो भी आ रहे हैं उनको स्वतः जो है हटा रहे हैं। इसी के क्रम में छतरी चौक पर आज शाही मस्जिद का हिस्सा भी इनके समाजजनों के द्वारा स्वतः हटाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूंगा किसी
0: छतरी चौक स्थित मस्जिद के मामले में शहर काजी खली कुर्रे रहमान ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
2: बरादरान मिल्लत को इत्तला दी जाती है कि बेवजह बाजारों में न खड़े हों, बाजारों की तरफ न जाएं। मस्जिद का मसला रात को ही हल हो गया था और ऐसी कोई बात नहीं जिसके पीछे हम आ जाएं। बस जिस बात के लिए कमिटमेंट हुआ है वो काम पूरा होना है और वो लोग अपने काम को कर रहे हैं, लिहाजा अफवाहों का बिल्कुल ख्याल न करें और जो भी अफवाहें उस पर ध्यान न दें और अफवाहों की वजह से बाहर न निकले घरों से अपने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और अन्य पक्षों को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह में आज संगीत निर्देशक शांतनु मोइत्रा को वर्ष 2026 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया जाएगा। उन्हें 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पट्टिका दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उनका स्मरण किया। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी स्वर साधना से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां प्रदान की। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में प्रदेश में भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि मंगलवार से उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर चंबल संभागों में तेज धूप निकलने का अनुमान है। प्रदेश में अब तक औसतन 37.7 इंच बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य बारिश का करीब 95.8% है। वहीं विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश होने पर प्रदेश सामान्य बारिश की श्रेणी में पहुंच सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में जनपद पंचायत और नगर परिषद के लिए 29 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए जिला सूचना एवं विज्ञान केंद्र में मतदान केंद्रों का रेंडमाइजेशन कल किया गया। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस के उपलक्ष्य में दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पैदल रैली का आयोजन किया गया। बुरहानपुर में विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर वेटरनरी हॉस्पिटल में एक विशाल निःशुल्क एंटी रेबीज टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। और शिवपुरी में सेवा संकल्प अभियान के तहत 3 अक्टूबर को विकास खंड स्तर पर और 4 अक्टूबर को नगरीय निकाय स्तर पर मेगा सेवा सेतु शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: अंका अरोड़ा मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
2: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर, कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है, माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
4: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि तीन तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में मदद कर रहा है।
5: तीन तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल तीन तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
6: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
5: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
7: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
5: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो तीन तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव

0: कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
3: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
2: सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
4: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फुले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
2: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
5: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई ना कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
6: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और के जिससे किसी की जान ना जाए, इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़क कर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
7: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना

0: कोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की स्योंग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह और भेजती हूँ आप तक प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं आज आपकी फरमाइश कार्यक्रम है खास क्योंकि आज दिन है खास। आज फरमाइशी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम लता जी की आवाज को सेलिब्रेट करेगा क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। लता जी जिनके विषय में हम कुछ भी कहने चलें तो सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। गंधर्व लोक से उतरे सबसे सुरीले सबसे चमकीले स्वर का नाम है लता मंगेशकर। एक विलक्षण कलाकार जिनकी आवाज इस देश की आत्मा में धड़कती है। उनकी आवाज जैसे सुबह की पहली किरण, उनकी आवाज जैसे रात की आंखों में जागता हुआ कोई स्वप्न। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर उम्र पाते हैं बुझे हुए रिश्ते। उसी एक आवाज की छुअन से मनुष्य की सारी भावनाएं संतृप्त हो जाती हैं। उस जादुई आवाज का नाम है लता मंगेशकर। चालीस के दशक में वो फिल्मों में सक्रिय हो गई थी। कभी सोचें तो लगता है कि चालीस के दशक के पहले का जितना भी समय था संगीत तो उसमें भी था। बड़े बड़े साम्राज्य हुए, राजे महाराजे हुए, उनके संगीत रत्न हुए, लेकिन तमाम समृद्धि के बावजूद उनके जीवन में एक अभाव तो था, उन्होंने लता मंगेशकर को नहीं सुना। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि लता जी हमारे हिस्से रहीं और हमेशा रहेंगी। तो आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं अनपढ़ फिल्म से। इस गीत के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी। इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा। और इंदौर से ही लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया।

श्रोताओ, आज लता जी का जन्मदिन है। कैसा था उनका बचपन? बहुत शरारती थी वो, पेड़ों पर चढ़ जाती, कभी अमरूद तोड़ने के लिए, कभी आम तोड़ने के लिए, दिन भर लाठी लेकर वो घूमती रहती। खेल भी उनके निराले थे। वो एक टायर के बीच में दुबक कर बैठ जाती हैं और जो बाकी बच्चे थे उस टायर को रोड पर लकड़ी से लुढ़काते हैं और घर पर सारी क्रॉकरी तोड़ देती और उसके टुकड़ों को पानी में डालती। जाहिर तौर पर माँ नाराज हो जाती लेकिन पिता

0: उजाला फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर की आवाज में जंगली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनते हैं चित्रलेखा फिल्म में लता मंगेशकर को। साहिल दहानवी के बोल है, रोशन का संगीत।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें।

0: कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। बंदा ये बिंदास है, बंदा
1: ये बिंदास है। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और इससे ठीक पहले आपने सुना गाइड फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में गीत, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। और कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में बाप बेटे फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, मदन मोहन का संगीत। ये सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

0: की सहेली
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और
2: नेहा शर्मा का
1: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी। बिल्कुल हेल्दी नमस्कार यूं होता है कि भाई जब लगता है ना कि किसी ने कहा हेल्दी नमस्कार तो हाँ हमें हमारी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अपने बारे में थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए।
2: हाँ, जब हेल्थ की बात आ जाती है तो फिर हम कहीं ना कहीं सचेत हो जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इसलिए हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें क्या मतलब कितना ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल, और देखो ना आज जो है विशेष दिन तो हमारा चल ही रहा है, बहुत सारे दिवस हैं, मैं नेहा और हमारे श्रोताओं आज हम कथा सुधा में कहानी भी सुनेंगे और बातें होंगी अधिकार और कर्तव्य इसके संतुलन की। साथ में हम चलेंगे कश्मीर, उसके प्रादेशिक व्यंजन के बारे में हम जानेंगे कि आज कौन कौन से हम व्यंजन करने वाले हैं। आज हम राजमा गोगची और मोदुर पुलाव इसके बारे में बात करेंगे और श्रोताओं के आए भी हैं संदेश, तो और कुछ विशेष दिन भी है तो उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए पहले सुन लेते हैं एक गीत।
2: जी बिल्कुल।

0: नेहा, हमारी सारी सखियां और हमारे श्रोता भाई समझ ही गए होंगे कि ये गीत क्यों बजाया आज, है ना?
1: बिल्कुल, क्योंकि आज शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती है। 28 सितंबर का दिन हमें उस महान क्रांतिकारी की याद दिलाता है जिसने बहुत कम उम्र में देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। शहीद भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में हुआ था।
0: बचपन से ही नेहा उनके मन में देश के प्रति प्रेम और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह भावना रही। वे केवल साहसी क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक गंभीर चिंतक और प्रखर लेखक भी थे। उन्होंने युवाओं में देशभक्ति और जागरूकता की नई चेतना उस वक्त जगाई थी और अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी।
1: और केवल 23 वर्ष की उसकी उम्र थी उनकी जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी का सामना किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि देश और समाज के लिए समर्पण उम्र का मोहताज नहीं होता। आज भी जब उनका नाम हम सुनते हैं तो हमारे मन में साहस, त्याग और देश प्रेम की जो भावना जागती है वो वाकई काबिले तारीफ है, हम कह सकते हैं, क्योंकि भगत सिंह सचमुच भारत की युवा चेतना के अमर प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं।
0: बिल्कुल, और देखो ना, आज बहुत सारे विशेष दिन हैं, हम उसके बारे में भी आगे बात करते चलेंगे, बताते जाएंगे अपने साथियों को, और सब इंतजार कर रहे हैं, पता है किसका?
1: किसका?
0: कहानी यानी कथा सुधा, जिसमें हम सुनने वाले हैं अमावस की रात, इस कहानी का पहला भाग।
1: तो चलिए सुनते हैं।
2: सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात। सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
4: दीपावली की संध्या थी। श्रीनगर के घूरों और खंडहरों के भी भाग्य चमक उठे थे। कस्बे के लड़के और लड़कियां श्वेत थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रही थीं। दीपों से उनके मुखारविंद प्रकाशमान थे। प्रत्येक घर रोशनी से जगमगा रहा था। केवल पंडित देवदत्त का सतधारा भवन काली घटा के अंधकार में गंभीर और भयंकर रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले न थे, भयंकर इसलिए कि ये जगमगाहट मानो उसे चिढ़ा रही थी। एक समय था जबकि ईर्ष्या भी उसे देख देख कर हाथ मलती थी, और एक समय ये है जबकि घृणा भी उस पर कटाक्ष करती है। द्वार पर द्वारपाल की जगह अब मदार और एरंड के वृक्ष खड़े थे। दीवान खाने में एक मतंग साण अकड़ता था। ऊपर के घरों में जहां सुंदर रमणियां मनोहर संगीत गाती थीं, वहां आज जंगली कबूतरों के स्वर सुनाई देते थे। पर समय को हम कुछ नहीं कह सकते, समय की निंदा व्यर्थ और भूल है। अमावस्या की रात्रि थी। प्रकाश से पराजित होकर मानो अंधकार ने उसी विशाल भवन में शरण ली थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज एक महीने से उनकी पत्नी गिरजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित जी दरिद्रता और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे। भाग्य का भरोसा उन्हें धैर्य बंधाता था, किंतु ये नई विपत्ति सहन शक्ति से बाहर थी। बेचारे दिन के दिन गिरजा के सिरहाने बैठे हुए उसके मुरझाए हुए मुख को देखकर कुढ़ते और रोते थे। गिरजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोती तो वो उसे समझाते।
5: गिरिजा, गिरिजा, रो मत, शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी।
4: पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। अधिकतर उनके व्यवहार बड़े बड़े चकलेदारों और रजवाड़ों के साथ थे। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं बिकता था। सादे पत्रों पर लाखों की बातें हो जाती थी। मगर सन 57 ईस्वी के बलवे ने कितनी ही रियासतों और राज्यों को मिटा दिया और उनके साथ तिवारियों का ये अन्न धन पूर्ण परिवार भी मिट्टी में मिल गया। खजाना लुट गया, बही खाते पंसारियों के काम आए। जब कुछ शांति हुई, रियासतें फिर संभली, तो समय पलट चुका था। वचन लेख के अधीन हो रहा था और लेख में भी सादे और रंगीन का भेद होने लगा था। जब देवदत्त ने होश संभाला, तब उनके पास इस खंडहर के अतिरिक्त और कोई संपत्ति न थी। अब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था। कृषि में परिश्रम और कष्ट था, वाणिज्य के लिए धन और बुद्धि की आवश्यकता थी, विद्या भी ऐसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते, परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने में बाधक थी। अस्तु, साल में 2-3 बार अपने पुराने व्यवहारियों के घर बिना बुलाए पाहुनों की भांति जाते और कुछ विदाई तथा मार्ग व्यय पाते उसी पर गुजारा करते। पैतृक प्रतिष्ठा का चिन्ह यदि कुछ शेष था तो वो पुरानी चिट्ठी पत्रियों का ढेर तथा हुंडियों का पुलिंदा, जिनकी स्याही भी उनके मंद भाग्य की भांति फीकी पड़ गई थी। पंडित देवदत्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते। द्वितीया के दिन जब घर घर लक्ष्मी की पूजा होती है, पंडित जी ठाट बाट से इन पुलिंदों की पूजा करते। लक्ष्मी न सही, लक्ष्मी का स्मारक चिन्ह ही सही। दूज का दिन पंडित जी के प्रतिष्ठा के श्रद्धा का दिन था। इसे चाहे विडंबना कहो चाहे मूर्खता, परंतु श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर बड़ा अभिमान था। जब गांव में कोई विवाद छिड़ जाता तो ये सड़े गले कागजों की सेना बहुत काम कर जाती और प्रतिवादी शत्रु को हार माननी पड़ती। यदि 70 पीढ़ियों से शस्त्र की सूरत न देखने पर भी लोग क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं, तो पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छुपी हुई थी। वही अमावस्या की रात्रि थी, किंतु दीप मालिका अपने अल्प जीवन समाप्त कर चुकी थी। चारों ओर जुआरियों के लिए शकुन की रात्रि थी, क्योंकि आज की हार साल भर की हार होती है। लक्ष्मी के आगमन की धूम थी, कौड़ियों पर अशर्फियां लुट रही थीं, भट्टियों में शराब के बदले पानी बिक रहा था। पंडित देवदत्त के अतिरिक्त कस्बे में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो कि दूसरों की कमाई समेटने की धुन में न हो। आज भोर से ही गिरिजा की अवस्था शोचनीय थी। विषम ज्वर उसे एक एक क्षण में मूर्छित कर रहा था। एकाएक उसने चौंक कर आंखें खोली और अत्यंत क्षीण स्वर में कहा,
6: आज तो दिवाली है।
4: देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था कि गिरिजा को चैतन्य देख कर भी उसे आनंद नहीं हुआ।
5: हाँ, आज दिवाली है।
4: गिरिजा ने आंसू भरी दृष्टि से इधर उधर देख कर कहा,
6: आज तो दिवाली है, हमारे घर में क्या दीपक न जलेंगे? देखो आज बरस भर के दिन भी घर अंधेरा रह गया। मुझे उठा दो, मैं भी अपने घर दिए जलाऊंगी।
4: ये बातें देवदत्त के हृदय में चुभी जाती थीं। मनुष्य की अंतिम घड़ी लालसाओं और भावनाओं में व्यतीत होती है।

0: इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। अपने प्राण संजीवन औषधालय में दवाओं के स्थान पर छापने का प्रेस रखे हुए थे। दवाइयां कम बनती थीं, इश्तहार अधिक प्रकाशित होते थे। वे कहा करते थे,
1: बीमारी केवल रईसों का ढकोसला है, और पॉलिटिकल इकोनॉमी के यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र के अनुसार इस विलास पदार्थ से जितना अधिक संभव हो टैक्स लेना चाहिए। यदि कोई निर्धन है तो हो, यदि कोई मरता है तो मरे, उसे क्या अधिकार है कि बीमार पड़े और मुफ्त में दवा कराए। हाँ,
0: देवदत्त महीने भर नित्य उनके निकट दवा लेने आता था, परंतु वैद्य जी कभी उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देते थे कि वो अपनी शोचनीय दशा प्रकट कर सके। वैद्य जी के हृदय के कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए। वो आंखों में आंसू भर के आता, किंतु वैद्य जी का हृदय ठोस था, उसमें कोमल भाव था ही नहीं। वही अमावस्या की डरावनी रात थी। गगन मंडल में तारे आधी रात के बीतने पर और भी अधिक प्रकाशित हो रहे थे, मानो श्रीनगर की बुझी हुई दिवाली पर कटाक्षयुक्त आनंद के साथ मुस्कुरा रहे थे। देवदत्त बेचैनी की दशा में गिरजा के सिरहाने से उठे और वैद्य जी के मकान की ओर चले। वे जानते थे कि लाला जी बिना फीस लिए कदापि नहीं आएंगे, किंतु हताश होने पर भी आशा पीछा नहीं छोड़ती। देवदत्त कदम आगे बढ़ाते चले जाते थे। हकीम जी उस समय अपने रामबाण बिंदु का विज्ञापन लिखने में व्यस्त थे। उस विज्ञापन की भावप्रद भाषा तथा आकर्षण शक्ति देखकर कह नहीं सकते कि वैद्य शिरोमणि थे या सुलेखक विद्यावारिधि। आप उनके उर्दू विज्ञापन का साक्षात दर्शन कर लें।
1: नाजरीन, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। आपका जर्द चेहरा, आपका तनीला गीर, आपका जरा सी मेहनत में बेदम हो जाना, आपका लज्जात दुनिया में महरूम रहना, आपका खाना

0: अमरीकी, ये सब इस सवाल का नफी में जवाब देते हैं। सुनिए, मैं कौन हूं? मैं वो शख्स हूं जिसने इमराज इंसानी को पर्दे दुनिया से गायब कर देने का बीड़ा उठाया है, जिसने इश्तहारबाज जांफरोश गंदुम नुमा बने हुए हकीमों को बेखबर और बुन से खोद कर दुनिया को पाक कर देने का अज्म विल जज्म कर लिया है। मैं वो हैरत अंगेज इंसान ज़ईफ़ुल बयां हूं जो नाशाद को दिलशाद, नामुराद को बामुराद, भगोड़े को दिलेर, गीदड़ को शेर बनाता है। और ये किसी जादू से नहीं, मंत्र से नहीं, वो मेरी ईजाद करदा अमृत बिंदु के अदना करिश्मे हैं। अमृत बिंदु क्या है इसे कुछ मैं ही जानता हूं। महर्षि अगस्त्य ने धन्वंतरी के कानों में इसका नुस्खा बतलाया था। जिस वक्त आप वीपी पार्सल खोलेंगे, आप पर उसकी हकीकत रोशन हो जाएगी। ये आबे हयात है, ये मर्दानगी का जौहर, फरजानगी का अक्सीर, अक्ल का मुरब्बा और जहन का सकील है। अगर वर्षों की मुशायरा बाजी ने भी आपको शायर नहीं बनाया, अगर शबे रोज के रटंत पर भी आप इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके, अगर दलालों की खुशामद और मुवक्किलों की नाज बरदारी के बावजूद भी आप अहाते अदालत में भूखे कुत्ते की तरह चक्कर लगाते फिरते हैं, अगर आप गला फाड़ फाड़ चीखने, मेज पर हाथ पैर लटकने पर भी अपनी तकरीर से कोई असर पैदा नहीं कर सकते, तो आप अमृत बिंदु का इस्तेमाल कीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा जो पहले ही दिन मालूम हो जाएगा, यह है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप फिर कभी इश्तिहारबाज हकीमों के दाम फरेब में न फंसेंगे।
1: वैद्य जी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्वर से पढ़ रहे थे। उनके नेत्रों में उचित अभिमान और आशा झलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज दी। वैद्य जी बहुत खुश हुए। रात के समय उनकी फीस दुगनी थी। लालटेन लिए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया और बोला,
2: वैद्य जी इस समय मुझ पर दया कीजिए। गिरिजा अब कोई सायद की पावनी है, अब उसे आप ही बचा सकते हैं। यूं तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, किंतु इस समय तनिक चलकर आप देख लें तो मेरे दिल का दाह मिट जाएगा। मुझे धैर्य हो जाएगा कि उसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया। परमात्मा जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपकी कुछ सेवा कर सकूं, किंतु जब तक जीऊंगा आपका यश गाऊंगा और आपके इशारों का गुलाम बना रहूंगा।
1: हकीम जी को पहले कुछ तरस आया, किंतु वो जुगनू की चमक थी जो शीघ्र स्वार्थ के विशाल अंधकार में विलीन हो गई।
3: अमावस की रात मुंशी प्रेमचंद की कहानी का पहला भाग आपने सुना। पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, गिरिजा राजुल अशोक, पंडित देवदत्त जी श्याम, वैद्य लाला शंकर दास जयंत पाटिकर। प्रस्तुति अनुषी पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: अभिपा जी, कहानियां सुनते सुनते ऐसा लगता है ना कि पूरी ही हो जाएगी बात।
5: बिल्कुल, ऐसा मन तो यही करता है, लेकिन अगले सोमवार हम इसका अगला भाग सुनेंगे।
4: और अभी क्या सुनेंगे?
5: एक गीत सुनेंगे
4: जी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: तो दीपा जी, जश्न का माहौल तो आ ही रहा है, निकट आ रहा है, क्योंकि विविध भारती में जश्न का माहौल होने वाला है 3 अक्टूबर को। और एक आवाज का जश्न भी आज हम मना रहे हैं।
4: बिल्कुल,
3: क्योंकि आज क्या है,
4: आज देखिए लता मंगेशकर की जन्म जयंती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा नेहा जिन्होंने कभी जिनके जीवन में कोई तो पल, कोई ऐसा वक्त आया होगा जहां पे उनके गीत ने उनको छेड़ा नहीं होगा या उसका बहुत गहरा असर नहीं हुआ होगा, है ना?
3: बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे गीत हैं, इतने सारे भाव हैं उसके अंदर कि ऐसा लगता ही नहीं कि, मतलब ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने, कोई भी दिन ऐसा नहीं जा सकता जब हम लता मंगेशकर की आवाज नहीं सुन पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और खासतौर से अगर हम विविध भारती सुनते हैं तो एक गाना नहीं, कई गाने हम सुनते हैं रोजाना,
4: रोजाना उनकी आवाज में। बिल्कुल, और हिंदी संगीत और हिंदी सिनेमा से प्यार करने वाला शायद ही ऐसा कोई दिल भी होगा ना जिन्होंने उनकी आवाज ने कभी छुआ ना हो उन किसी एक व्यक्ति के दिल को। और उनकी आवाज में प्रेम की कोमलता भी थी, विरह की कसक भी थी, भक्ति की मिठास और देशभक्ति का जोश भी रहा।
3: हाँ, और कई बार वो बच्चों की लोरियों से शुरुआत होती है, कहते हैं कि बचपन से शुरुआत हो गई उनकी आवाज के साथ और अंत तक हम उनकी आवाज के साथ जुड़ सकते हैं, मतलब उम्र के हर पड़ाव में। और उनके गीतों में रिश्तों की उलझन भी हमें सुनाई देती है, तो कभी प्यार की गहराई महसूस होती है, कभी पूरे देश की आंखें उन्होंने नम की, तो कभी मन में भक्ति और शांति का भाव भी लता जी की आवाज ने जगाया है।

0: बिल्कुल। और लता जी ने सिर्फ गीत नहीं गाए, उन्होंने भावनाओं को आवाज़ दी। नेहा, उनकी आवाज़ कई पीढ़ियों की यादों में, प्रेम में, और हमारे जो पसंदीदा गानों की जो प्लेलिस्ट होती है ना,
1: हाँ।
0: उसमें एक गाना तो ज़रूर लता जी का रहता होगा। आप भी श्रोताओं ज़रूर बताइएगा, क्या आपके प्लेलिस्ट में उनका गाना नहीं रहता?
1: अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पूछने की बात नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि हमारे अभी जैसे इससे ठीक पहले जब हम एक कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें भी जब बातें आ रही थी तो ये हो रहा था कि ये गीत तो रह गया, ये गीत तो रह गया। तो फिर हमारी श्रोताओं ने भी एक कहा और हमने भी यही कहा कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक घंटे में पूरा करना तो वैसे ही मुश्किल है, एक दिन में पूरा करना भी मुश्किल है, क्योंकि हो ही नहीं सकता है।
0: बिल्कुल। तो जब अपने ये कार्यक्रम सखी सहेली के लिए जब गानों के चुनाव हम लोग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था इस गाने को ले या इस गाने को ले, क्योंकि इतनी लंबी जो फहरिस्त है उनके गानों की, तो बस कुछ ही गाने हम तो यहाँ ले पाए, लेकिन आज आप दिन भर उनके गानों का आनंद लेते रहिए।
1: हाँ, विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों में आनंद आज तो लेंगे ही और बाकी दिनों भी लेते हैं। जैसे कि हमने कहा 365 दिन उनके गीतों का हम आनंद लेते हैं, इससे तो कोई अंतराल हमें मिलता नहीं, लेकिन कार्यक्रम में अंतराल का वक्त है।
0: बिल्कुल।

0: अंतराल के बाद हम आ चुके और कार्यक्रम चल रहा है
1: सखी सहेली
0: और इतनी सारी बातें हो गई लता जी की और गीत नहीं सुना उनका,
1: तो सुनेंगे अभी,
0: चलो सुनते हैं।
1: हाँ

0: दीपा जी, गाना तो अच्छा था लेकिन आपने मेरी पसंद का गाना क्यों नहीं बजाया?
1: अरे भाई देखो, इस गाने में तुम्हारा नाम था। हाँ? नहीं, वो वाला लाइन तुमने सुनी, इस गाने की पंक्ति, जब से सैया तो उसे नेहा लागे, पीछे पीछे मैं तू आगे आगे, तुम्हें ही तो आगे रखा है।
0: हाँ, इसी वजह से मैंने आगे आगे गाना सुन लिया वो पूरा, लेकिन और भी एक अच्छे अच्छे गाने हैं मेरे पसंद
1: भाई
0: के।
1: नेहा, तुम्हारे पसंद का गाना इस प्लेलिस्ट में है, कैसे भूल सकती हूँ?
0: भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन भूल ये भी नहीं सकते हैं कि आज बहुत सारे दिवस भी हैं और एक बहुत ही खास दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक सूचना पहुंच दिवस, जो 28 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है?
1: इस दिन को इसका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को, मतलब सभी को, आवश्यक और विश्वसनीय जानकारी आसानी से उन तक पहुंच सके।
0: और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2015 में, यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत हुई 2019 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मान्यता दी। और अब जब हम डिजिटल युग में है और सूचना फटाफट हम तक पहुँचती है, पहले से आसानी से सूचनाएं हम तक पहुँचती है, लेकिन गलत सूचनाएं भी उतनी ही जल्दी हम तक पहुंच जाती है। तो ये बात बहुत बड़ी चुनौती है।
1: इसलिए ये दिवस हमें समझाता है कि सही सूचना व्यक्ति को जागरूक बनाती है और जागरूक नागरिक ही सशक्त समाज का निर्माण करते हैं। तो भाई, जब बात इतनी सूचनाओं की हो रही है, तो चलिए एक सूचना ये भी दे देते हैं अपने सभी श्रोताओं को।
2: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
3: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
2: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
2: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
1: नेहा, बात जब संदेशों की हो रही है और जानकारियों की हो रही है, तो हमें अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज विश्व रेबीज दिवस भी है।
0: बिल्कुल, और ये हर साल जैसे कि कह सकते हैं आज के दिन यानी 28 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि रेबीज जो है बीमारी, वो उसके प्रति जागरूकता फैले, इस जानलेवा बीमारी के बचाव के उपायों की जानकारी का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बहुत जरूरी है ये।
1: और महत्व ये है इस दिवस का कि सही समय पर उपचार और टीकाकरण से रेबीज से होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है, इसलिए सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, विश्व रेबीज दिवस की शुरुआत तो साल 2007 में हुई थी और ये दिन प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जिन्होंने रेबीज को रोकने के लिए पहला सफल टीका विकसित किया था।
1: और रेबीज जो खास तौर पे संक्रमित जानवरों के काटने से या उनकी लार के संपर्क से फैलता है, और श्वान इसके संक्रमण का मुख्य स्रोत है।
0: तो यदि कोई जानवर अगर आपको काट देता है, आमतौर पर जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो तो घाव को तुरंत आप साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह से धोइए और बिना देर किए डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है आपका।
1: बिल्कुल,
0: और इस दिन का संदेश है जागरूकता, समय पर उपचार और पशुओं का टीकाकरण ही रेबीज से बचाव की कुंजी है। तो अगर आप पालतू जानवर रखते हैं अपने आसपास, तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका भी समय समय पर टीकाकरण कराएं। उनका भी टीकाकरण होता है, उनकी भी देखभाल आपको उसी तरह से रखनी जरूरी है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और भाई ये भी जरूरी है कि एक और गीत जो कि नेहा की प्लेलिस्ट में है और हमने वहां से चुरा कर यहाँ पे अपने श्रोताओं के लिए चुन लिया है।

0: दीपा जी देखिए, मेरी पसंद का गाना सुनना मेरा अधिकार होता है।
1: भाई नेहा छोटी है, हम बड़े हैं, तो हमारा भी तो ये कर्तव्य है कि जो नेहा की चाह हो और अगर हम उसे पूरा कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए, है ना सखी।
0: लेकिन अधिकार और कर्तव्य का संतुलन भी तो होना चाहिए ना दीपा जी।
1: ये बात तो सही है। अब अगली बार अगर मैंने कुछ मांगा तो दोगी?
0: हाँ, सोचना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य बन रहा है या नहीं।
1: जी। लेकिन हाँ, हमेशा हम इस तरह से नहीं चल सकते कि अच्छा ये अधिकार है या कर्तव्य है, तो वो इक्वेशन हमेशा दिमाग में नहीं बना सकते, है ना।
0: क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अधिकार और कर्तव्य, और हमें अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, पर ये भी समझना चाहिए कि हर अधिकार के साथ कोई ना कोई जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
1: बिल्कुल। और अपने अधिकारों के लिए हम जितना जागरूक रहते हैं ना नेहा, दूसरों के अधिकारों का भी हमें सम्मान उतना करना चाहिए। हमें अपने बारे में तो बहुत ख्याल रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। और जिस तरह हमें अपने सम्मान या स्वतंत्रता या समानता हमें चाहिए, उसी तरह से ये अधिकार दूसरों को भी मिलना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखो हमने ध्यान रखा ना, तुम्हारी पसंद का गाना बजा दिया।
0: बिल्कुल। और असली शुरुआत तो परिवार से ही होती है ना, क्योंकि घर में हम अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों की भावनाओं और विचारों को सुनना भी तो हमारा कर्तव्य है। तो स्वतंत्रता अगर हमें मिली तो उसका अर्थ ये नहीं कि मनमानी हम करें। हमें अपनी पसंद से अपना निर्णय लेने की आजादी तो मिलती है, लेकिन इससे किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी या नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
1: बिल्कुल। और सिर्फ परिवार में ही नहीं नेहा, ये हमारे आसपास हो या समाज हो या बड़े तौर पे बात करें तो देश, सब जगह ये बात लागू होती है, जिसे हर जगह हर स्थिति में हम इसे देख सकते हैं।
0: जैसे कि सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है हर नागरिक का। हमें सुरक्षित चलने का अधिकार है, लेकिन दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। यानी हमने अगर मोटरसाइकिल पर चढ़ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फास्ट चलाएंगे, या हम पैदल चल रहे हैं तो मतलब ये नहीं है कि किसी भी दिशा में कभी भी कहीं से भी चलने लगेंगे।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नियमों का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है।
1: और इसी तरह से बात आती है अगर वातावरण की, तो स्वच्छ वातावरण अगर हम चाहते हैं, हमारा अधिकार है, और हम इस बात के लिए कई बार ये बात उठाते भी हैं, तो स्वच्छता बनाए रखना हमारा कर्तव्य भी है। हम साफ सुथरी सड़कें रखें, जो पब्लिक प्लेसेस होती है वो चाहते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरी हो, तो हमें ही ध्यान रखना होगा कि हम कूड़ा इधर उधर कहीं ना फेंकें, कचरा यहाँ वहां ना डालने, ना तो खुद डालें ना दूसरों को डालने दें। बिल्कुल।
0: और प्रकृति से जो संसाधन हमें मिलते हैं उस पर भी हमारा अधिकार है, लेकिन उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि पानी, बिजली और पेड़ों का सोच समझ कर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए भी कुछ बचा कर रखें। ये तो खत्म होने वाले संसाधन है।
1: और जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया, तो उस पर भी हम अधिकार और संतुलन का, अधिकार और कर्तव्य का संतुलन हम रख सकते हैं। कैसे? कि अपनी बात कहने की स्वतंत्रता के साथ ये जिम्मेदारी भी हमारी होती है कि कोई झूठी बात है या कोई ऐसी किसी का अपमान ना हो जाए, या कोई ऐसे बोल ना हो, कड़े बोल इस तरह के ना हो कि किसी की प्राइवेसी या किसी की निजता पे नुकसान ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे, इसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए।
0: भले ही वो आपकी अपनी वॉल है, आप कह सकते हैं हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना आपका कर्तव्य है।
1: जी।
0: अब आप उसे पालन करें ना करें वो आपकी समझ पर निर्भर करता है। वैसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना उनका कर्तव्य है। माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों के अधिकारों के साथ साथ उनको जिम्मेदारियों का महत्व भी वो समझाते जाएं।
1: बिल्कुल। और अधिकार मांगते समय दूसरों की जो सीमाएं हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हर जगह हमने उठा के कह दिया ये तो मेरा फर्ज है, अधिकार है, ये तो हमें मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। परिवार हो या कोई कार्यस्थल हो या समाज हो, आपसी समझ और संवाद से ही संतुलन हम कायम रख सकते हैं, है ना।
0: हाँ, छोटी छोटी जिम्मेदारियां जब मिलती हैं तो बड़े बड़े बदलाव भी आते हैं। और हम अपनी, जैसे कि हम एक लाइन में खड़े होकर, कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, कोई जरूरतमंद दिखे तो उसकी मदद करें, छोटे छोटे काम जो है समाज में अनुशासन तो बढ़ाते हैं और साथ में हमारे अंदर संवेदनशीलता भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और अधिकार देखो हमें सशक्त तो बनाते ही हैं और कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं। और जब हम अपने अधिकारों के साथ अपने जो कर्तव्य हैं उनको समझते हैं, तभी परिवार हो या समाज हो, देश हो, तो हम सच्चा संतुलन और अपने लिए एक बेहतर जीवन तभी संभव कर सकते हैं।
0: और सच्चा संतुलन तो यही है कि जब हम बातें करते रहते हैं तो बीच बीच में गीत भी चलाते रहते हैं।
1: तुम्हारी आंखों में क्या लिखा है सब समझ में आ रहा है मुझे।

0: वही लिखा तो हमारे श्रोताओं ने भी बहुत से संदेश है। हमारे साथियों ने लिखा है कि अधिकार के लिए तो कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गए हैं, लेकिन जहाँ कर्तव्य निभाने की बात आती है अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने लगते हैं।
1: और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये दोनों जो रूप है वो अविभाज्य है। अधिकारों के बिना कर्तव्य निरर्थक हो जाते हैं और कर्तव्यों के बिना अधिकार अराजकता को जन्म दे सकते हैं। इसलिए अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना बहुत जरूरी है।
0: और हमारे एक साथी ने अपने अधिकारों का किस तरह से पालन किया है बता रहे हैं कि राजमा चावल मुझे बहुत पसंद है, अपना घर तो अपना घर, पड़ोसियों के यहाँ भी बने तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करता। हमारे पड़ोसी भी इतने अच्छे हैं कि पहले मुझे खिलाते हैं और बाद में वो सभी खाते हैं और मैं भी उनके बनाए राजमा चावल की तारीफ करने से नहीं थकता। वैसे पंजाबी परिवारों का व्यंजन माना जाता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, हम बड़े चाव से खाते हैं। वही एक साथी है वो कह रहे हैं कि कश्मीर के व्यंजन झारखंड में ना के बराबर बनते हैं। तो सखी सहेली में व्यंजनों को सुन रही हूँ तो कश्मीर के व्यंजनों में रुचि पैदा हो गई है। खासकर पिछली बार पनीर की सब्जी सुनी थी बिना प्याज लहसुन और टमाटर वाली, उसके बाद से कश्मीरी व्यंजनों में बहुत रुचि पैदा हो रही है, तो इसका इंतजार रहेगा। तो इंतजार खत्म करें।
1: चलिए तो पहले कौन से वाली रेसिपी बताएं, राजमा गोगची या
0: राजमा में तो टाइम लगता है बनने में, पुलाव बना लेते हैं पहले।
1: चलो तो ठीक है, पहले पुलाव बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या लेना है, बासमती लेना है 1 कप, जो कि तिकल लगभग 30 मिनट पानी में भिगोया हुआ हो। देसी घी लेना है 2 बड़े चम्मच, चीनी या मिश्री 1/2 से 1 कप, जैसे आपके घर में मिठास पसंद हो वैसे, और केसर के कुछ आपको धागे लेने हैं 1 छोटा चम्मच के करीब, और बल्कि उससे थोड़ा कम ही लग जाएगा। और खड़े मसाले यानी कि 4 हरी खड़ी बड़ी वाली हरी इलायची लेनी है, बड़ी वाली भी लेनी है, 3-4 लौंग, 1-2 दालचीनी के टुकड़े और 1 तेज पत्ता, सूखे मेवे जो आपके घर में हो और जो आपके वहाँ पसंद हो वो ले लीजिए। अब बनाना कैसे है इसको, कि बासमती चावल को अच्छी तरह से आपने धो लिया, 30 से 45 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया, फिर इसको छान लीजिए बहुत अच्छे से। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 बड़ा चम्मच घी गरम करें, उसमें कटे हुए जो काट लीजिएगा सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसे काट लीजिएगा, उन सबको आप हल्के से सुनहरे होने तक भून लीजिए। हाँ, इन सब ड्राई फ्रूट्स में किशमिश को आप अलग रख दीजिएगा। और बचे हुए घी में अब हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता डालें, इसके बाद 2 कप पानी डालें और वो जो केसर वाला जो आपने भिगा के रखे थे केसर के धागे
0: दूध में,
1: हाँ दूध में वो भी डालना है। अब पानी में उबाल आने के बाद फिर धीमी आँच करके इसमें चीनी मिला लिए और घुलने दीजिए। इसके बाद भीगे हुए चावल और भुने हुए सूखे मेवे जो आपने लिए थे वो डालना है। पैन को ढक कर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक चावल सारा पानी सोख न ले। और

0: अच्छी तरह इसको आप आपको पका लेना है, और फिर बाद में आप देखिए इसके ऊपर आप चाहें तो सजाना है तो केसर के पत्तियों के साथ और सूखे मेवे के साथ कर सकते हैं। ये जो केसर या भात जो कहते हैं हाँ। घरों में बनता है, ये उसी तरीके का ही है।
1: तो फिर राजमा गोगोची की रेसिपी भी बता दे जो इसके साथ खानी है। इसके लिए हमें राजमा चाहिए, सूखी गोगोची, गोगोची यानी गुच्छे वाले में जो मशरूम होते हैं उनको कहते हैं, और दही चाहिए आवश्यकता के अनुसार, और साथ में चाहिए सौंफ पाउडर, सूखी अदरक का पाउडर यानी सौंठ, जीरा, हींग, नमक, तेल या घी। तो इसके इसको बनाने के लिए सबसे पहले राजमा को भिगोकर अच्छी तरह से पकाया जाता है, फिर सूखी गोगोची को साफ करके पानी में भिगोया जाता है, और इसके बाद मसालों का आप तड़का लगाइए, राजमा और गोगोची को धीमी आंच पर पकाइए धीरे धीरे, और धीमी आंच पर जब आप पकाते हैं तो मसालों की जो खुशबू है वो अच्छी तरह हमें भी मिलती है, और साथ में इससे व्यंजन का स्वाद भी गहरा हो जाता है, और फिर इसके बाद आप इसको खाइए चावल या कश्मीरी शैली के पुलाव के साथ, जो कि हमने बना ही लिया है, तो बस उसके साथ हम खा लेंगे मधुर पुलाव के साथ, है ना?
0: तो ये तो बिल्कुल कंप्लीट
1: खुशबूदार है ना,
0: खुशबूदार हाँ। मतलब बना नहीं है लेकिन फिर भी
1: खुशबू आने लगी है। अब इतनी सारी बातें इलायची और सब चीजें की हो गई है तो ऐसे खुशबू तो आएगी, केसर की भी आ रही है,
0: और देखते हैं इस अगले गीत की खुशबू कैसी है।
1: हाँ।

0: जी हाँ, लता जी की आवाज और उनकी गाए गीतों से हमें भी उतना ही प्यार है ना।
1: और हमारे सभी साथियों ने भी यही लिखा है कि एक ही प्रोग्राम में सारे गाने आना भी मुश्किल है और हर गाना पसंदीदा है, लेकिन हम हमेशा हार जाते हैं समय से, क्योंकि समय बीत जाता है और हमें जाना पड़ता है।

0: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे PCOD और IVF, इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
1: सेहतनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं डॉक्टर ज्योति शाह, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम उनसे बातचीत करेंगे स्त्रियों से संबंधित बीमारियों को लेकर। तो डॉक्टर साहिबा, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू विविध भारती मुझे इनवाइट करने के लिए।
1: जी, तो आज डॉक्टर साहिबा, हम आपसे महिलाओं की रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्या, जैसे अगर हम बात करें PCOD है, PCOS है
2: जी,
1: पीरियड्स को लेकर, मेनोपॉज को लेकर जो बदलाव हो रहे हैं, हार्मोनल बदलाव जो हम महसूस करते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और एक और खास विषय है IVF
2: जी,
1: ये क्या है, इसको लेकर भी हम विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे।
2: जरूर।
1: तो सबसे पहले महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनका सामना महिलाएं अक्सर करती हैं, लेकिन उन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज भी कर देती हैं।
2: तो ये जो क्वेश्चन है मंदाकिनी जी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किशोर अवस्था से लेके रिप्रोडक्टिव एज से लेके मेनोपॉज तक, यानी पीरियड बंद हो जाना वो एज तक। तो जो एक यंग लड़की जो है, जिसको पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम मेनार्की बोलते हैं, वो आज मैं देख रही हूँ, एक्चुअली मैं गए 28 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने जो चेंज देखा है लास्ट 10-15 साल में ये है कि जो पीरियड आना जो नॉर्मली 11 से 15 की एज में आता है, आजकल काफी यंग लड़कियों को, जैसे 7-8 साल की बच्चियों को भी पीरियड आने लगता है।
1: अच्छा।
2: यस, सो ये एक चेंज मैंने देखा है। दूसरा कि जब ये पीरियड आता है तो थोड़े से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम करके एक एंटिटी है, कि पीरियड आने से पहले बहुत इरिटेबल होना, चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा बिहेवियरल डिफरेंस, ये सब हो सकता है, विच इज नॉर्मल। तो मदर्स को डरना नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ। दूसरा जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो बदलाव आ रहा है वो ये है कि गर्ल्स अभी शादी जो है वो या टाइम पे करती हैं लेकिन बच्चा लेट करती हैं, या लेट करती हैं और फिर नेचुरली बच्चा भी लेट होता है। तो अभी जो बदलाव मैं देखती हूँ जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, यानी जैसे 20

0: साल से लेके 30-35 साल की एज में, तो पीसीओडी जो है या पीसीओएस या अभी पीएमओएस हम जो बोलते हैं वो काफी बढ़ चुका है. जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है ये एक काफी एक बर्निंग समस्या है, बहुत है. पीसीओडी में ये है कि अंडे बहुत होते हैं, टू मेनी एग्स, पॉलीसिस्टिक बोलते हैं. तो एक साइड पे वो प्रॉब्लम है, दूसरी साइड पे जो मैं अभी देख रही हूँ ये भी गए 10 साल में ज्यादा, कि यंग लड़कियां मतलब 25 साल 26 साल की लड़की है लेकिन उसके अंडे ही नहीं है या बहुत कम है.
1: अच्छा,
0: ये पहले नहीं था. तो ये भी अभी मतलब जो
1: बहुत
0: जो
1: बड़ी
0: समस्या है. तो जो लड़कियां जो बच्चा प्लानिंग कर रही हैं, जो औरतें हैं, तो ये भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि शायद से अंडे कम हो या पीसीओडी, तो अंडे तो बहुत ज्यादा है. तो ये प्रॉब्लम उनको अपने गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए. और थर्ड स्टेज जो मैंने बोला मेनोपॉज में, तो मेनोपॉज में अगर जब पीरियड बंद होने लगता है या पीरियड बंद हो जाता है तो वुमेन काफी हद तक बहुत सारे चेंजेस महसूस करती है, जैसे मूड स्विंग्स हैं, हॉट फ्लशेस हैं. तो ये मतलब अगर वो एक्सपीरियंस कर रही है और अगर वो बॉदर कर रहा है तो शी शुड टेक हेल्प. एंड ऑल्सो जैसे मेनोपॉज के टाइम पे कैंसर्स की रिस्क भी बढ़ते हैं, तो जिसके बारे में शायद से हम बाद में बात करने वाले हैं.
1: बिल्कुल.
0: तो अगर कुछ भी अलग अदर देन रूटीन ये फेज में भी अगर है तो उनको कंसल्ट करना चाहिए.
1: बिल्कुल, आपने सही कहा. और हम ये जानना चाहते हैं कि अक्सर महिलाओं में थकान है, कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं, नींद की परेशानी है या चिड़चिड़ापन जैसा आपने कहा, तो क्या ये केवल जीवन शैली से जुड़ी बातें हैं या कभी कभी इनके पीछे कोई स्त्री रोग या जो हार्मोनल कारण विशेष हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और हम अपनी जिंदगी को यूं कहें कि घसीटते चले जाते हैं.
0: जी, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हार्मोनल चेंजेस हर एक फेज में जो हो रहे हैं तो वो तो हार्मोन्स के कारण वो चेंजेस तो आते भी हैं काफी लेडीज में. और सेकेंडली जो थकावट है ये इसके कारण भी हो सकती है कि अगर जो औरत है अगर उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स में, अगर उनको माहवारी बहुत ज्यादा हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत दिन तक ब्लीडिंग चालू है, तो उससे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है उनका. अनीमिया एक इंडिया का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये. और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयरन टैबलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस चीज के लिए. तो थकावट अनीमिया के कारण हो सकती है बिकॉज ऑफ द करंट जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ जो हम जी रहे हैं, हमारा खान पान, हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज नहीं, ये सब के कारण जो स्ट्रेस बढ़ता है उसके कारण भी हार्मोनल चेंजेस जैसे थायराइड हो जाना. तो थायराइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि काफी थकावट महसूस हो रही हो, मूड चेंजेस हो रहे हो, वजन बढ़ना, ये सब. तो थायराइड भी चेक करना चाहिए, हीमोग्लोबिन भी चेक करना चाहिए. और इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस भी एक बर्निंग इशू है. तो अगर वेट लॉस हो रहा है, उसके बाद थकन हो रही है, सांस फूल रही है, तो ट्यूबरक्लोसिस की भी जांच करनी चाहिए,
1: संभावना हो सकती है. तो कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहिबा कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हमें मिलते हैं या ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें डॉक्टर की परामर्श लेनी
0: चाहिए,
1: डॉक्टर की परामर्श से हमें अपना इलाज करवाना चाहिए.
0: डेफिनेटली,
1: इसे केवल बुरा व्यवहार समझकर नहीं छोड़ देना
0: नहीं,
1: है,
0: बिल्कुल नहीं छोड़ना है. इसको हमको एड्रेस करना है कि ये क्यों हो रहा है.
1: जी जी.
0: और अगर वो ट्रीटेबल है तो डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए.
1: बिल्कुल. और एनीमिया के बारे में आपने बताया, ये बहुत बड़ी समस्या है और लगभग हर स्त्री को इसका सामना करना पड़ता है. यूं कहें कि पढ़ी लिखी स्त्रियां भी कई बार इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती हैं और इसी में अपना जीवन निकाल लेती हैं. जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके सामने और ज्यादा इस तरह की तकलीफें आती हैं. तो आपसे लंबी बातचीत हम करने वाले हैं, पहले आपकी पसंद का गीत सुन ले.
0: जी, तो कोई भी मोहम्मद रफी का गीत, आई एम ओके विद दैट.
1: अरे वाह, कौन सा सुनाई बताए.
0: तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है.
1: फिल्म चिराग का गीत हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में.

0: डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे आपसे, आपने कहा कि पीसीओडी की समस्या भी आजकल बहुत सुनने में आती है
1: जी।
0: तो हमारी वो महिलाएं जो नहीं जानती हैं कि पीसीओडी क्या है और इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं
1: जी,
0: उन्हें आप बताइए कि क्या है पीसीओडी।
1: ओके, तो पीसीओडी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एक प्रॉब्लम शुरू होती है और उसमें लक्षण ये होते हैं कि लेडीज जो औरतें हैं जिनकी महावारी रेगुलर होनी चाहिए 28 या 30 दिन में, उसके बदले में महावारी डीले हो जाना, जैसे 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन या उससे भी ज्यादा, यानी पीरियड्स लेट होना, या पीरियड जब आता है तो नॉर्मली जो 5 दिन 8 दिन रहता है उसके बदले में 15 दिन 20 दिन कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है
0: जी,
1: तो ये भी एक उसका लक्षण है। अच्छा, पीसीओडी में एक्सेसिव वेट गेन भी हो सकता है, एक्ने यानी पिंपल्स, मुंह पे पिंपल्स आना, ये हो निकल पिंपल्स निकलना, बाल झड़ना, अच्छा दाढ़ी आना। मेरे दो पेशेंट्स हैं जो इनको रोज शेविंग करनी पड़ती है।
0: अच्छा,
1: यस, तो सीवियर पीसीओ पेशेंट्स में सर के बाल निकल जाते हैं लेकिन दाढ़ी के बाल उगने लगते हैं, तो वो एक
0: संकेत है।
1: जी, तो अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है या पीरियड्स इरेगुलर हैं तो मे भी आपको पीसीओ हो सकता है।
0: हो सकता है, तो इस पीसीओडी की समस्या को नियंत्रित कैसे रखा जाए?
1: तो उसके लिए एक्चुअली ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है पीसीओडी। तो पीसीओडी जो है वो लास्ट 10-15 साल में एक एपिडेमिक जो हो चुका है कि ऑलमोस्ट एवरी अदर गर्ल उसको पीसीओ है। बहुत कॉमन है, अगर आप 10 लड़कियों को एक रूम में रखेंगे तो शायद से 5 लड़कियों या 6 लड़कियों को तो पीसीओ होगा, इतना अभी कॉमन हो गया है ये पीसीओ। तो ये द एग्जैक्ट कॉज वी कैन नॉट पिन पॉइंट, बट जेनेटिक एक कॉज हो सकता है कि अगर मदर को पीसीओ है तो डॉटर को हो सकता है। बट अभी की जो लाइफस्टाइल है जहाँ पे लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अपना जो खान पान जो है, जो रेडी फूड, जो घर का खाना नहीं खाते हैं और बाहर का पैकेट खोल के खाना, ये जो रिफाइंड ऑयल वगैरह ज्यादा उसका सेवन करना, होल ग्रेन्स नहीं खा के मैदा और ये सब ज्यादा खाना, ब्रेड है ये, और स्ट्रेस, अभी सब लड़कियां पढ़ रही हैं तो वो स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, एंड सोशलाइजेशन बहुत कम हो गया है, तो आपका स्ट्रेस, आप मतलब आप किसी से बांट नहीं सकते हो, तो सोशल आइसोलेशन हो गया है थैंक्स टू द मोबाइल। तो ये तो ये सब के कारण से ये जो पीसीओ का प्रॉब्लम काफी बढ़ चुका है
0: जी। तो इसके लिए जाहिर है कि हमें डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और इस समस्या का निराकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके फिर साइड इफेक्ट्स हमारे सामने
1: जी। और ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगी कि पीसीओ पेशेंट्स जो लड़कियां हैं, जरूरी नहीं कि उनका वजन ज्यादा हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थिन लीन पीसीओ, यानी वो बहुत पतली हैं बट फिर भी वो पीसीओ है। तो पीसीओ का क्राइटेरिया, बेसिकली मेन क्राइटेरिया ये है कि एक तो पीरियड की इरेगुलरिटी होना, सेकेंड क्राइटेरिया है कि मेल हॉर्मोन्स जो ज़्यादा होते हैं, तो जिसके कारण मैंने बताया कि बॉल्डिंग होना, दाढ़ी उगना, पिंपल आना ये, एंड थर्ड सोनोग्राफी पे ओवरीज में बहुत सारे अंडे दिखना, ये एक मतलब क्राइटेरिया है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि पीसीओ में जो हर महीने अंडा फूटना चाहिए वो उनका फूटता नहीं है, यानी अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर थोड़ा टाइम के बाद दूसरा अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर वैसे करके 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद जब फूटता है, एक कोई अंडा फूट गया तो फिर तभी पीरियड आता है, लेकिन वो पीरियड बहुत लंबे समय तक चालू रहता है, तो ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण पेशेंट अनीमिक भी हो जाती है, क्योंकि ये इंप्रेशन है लोगों को कि पीरियड में वो जो ब्लड है वो निकलना चाहिए, वो खराब ब्लड है। तो ये मैं एक्चुअली बताना चाहूंगी सबको कि ये वो खराब ब्लड नहीं है, वही ब्लड आपके हार्ट में, लंग्स में, किडनीज में है, तो जो नॉर्मल जाना चाहिए वो ठीक है, बट उससे ज्यादा अगर जा रहा है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही जरूरी
0: है। बिल्कुल, एक आम धारणा है या ग्रामीण तबकों में तो खास तौर से कि गंदा खून है जो बाहर निकल रहा है।
1: जी जी,
0: बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये गंदा खून नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर में है और एक उचित मात्रा में निकलना चाहिए महावारी के दौरान, लेकिन उससे ज्यादा निकलते ही दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर साहिब, पीसीओडी के साथ अक्सर हम पीसीओएस की भी चर्चा आजकल कर रहे हैं, तो क्या पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों एक ही है या दोनों में कोई बेसिक अंतर है?
1: एक ही है एक्चुअली, अभी जो नया टर्मिनोलॉजी आया है, अभी पीसीओडी या पीसीओएस नहीं बोलते हैं, हम पीएमओएस बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी ये जो लड़कियां जिनको पीरियड इरेगुलर आ रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं या स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं या वजन बढ़ रहा है या इनफर्टिलिटी है उसके कारण या जो भी सिम्टम है पीसीओडी का, उसके साथ साथ उनको डायबिटीज के होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी हार्ट अटैक्स होने के, उनका लिपिड प्रोफाइल जो है, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह ट्राइग्लिसराइड्स वो चेंज होता है और कार्डियक रिस्क उनका बढ़ जाता है. तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इसमें पीसीओडी में कैंसर्स के भी रिस्क बढ़ जाते हैं. तो ये सिर्फ पीरियड रिलेटेड या स्किन रिलेटेड नहीं है एक्चुअली, इसके बहुत सारे और भी मल्टी डायमेंशंस हैं जो हमको देखने चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि ये भी मुझे हो सकता है.
0: बिल्कुल, यानी कि एक समस्या के चलते कितनी सारी समस्याओं से महिला को
1: रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड
0: उससे रिलेटेड समस्याएं हैं जिसका अंदाजा हमें लगता नहीं
1: जी,
0: है
1: जी.
0: और समय हो जाने पर या बीत जाने पर फिर उसके दूसरे परिणाम हमारे सामने आते
1: हैं. Yes,
0: आपने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि पीसीओडी की समस्या जब है तो ये नहीं है कि वो महिला या लड़की बहुत फैटी होगी, दुबली पतली लड़की को भी ये समस्या हो सकती है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है. तो क्या हम ऐसा माने डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि पीसीओडी पीसीओएस, इसका अर्थ ये माने कि महिला माँ नहीं बन सकती, ऐसी कोई धारणा?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो बेसिकली पीसीओ में जो मैंने जो बताया कि अंडे नहीं फूटते हैं रेगुलरली, जो 28 या 30 दिन में एक अंडा नॉर्मली फूटता है, जब वो नहीं फूटता है, जिसको हम ओवुलेटरी डिसफंक्शन बोलते हैं, तो वो हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं मेडिसिन से. इनफैक्ट एक्चुअली इवन बिफोर मेडिसिन हम उनको बोलते हैं आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करो, यानी आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट पे ध्यान रखो, योग करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, होल ग्रेन्स इंक्लूड करो, फ्रूट्स एंड नट्स इंक्लूड करो अपनी डाइट में. तो थोड़ा भी इवन 5% ऑफ वेट लॉस अगर होता है एक पीसीओ पेशेंट जो मतलब जिसका वेट ज़्यादा है, तो वो जो अंडा जो रेगुलरली नहीं फूटता है वो फूटने लगता है. यानी सिंपल लाइफस्टाइल चेंज से भी काफ़ी हद तक पीसीओडी या पीएमओएस के हम सिम्टम्स रिवर्स कर सकते हैं. ये परमानेंट नहीं है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और ये डाइट एक्सरसाइज को
0: बदलते हैं.
1: यस, तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अभी आजकल जो मैं सुनती हूँ लड़कियाँ 1-2-3 बजे के पहले सोती नहीं है, 8-9-10 बजे के पहले उठती नहीं है, तो ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जब सोते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसके कारण हम गहरी नींद सोते हैं, जो हार्मोन है मेलाटोनिन.
0: बिल्कुल.
1: और मेलाटोनिन ये हार्मोन का पीक राइज इज अराउंड 9, 9:30, 10.
0: अच्छा
1: जी,
0: उस वक्त तो हम लोग खाना पसंद करते हैं या टीवी देखना पसंद करते हैं.
1: यस, तो जब ये उसका पीक निकल जाता है
0: तो
1: नींद आती है लेकिन इतनी गहरी या क्वालिटी स्लीप नहीं रहती
0: नहीं
1: है. और दूसरी बात ये है कि जब आप लेट सोते हो जैसे 12-1, तो जब बॉडी जग रही है तो ब्रेन ये इंटरप्रेट कर रही है कि ये कुछ स्ट्रेस है, तो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो सिक्रेट होने लगता है, जिसके कारण स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी वजन बढ़ना, नींद क्वालिटी नींद नहीं आना, स्पेशली अराउंड द बेली कॉर्टिसोल के कारण वेट पुट ऑन होता है, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी का इन्फ्लेमेशन. तो ये सब पीसीओ के सिम्टम्स और भी खराब कर देता है.
0: अच्छा.
1: इसीलिए टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, उसके लिए टाइम पे डिनर लेना, यानी अर्ली डिनर, जैसे 7, 7:30, 8 o'clock, यानी सोने से 2 घंटे पहले डिनर लेना बहुत ज़रूरी है. और अगर मैं बोलती हूँ कि आपको 10, 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए, बिकॉज मेलाटोनिन पीक तभी होता है और तभी आपको इतनी गहरी नींद आती है कि क्वालिटी स्लीप, कि जहाँ पे बॉडी प्रोसेसेस सब हीलिंग होने लगता है, बॉडी का प्रोसेसेस सब स्लो डाउन हो जाते हैं और टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं. तो लेकिन जब आप वो टाइम पे नहीं सोते हैं तो फिर वो जो डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए प्रोसेस वो नहीं होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है. तो ये चेंज भी लाना बहुत जरूरी है. और जल्दी उठते हैं जब आप नेचर के साथ रहते हैं, आप जल्दी उठते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं.
0: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने डॉक्टर साहिबा, कि हम किस तरह से खुद को हमने बीमार कर रखा है, देर रात तक जगना, सुबह लेट तक उठना और कभी भी खाना खा लेना, जब भूख लगेगी खा लेंगे, इस तरह की अनियमित जो दिनचर्या हमारी है वही बहुत बड़ा कारण है इन बीमारियों का.
1: Absolutely.
0: है ना? और अगर हम इनमें थोड़ा सा भी बदलाव ले आते हैं तो हम धीरे धीरे सुधार महसूस कर
1: 100%
0: सकते हैं. डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है? सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत.
1: आज फिर जीने की तमन्ना.

0: किस समय एक महिला को या किशोरी को सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना आपने कहा 7:30 to 8 o'clock खा लेना चाहिए, तो सुबह का और दिन का भी किस तरह का होना चाहिए टाइम, आप थोड़ा सा बताइए।
1: ऐसा है कि उठने के बाद एक तो आई रेकमेंड कि आप वार्म वाटर लें उठने के बाद, उसमें आप लेमन डाल के, नींबू डाल के ले सकें तो एक बॉडी एनर्जाइज, मतलब उसको हाइड्रेशन चाहिए क्योंकि पूरी रात हाइड्रेशन नहीं मिला,
0: मिला नहीं है।
1: तो बॉडी की जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाती है। मे बी थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट लेके या कोई नट्स लेके आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, एम्प्टी स्टमक करें तो भी चले, और उसके बाद आप जो आपका ब्रेकफास्ट है वो होलसम ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी और चावल, ये इसमें ज़्यादा कार्ब्स रहते हैं उस टाइप का, यानी हम जो पराठे खा लेते हैं वो कम खा के जैसे प्रोटीन्स उसमें इंक्लूड करें। आप खा सकते हैं जो इंडियन ब्रेकफास्ट है उसमें पोहा है, उपमा है, पराठे हैं, तो अब हमको ये सोचना है मदर्स को या विमेन को कि मैं इसमें प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ाऊं।
0: ठीक,
1: तो जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं कार्ब्स कम, तो फिर वो इंसुलिन स्पाइक जो होता है वो कम होता है, प्रोटीन्स प्रिवेंट इंसुलिन स्पाइक, जो मैंने बोला ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और जब स्पाइक होता है उससे वेट गेन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण या इंसुलिन स्पाइक के कारण वेट गेन होता है। तो जब हम प्योर ओनली कार्ब्स जब हम खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा होती है, तो हमको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा करनी चाहिए। जो हम पहले जो खाते थे, जो हमारे जो पूर्वज थे वो खेती बाड़ी करते थे, उनके फिजिकल लेबर कितना था, अभी हम वो तो करते नहीं है, वी कैन नॉट हैव दैट सेम फूड, उनकी जो क्वांटिटी है वो भी उतनी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, और जो कार्ब्स उनको एनर्जी के लिए चाहिए वो फिजिकल वर्क के लिए वो भी हम यूज़ नहीं करते, तो ये थोड़ा चेंज लाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में भी कोई हाई प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट, जैसे आप पनीर ले लो या टोफू ले लो सोयाबीन्स का, बॉइल्ड एग या स्प्राउट्स, वैसे ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। मिड मॉर्निंग कोई फ्रूट ले लिया अलोंग विथ नट्स एंड सीड्स, वैसे कर सकते हैं। लंच में सैलड यानी फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर आल्सो प्रिवेंट्स इंसुलिन स्पाइक, तो प्रोटीन्स फाइबर्स ये आपके डाइट में, हर डाइट में होने चाहिए, ताकि जो इंसुलिन स्पाइक जो मेन क्रिमिनल मतलब जो प्रॉब्लम का कारण है वो ना हो, तो उसके लिए लंच में आप सैलड के साथ प्रोटीन और जो कार्ब्स की मात्रा है वो कम करें। सिमिलरली मिड आफ्टरनून या मिड इवनिंग आप ग्रीन टी ले सकते हैं आपकी मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के लिए, और इवनिंग में सूप जिसमें फाइबर मिले अलोंग विद सम प्रोटीन, जैसे मूंग दाल चिल्ला ले लिया या उस टाइप का, मतलब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए इंसुलिन स्पाइक को
0: नहीं
1: होने के लिए।
0: डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी कि किस तरह से एक स्त्री को, एक औरत को, महिला को अपना भोजन या अपनी दिनचर्या फिक्स करनी चाहिए, लेकिन हम उन औरतों को भी ध्यान में रखना चाहते हैं जो श्रमिक वर्ग की हैं, बहुत मेहनत करती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, गांवों में रहती हैं, उन्हें नहीं पता होता किस तरह से ग्रीन टी पी जाए या किस तरह से प्रोटीन खाया जाए, उनके लिए आप किस तरह की डाइट का सुझाव देंगी?
1: जैसे इनफैक्ट अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता है उनको पीसीओ होगा भी, बट अगर होता है तो फिर दालचीनी पानी, दालचीनी इज एन इंसुलिन सेंसिटाइजर है, मेथी इंसुलिन सेंसिटाइजर है, जीरा इंसुलिन सेंसिटाइजर है, तो मेथी, जीरा, दालचीनी पानी ये सब इसका सेवन, ये दिन में एक बार दो बार ऐसे, और सोते समय भी दालचीनी का पानी लेके सोए तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया।
0: अच्छा, यानी दालचीनी को पानी में भिगो देना है और छान के
1: बॉइल करके उसको छान के ले सकते हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है आपकी, कोई भी टाइम पे खा लेना। चलो कभी कभी वो हम स्ट्रेस में खा लेते हैं, हमको भूख नहीं लगी होती है लेकिन हम खा लेते हैं, तो वो कम कर देता है। और प्रोटीन्स जो जब आप ज्यादा लेते हो, जैसे आपने खिचड़ी ले ली, खिचड़ी में आपने दाल की मात्रा ज्यादा ले ली तो प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं। कोई भी प्रोटीन अगर आप ज्यादा लेते हो ना तो आपका जो सटाइटी यानी आपको लगता है कि नहीं अब पेट भर गया है, अब भूख नहीं है, तो भूख कम लगेगी, वो भी है। तो आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो खाना आप खाते हो, कैलोरीज लेते हो, वो कम हो जाएगी,
0: नहीं खाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इस तरह से अगर हम अपना डाइट प्लान करते हैं तो बहुत हद तक बहुत सी समस्याओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं।
1: डेफिनेटली, मतलब और उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर चीज के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी। मतलब आज कल जो हम डिप्रेशन वगैरह इतना सब सुनते हैं, इतना स्ट्रेस के कारण, तो वो भी विद एक्सरसाइज काफी हद तक कम हो जाता है,
0: कम हो जाता है। और गीत संगीत सुनने से भी काफी हद तक हमें
1: 100%
0: तो एक गीत हो जाए आपकी पसंद का।
1: मैं सुनना चाहूंगी जूली फिल्म का माय हार्ट इज बीटिंग।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना है। प्रीति सागर की आवाज में हम
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: डॉक्टर साहब, हमारा सवाल यह है कि एक सामान्य जो मासिक चक्र है वो कैसा होता है या कैसा होना चाहिए?
1: ओके, तो जो पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मली हर 28 से 30 दिन में पीरियड्स आते हैं, जिसको हम माहवारी बोलते हैं। तो ये एक अंदर जो हॉर्मोन्स के चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसके कारण नॉर्मली हर महीने एक अंडा बढ़ता है, जो पीरियड के सेकंड थर्ड डे से मतलब बढ़ने लगता है, और फिर वो लगभग पीरियड के मे बी 11वें 12वें 14वें दिन फूटता है अंडा, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं।
0: ठीक है।
1: जब अंडा फूटने के बाद अगर वो वुमन प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वो उनका जो यूट्रस का जो लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो शेड ऑफ हो जाता है। वो लाइनिंग जो है वो तैयारी मतलब गादी होती है कि प्रेगनेंसी अगर रुकती है तो उसकी गादी मतलब वो तैयार होती है, और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है, तो जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो जब रेगुलर ओवुलेशन यानी हर महीने जब अंडा फूटता है और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं और जो पीरियड आता है, दैट इज व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन।
0: यानी 28 से लेकर 30 दिन का ये चक्र होता है।
1: यस, कई गर्ल्स में 21 दिन में भी पीरियड आता है, दैट इज आल्सो नॉर्मल, वो उनका साइकिल है। कई बार 35 डेज साइकिल हो सकता है।
0: सो इट्स अलग-अलग शरीर में अलग,
1: ऑन एन एवरेज 28 टू 30 डेज
0: 30 होना चाहिए। अभी आप शुरू में बता रही थी कि इसका जो पहले रेशो था 12 से 15 वर्ष तक था कि वहां से पीरियड शुरू हो जाते थे, लेकिन अब आपने देखा है कि 7-8 साल लड़कियों को भी पीरियड होने लगी है। क्या इसका कारण है? जल्दी उम्र में जब बच्चा समझ ही नहीं पाता कुछ भी।
1: जी, तो ये एग्जैक्ट रीजन तो शायद डिफिकल्ट है बताना, बट सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अभी आजकल के बच्चों को जो सोशल मीडिया एक्सपोजर है तो उनका जो मैच्योरिटी है
0: वो जल्दी
1: होने लगता है। तो जो हॉर्मोन्स का जो नॉर्मल जो चेंजेस आने चाहिए जो टाइम पे, वो शायद अब जल्दी होने लगे हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है।
0: तो ऐसी खास बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए जिन बच्चियों की 7 या 8 साल की उम्र में माहवारी शुरू हो गई है?
1: तो बच्चियां बहुत छोटी हैं, सो इसलिए थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना कि वो तो डर जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, तो एक तो कि ये नॉर्मल है, नथिंग टू वरी, एंड उनको अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी पैड यूज कर रहे हैं या जो भी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो एरिया को साफ रखना, या अगर कपड़ा यूज कर रहे हैं तो कपड़ा अच्छा साफ धुला हुआ होना चाहिए, सनलाइट में सुखाया हुआ होना चाहिए, वो सब बच्चियों को समझाना। एंड सेकेंडली कि लड़कियां इस चीज को लेके बहुत ही डरी हुई रहती हैं, मतलब कम्प्लीटली वो उनको बोल देना कि ये टोटली नॉर्मल है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको ये भी बताना, ऑफकोर्स दे आर वेरी स्मॉल बट आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट भी हैं, कि प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं जब पीरियड शुरू हो रहा है, दैट मींस अभी अंडा फूटने लगा है, तो दैट मींस देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये भी मतलब सेक्सुअल एजुकेशन भी
0: बहुत
1: जरूरी है, ये सोच के कि बच्ची है तो इसको क्या अभी
0: बताएं,
1: लेकिन अभी जो एनवायरनमेंट है तो उनको गुड टच बैड टच ये तो हम
0: बताते ही हैं,
1: लेकिन अभी उसमें ये भी ऐड करें कि अब प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
0: मतलब एक इतनी छोटी बच्ची को ये एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है माँ की तरफ से।
1: हाँ, और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जनरली फर्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उनका जो ओवुलेशन, जो मैंने बताया कि अंडा फूटना की वो प्रक्रिया जो रेगुलर नहीं होती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां का पीरियड जैसे आया फिर मे बी 5-6 महीने नहीं आया, या 2-3 महीने कंटिन्यूअसली ब्लीड हो रही है।
0: हाँ।
1: तो अगर ऐसा हो रहा है उनको डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज यू कैन नॉट अलाउ कि वो बच्ची 15 दिन 20 दिन 25 दिन बस उसका ब्लीडिंग चालू है, बिकॉज वो डेफिनेटली अनिमिक हो जाएगी उसकी। और अगर लेट आया है पीरियड तो नॉट टू वरी कि फर्स्ट 1-2 साल ऐसे इरेगुलर ओवुलेशन होता है, तो
0: ये भी चिंता का विषय हो जाता है।
1: काफी बार मदर्स आते हैं
0: कि क्या बात है अगले महीने इसको समय पर पीरियड्स नहीं आए।
1: जी जी जी,
0: ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 1-2 साल तक ये समस्या आ सकती है कि पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं आएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रही है महावारी तो उसके लिए पेरेंट्स को चिंता करनी।
1: यस, उनको डॉक्टर के पास डेफिनेटली लेके जाना है। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है, एक मेरी पेशेंट आई थी जो बच्ची का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम हो गया था, क्योंकि वो 20 दिन कंटिन्यूसली ब्लीडिंग विद क्लॉट्स था उसको, एंड उनको लगा कि ठीक है बंद हो जाएगा, लेकिन शी ऑलमोस्ट एक फेंट हो गई थी स्कूल में।
0: बच्चे के अंदर कितना डर बैठ जाता होगा ना छोटी बच्ची को कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और फिर उसको ता उम्र से फेस करना है तो उसके लिए उसको मेंटली बहुत मैच्योर करना होगा एक माँ को। तो डॉक्टर साहिबा, जब आपने कहा कि पीरियड्स रेगुलर भी होते हैं, इरेगुलर्स भी हो सकते हैं, इस दौरान आपने देखा है बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा ऐंठन आती है, बच्चे तो खैर लड़के तो रोने भी लग जाती है कई बार, महिलाएं भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग से परेशान हो जाती हैं, और कई कई महीनों तक पीरियड्स नहीं भी आता है, ऐसी समस्याओं से भी हम दो चार होते हैं। तो इनमें से किन स्थितियों को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए, और कितना सावधान रहना चाहिए, और इसको किस तरह से फेस करना चाहिए?
1: तो जो लड़की जिसका पीरियड रिसेंटली स्टार्ट होता है और एक्सपीरियंस करती है बहुत पेन, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है, तो इसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लड़कियों को बहुत ज्यादा पेन होता है, कई को बिल्कुल नहीं होता है, कईयों को थोड़ा मीडियम होता है। तो अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो पेन किलर कोई भी पैरासिटामोल टाइप दे सकते हैं बच्चे को, ताकि वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि सबका पेन थ्रेशोल्ड जो है, यानी पेन सहन करने की शक्ति भी अलग
0: अलग होती है,
1: तो उसके लिए हाँ बिल्कुल मेडिसिन ले सकती है बच्चे, बट ज्यादा पेन किलर्स नहीं खाने, ये मुझे स्ट्रेस करना है, क्योंकि ज्यादा लेने से, उनका सेवन करने से कई बार किडनी पे असर आ सकता है, स्पेशली ड्रग लाइक डाइक्लोफेनेक जो पेन किलर्स में काफी टाइम होता है, तो आपके डॉक्टर को मिलके ही पेन किलर लें, अगर पैरासिटामोल काफी सेफ है तो वो ले सकते हैं। जो 15-20 साल के बाद की एज के, जो पहले पेन नहीं था और अभी बहुत सिवियर होने लगा है, तो डेफिनेटली देखना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है। तो फाइब्रॉइड्स एक रीजन हो सकता है, और दूसरा एक अभी जो एंडोमेट्रियोसिस एक एंटिटी है, एटलीस्ट हमारे सिटीज में तो काफी बढ़ गई है।
0: तो डॉक्टर साहिबा, इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक गीत सुन ले आपकी पसंद का।
1: जी
0: बताइए।
1: दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।
0: आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: कई बार क्या होता है लड़कियां या महिलाएं पीरियड्स के दर्द को वर्षों तक एक सामान्य मानकर सहती रहती हैं, जैसे आपने कहा पैरासिटामोल खाई या वर्किंग वीमेन से चली गई जॉब में, लेकिन कब ये दर्द किसी बीमारी की ओर बढ़ जाएगा? तो आजकल जो एंडोमेट्रियोसिस जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ये भी इस तरह की बीमारी भी दिखने में आ रही है, तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए।
1: तो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक साइंस अच्छी तरह से पता नहीं कर पाया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो इसके कारण भी हमारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, मतलब एक कोई एक रीजन नहीं बताया कि मे भी ये हो सकता है, मे भी ये हो सकता है वैसे। तो उसमें से एक कारण शायद सब लोग समझ पाए, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यूट्रस के साइड पे दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जो ओवरीज में से जो अंडा निकलता है वो फेलोपियन ट्यूब्स पिकअप कर लेती हैं। तो जब वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो वजाइना से बाहर आता है, वैसे ही थोड़ा बहुत ब्लड थ्रू द ट्यूब्स एब्डोमिन में चला जाता है, यानी ओवरी पे एंडोमेट्रियल टिश्यू, जो एंडोमेट्रियम जो बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियल टिश्यू अगर ओवरी में है या यूट्रस के सरफेस पे है, तो ये जब हर महीने वो एंडोमेट्रियल टिश्यू ड्यूरिंग पीरियड्स वो ब्लीड होता है, तो फिर वो गांठ हो सकती है ओवरीज पे, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, या यूट्रस के सर्फेस पे वो गांठ हो सकती है, यानी पीरियड्स में वो ब्लड जमा होने लगता है, जिसके कारण वो सिवियर पेन हो सकता है पेशेंट को, और उसके कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस definitely rule out करना चाहिए with the help of a sonography, sometimes even a MRI. मतलब बहुत अगर pain है तो definitely investigate करके endometriosis rule out करना बहुत ही important
0: जरूरी है। इसे केवल एक साधारण दर्द समझकर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। और इसके साथ ही डॉक्टर साहिबा, महिलाओं से जुड़ी एक और समस्या आती है, ल्यूकोमिया, जिसे हम सफेद पानी है ना सामान्य भाषा में कहते हैं, या खुजली है उस स्थान पर, जलन होना, या असामान्य स्राव, ज्यादा स्राव होता है, ऐसी समस्याओं को लेकर भी हमें डॉक्टर के पास जाकर बताने में बहुत झिझक महसूस होती है, और हम इसे दबाते चले जाते हैं या इसको झेलते चले जाते हैं, तो कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है?
1: तो इसके लिए पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो वाइट डिस्चार्ज, जो लुकोरिया बोलते हैं, टू सम सर्टेन एक्सटेंट ये नॉर्मल है पीरियड के पहले।
0: अच्छा।
1: और ओवुलेशन के टाइम पे, जो मैंने बोला ना कि पीरियड के 14वें दिन या 15वें दिन जब अंडा फूटता है, उसके पहले थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज जाना, ये दोनों टाइम में नॉर्मल है। तो अगर वाइट डिस्चार्ज में अगर स्मेल नहीं है, इचिंग नहीं है, तो वो वरीसम नहीं है, स्पेशली अगर पीरियड के पहले या मिड पीरियड, मतलब मिड साइकिल में है। बट अगर बहुत बहुत बास आ रही है, या बहुत बदबू आना, या बहुत इचिंग होना, यानी बहुत खुजली जैसा वहां पे आना, अगर ये हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
0: तो ये जो समस्या हम जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं, किसी भी उम्र की महिला में हो सकती है?
1: जी, डेफिनेटली हो सकती है, कोई भी एज में, यंग एज से लेके मिडिल एज से लेके इवन पोस्ट मेनोपॉज हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: उसमें एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर।
0: अच्छा। जी, जो एक आम समस्या है।
1: यस, इंडिया में ऑलमोस्ट 200 वुमेन आर डाइंग ऑफ दिस कैंसर एवरी, मतलब ये सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है खास करके विलेजेस में। तो अगर एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, स्पेशली मिक्स्ड विद ब्लड अगर,
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी,
1: तो इमिडिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, और वो कोई भी एज में, मतलब सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद अगर ये समस्या आ रही है, तो ये 100% आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर ये मिक्स्ड विद ब्लड है।
0: किसी तरह की झिझक या समस्या को लेकर हम बैठ जाते हैं, ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होता।
1: जी, बिल्कुल।
0: एक गीत आपसे सुनेंगे, लेकिन चूंकि बात बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर चल रही है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था फाइब्रॉइड का, कि महिलाओं के गर्भाशय में एक गांठ है जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, और ये भी एक आम समस्या की,
1: ये बहुत ही आम
0: समस्या है। तो ये एक सामान्य है, या हमें सचेत हो जाना चाहिए, या कई बार ऐसा मानते हैं कि पीरियड्स में जो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है उसकी वजह से ये फाइब्रॉइड की समस्या सामने आती है?
1: नहीं, फाइब्रॉइड बेसिकली जो यूट्रस का जो मसल है, इट्स अ फाइब्रोमस्कुलर ग्रोथ, ये एक नॉन कैंसरस, यानी ये कैंसर नहीं है, ये ग्रोथ है, एक गांठ है, लेकिन जो बहुत रेयर है कैंसर होना, यानी 1,00,000 फाइब्रॉइड में एक कैंसर मतलब हो सकता है, तो मतलब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम उसको नॉन कैंसरस ही बोलते हैं फाइब्रॉइड्स. तो जो मसल में जब ये जो गांठ बनने लगती है, तो डिपेंडिंग ऑन जो गांठ कहाँ पे है, अगर यूट्राइन कैविटी के अंदर है, यानी जहाँ एंडोमेट्रियम है जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, मसल के अंदर है तो उसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं, यूट्रस के बाहर है तो सबसीरोसल फाइब्रॉइड बोलते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के. तो फाइब्रॉइड्स के कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव पेन होना, एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज और बैकएक. अगर ये सिम्टम्स है तो फाइब्रॉइड हो सकता है पेशेंट को. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड लोकेशन, कई बार बड़े फाइब्रॉइड्स यूट्रस के बाहर है तो इतना तकलीफ नहीं देते हैं.
0: अच्छा.
1: कई बार बहुत छोटे फाइब्रॉइड्स है लेकिन यूट्रस के अंदर के साइड पे है, बहुत छोटे, मे बी इवन 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, वो बहुत तकलीफ दे सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड्स है तो उसको निकालना ही चाहिए. ये भी मेरे पास काफी पेशेंट्स आते हैं कि फाइब्रॉइड है तो मुझे थैली निकालने को बोला है. नो, आपके सिम्टम्स क्या है, आपकी साइज क्या है फाइब्रॉइड्स,
0: कहाँ में है,
1: कहाँ पे लोकेशन कहाँ है, वो सब देख के फिर डिसीजन लिया जाता है कि गांठ निकालनी जरूरी है या यूट्रस निकालना जरूरी है.
0: तो कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर साहिबा कि ऐसी स्थिति में बच्चा पैदा नहीं हो सकता है या स्त्री जो है गर्भधारण नहीं कर पाती है, ये समस्या भी आती है.
1: मैंने जो बोला यूट्रस की लाइनिंग के अंदर जब होता है तो इट कैन एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी. जैसे हम कॉपर्टी, जब बच्चा नहीं चाहिए तो कॉपर्टी डालते हैं, कॉपर्टी एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी और बच्चे को इम्प्लांट, मतलब एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने से प्रिवेंट करती है, यानी गर्भ निरोधक होता है. वैसे ही अगर फाइब्रॉइड जो है, अगर यूट्रस के कैविटी के अंदर है जिसको हम पॉलिप बोलते हैं या सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, तो उसके कारण बच्चा नहीं होने का कारण हो सकता है या रिकरेंट अबॉर्शन भी हो सकते हैं.
0: इसलिए सचेत हो जाना चाहिए और जैसे ही हमें लक्षण मिलते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर इसका
1: ये अबॉर्शन का भी कारण बन सकता है. यानी गर्भ नहीं रुकना या घड़ी घड़ी नो 1.5 महीना 2 महीने में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, ये भी कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का.
0: जी, तो एक गंभीर समस्या बन सकती
1: बन सकती है, बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कैंसर नहीं है
0: नहीं.
1: तो डरना नहीं है.
0: इलाज संभव है.
1: यस, इलाज संभव है और जरूरी नहीं है कि सब फाइब्रॉइड्स को हमको ट्रीट ही करना है. हम बस उन पे नजर रखें, ऐसा भी कर सकते हैं.
0: जी, तो चलिए गीत सुन लेते हैं.
1: जी
0: बताइए.
1: आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे.
0: बहुत सुंदर गीत है लता मंगेशकर की आवाज में. फिल्म का नाम है अनपढ़.

सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पीसीओडी और आईवीएफ। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: इतना कहना है एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती
3: मेरा साया साथ होगा
0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद

गीत में आज हम लेकर आए हैं ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं, लेकिन सुनने के आनंद, कौतूहल और आश्चर्य के लिए इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर हमने जोड़ दिया है। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जिंदगी रूठने और मनाने का सिलसिला है, जिंदगी जानबूझकर रूठने का सिलसिला है और फिर जानबूझकर मान जाने का सिलसिला भी। शायद हमारा मन जानना चाहता है कि किसी को हमारी परवाह है या नहीं। शायद हमारा मन इंतजार करता है कि हम रूठें और कोई आकर हमें मना ले।

बरसाती पलों को दे दी है आवाज वरना हम कैसे कहते अपने मन की बात हम कैसे करते बयां अपने प्यार को अल्फाज अपने सही सही मानी बयां नहीं कर पाते जिंदगी के ये नाजुक लम्हे अनकहे ही रह जाते।

0: कक्षा या गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये गाना।
1: मेरे महबूब तुझे तेरी मुहब्बत की कसम।
0: हम अभी हाजिर हुए

ये क्यों हवाएं अचानक खुशगवार लग रही हैं? ये क्यों अचानक आसमान के घूंघट से झांकने लगा है चांद? ये क्या हुआ कि अचानक भला लगने लगा है उदासी वाला कोहरा? ये कौन है जिसने आकर बदला है हमारी जिंदगी को?

अच्छा या गीत में आज ऐसे गाने थे जिनके दो संस्करण हैं। दोनों संस्करणों को हमने किसी मोड़ पर जोड़ दिया था आश्चर्य, कौतूहल और आनंद के लिए। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम नए तराने पुराने कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। अभी शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, तो आइए उठाते हैं आनंद कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC

फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का शेड्यूल केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में
0: और अजीत का भी नमस्कार धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने लिखते हैं
1: दुनिया को खुश करने की नहीं अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुशनसीब इंसान हैं।
0: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुंगराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद अखिला प्रसाद जी का उन्होंने लिखा है
0: अजीत जी और विमलेश जी जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था सच कहूं तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुंचा दिया
1: जी
0: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताजा कर दी
1: जी
0: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा
1: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हैं बबलू साहू जामुन देवी साहू राजू लल्ला पूजा प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू लिखते हैं
1: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं इन पर अपने बड़े बुजुर्गों माता पिता गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान सहयोग साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए हम अपने अतीत को कभी न भूलें चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से दोमेंद्र नेताम गंगेश्वरी नेताम चंचल नेताम कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का
1: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति श्रीमती सविता प्रजापति घनश्याम राम हरिशंकर रत्नेश कुमार प्रशांत हेमंती प्रजापति लिखते हैं
0: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी आपको हमारा सादर प्रणाम हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है
1: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता कमला देवी गुप्ता सुधा कविता पंकज आयुषी और मेहू लिखते हैं
0: नमस्कार उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए
0: आगे लिखते हैं 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए कुष्ठ रोगियों के तन मन धन से सेवा की और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया
1: जी।
0: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है आप दोनों का हृदय से धन्यवाद
1: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने

0: के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं कि राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था।
0: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था।
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
1: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
0: श्रोताओं, इसका उत्तर है थर्मामीटर को हिंदी में ज्वरमापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
1: हमारा अगला प्रश्न था बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है।
0: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप नाम दो ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है।
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं।
0: जी,
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माद।
0: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन कर लेनी चाहिए।
2: एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
3: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा मैं उसे दबोच लूंगा।
2: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में दधिपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
3: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
2: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा,
3: ए मेरी मांद, ए मेरी मांद।
2: पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
3: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं। पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
2: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
3: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
2: उसने सोचा,
3: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
2: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
4: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
1: अभी आपने सुना यह हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है।
1: देखते हैं।
2: और वो भी अचानक?
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।
0: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
2: भैया कोई खास बात है जरूर।
3: हाँ, अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
2: अच्छा,
3: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे।
2: हाँ,
3: बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया कुछ पता नहीं जाने क्या क्या मसला
1: है। ठीक है,
3: चलो भगवान से
2: क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा।
1: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
2: शोक सूचना?
1: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
4: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
1: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है और हमारे गांव के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे भाई धन सिंह थापा इसी गांव से हैं।
2: वो भी तो मोर्चे पर लड़ रहे थे, उनका कोई समाचार?
1: हाँ, कल रात भारतीय सेना द्वारा सूचना दी गई कि
5: सब ठीक तो है ना मुखिया जी?
6: कैसे हमारे भाई?
2: बताओ तो
6: थापा जी कैसे हैं?
1: सेना द्वारा सूचना मिली है कि हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते

0: দেবে।
1: হে ভগবান, ये क्या हो गया, क्या हो गया, छेद से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया।
0: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सब का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
2: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी, जिसने ऐसे जाबाज योद्धा को जन्म दिया।
3: अरे वो हमारा गौरव है,
4: हमारा गौरव है,
2: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी। मेजर धन सिंह थापा अमर है, मेजर धन सिंह थापा अमर है।
0: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी,
4: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: जब तक सूरज चांद रहेगा, धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
5: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
6: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
5: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है, गांव का नाम है सुरम्य।
6: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
5: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
6: और आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 अगस्त 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
5: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
7: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
8: जय हिंद धन सिंह। हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
7: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
8: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
7: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
8: तुमने ठीक सुना है धन सिंह। हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
7: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने ना पाए।

0: धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
1: थैंक यू सर।

0: मेजर धन सिंह थापा अपने टुकड़े के साथ सिरेजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 बार चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।
0: दुश्मन भी भारतीय सेना की इस बहादुरी पर हतप्रभ रह गया।
1: चीन की सेना को भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ मिला, क्योंकि भारतीय सेना घाटी में थी और वो ऊंचाइयों पर थे, जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
2: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं। सब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक है, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ। ठीक है, वो जल्दी से जल्दी सहायता दे। पर इसको रोक के रखो। हेलो हेलो, सिरजा फोन से मेजर धन सिंह थापा, दिस साइड, ओवर।
3: सिग्नल ऑफिसर वेदव्यास, दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
2: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
3: मेजर, इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
2: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मारकर ही मरेंगे। हेलो हेलो हेलो,
4: हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे
2: उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ। सुनो, रुको रुको रुको, यहीं पे। कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है, तो संभालो अपनी बंदूक और एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर। जय मां काली।

0: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
1: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की पट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। छोड़ो।
0: दुर्भाग्यवश उनके युद्ध बंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
1: उधर चीन की सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
0: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
1: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
2: ला दिखा तो।
3: अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे
4: अरे पिताजी उनकी चिट्ठी आई है।
3: गांव वालों देखो ये जिंदा है, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। देखो गांव वालों को कोई चिट्ठी आई है।
5: जिंदा है।
1: सरकारी स्तर पर वार्ता के फलस्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परमवीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा शत शत नमन।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
7: जगबंधु,
6: चेतना,
7: अर्शद,
6: सौम्या,
5: प्रसून
6: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयू यादव के साथ
5: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। शाम के 6:30 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम लोक संगीत का।

जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है प्रादेशिक समाचार दर्शन का, आकाशवाणी भोपाल से।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं धारणा सचदेव। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में शासन की योजनाएं किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है देवास से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही विशेष बाइक यात्रा में शामिल राइडर से बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्चुअली जुड़कर संवाद किया। जिले के पुंजापुरा में मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में सेवा संकल्प बाइक यात्रियों के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संवाद किया। इस दौरान प्रदेश के दीपेश गोटी ने यात्रा के अनुभवों के बारे में जानकारी दी। पेश है देवास से हमारे संवाददाता नितिन गुप्ता की ये रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक विशेष बाइक यात्रा निकाली जा रही है। गत दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा में शामिल बाइक राइडर से अलग अलग स्थानों से वर्चुअली जुड़कर संवाद किया। इसी क्रम में देवास जिले के बागली विकास खंड स्थित ग्राम पूंजापुरा में मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में सेवा संकल्प बाइक यात्रियों के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी का उद्बोधन सुना। ग्राम पूंजापुरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प बाइक यात्रा के बाइकर दीपक गोटी से आत्मीय संवाद किया और यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव के बारे में जानकारी ली। संवाद के दौरान शाहजहांपुर के निवासी और कपड़ा व्यापारी श्री गोटी ने बताया कि 17 सितंबर को वडनगर से प्रारंभ हुई इस यात्रा के माध्यम से उन्हें न केवल बहुत कुछ सीखने को मिला बल्कि जगह जगह स्वच्छता तथा सघन पौधारोपण जैसे सेवा कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान अन्य राज्यों के युवाओं से विभिन्न भाषाएं सीखने और उनकी समृद्ध संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता।
0: हमारी दूसरी खबर है डिंडोरी से, जहां जिले के बजाग विकास खंड की ग्राम पंचायत खमेरा के देहान स्व सहायता समूह की 13 महिला सदस्य कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से न केवल अपनी आय बढ़ा रही है बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही है। अधिक जानकारी दे रही है डिंडोरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया।
2: डिंडोरी जिले के बजाग विकास खंड के ग्राम खपरी पानी की बैगा महिलाओं ने मेहनत, सामूहिक प्रयास और आजीविका मिशन के सहयोग से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। ग्राम पंचायत खमेरा के देहान स्व सहायता समूह की 13 महिला सदस्य आज कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से न केवल अपनी आय बढ़ा रही है बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही है। वर्ष 2013 से संचालित यह समूह बैगाचक महिला विकास समिति संकुल चाड़ा से जुड़ा हुआ है। लगभग 17 लाख रुपए की लागत से उपलब्ध ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर सहित अन्य कृषि उपयोगी उपकरणों के माध्यम से समूह किसानों को कृषि कार्यों के लिए मशीनरी उपलब्ध करा रहा है। कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू होने के बाद समूह की महिलाओं की मेहनत रंग लाई और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्तमान में प्रत्येक सदस्य लगभग 15 से 18 हजार रुपए प्रतिमाह तक की आय अर्जित कर रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।
0: बीते दिनों धार पहुंची सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत संचालित जल जन और सेवा संकल्प यात्रा का जगह जगह जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम जनों द्वारा पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। ज्यादा जानकारी दे रही है धार से हमारे संवाददाता सुनील सचान।
3: जल जन एवं सेवा संकल्प यात्रा गत दिनों पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले में पहुंची और 2 दिनों तक जिले में विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। यात्रा का जगह जगह जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम जनों द्वारा पारंपरिक रूप से पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। मनावर, गंजवानी, कुक्षी, भानपुरा, उमरबन, पिपरनी, मांडू आदि स्थानों पर ग्राम चौपाल, सेवा संवाद कार्यक्रम तथा चाय पर चर्चा आयोजित कर युवाओं और आमजनों के साथ संवाद कर सेवा संवाद के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने तथा हितग्राहियों से संवाद कर योजनाओं से मिले लाभ के अनुभव को साझा किया गया। सेवा यात्रियों ने स्थानीय नागरिकों के साथ टांडा और मगादेर में बहती जलधारा पर गोरी बंधन कर जल संरक्षण एवं भू जल संवर्धन का संदेश दिया। धार में भी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बड़ोदरा गुजरात के सांसद डॉक्टर हेमंत जोशी ने सेवा संकल्प यात्रा के उद्देश्यों की जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान।
0: हमारी अगली खबर है दमोह जिले से, जहां मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पिछले दिनों

0: नूह स्टेशन से द्वारका सोमनाथ यात्रा ट्रेन को प्रदेश के संस्कृति और धर्म न्याय राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विस्तार से जानकारी दे रही है हमारे दमोह संवाददाता अनिल जैन।
1: सोमनाथ द्वारकाधीश धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों पर जाने वाली इस ट्रेन में दमोह जिले से 468 तीर्थ यात्री सहित रक्षक और पर्यवेक्षक सवार हुए। राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने यात्रियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। राज्य मंत्री लोधी ने मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों के भ्रमण के लिए बस सेवा जल्दी शुरू करने की भी बात कही। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है छतरपुर जिले से, जहां सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर, सफाई अभियान, हितग्राही लाभार्थी शिविर, नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं छतरपुर से हमारे संवाददाता सुनील पांडे।
2: प्रदेश के छतरपुर जिले में भी सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें शासकीय योजनाओं के लाभार्थी शिविर, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन लगातार कराया जा रहा है। इस कड़ी में छतरपुर के मोटे के महावीर अटल सभागार में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन भी कराया गया, जिसमें दिव्यांगजनों एवं वृद्ध लोगों को निःशुल्क सहायता कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। वहीं आयुष विभाग द्वारा भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 696 रोगियों के स्वास्थ्य का परीक्षण निःशुल्क रूप से किया गया। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में नशा मुक्त युवा भारत विकसित भारत के तहत संकल्प समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं को 100 दिन नशे से दूर रहने का संकल्प भी दिलाया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले से सुनील पांडे।
0: श्रोताओं, अब हम रुख करते हैं भिंड जिले की तरफ, जहां मध्य प्रदेश सरकार की MSME प्रोत्साहन योजना औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित हो रही है। पेश है हमारे भिंड संवाददाता अनिल शर्मा की ये रिपोर्ट।
3: भिंड जिले में मध्य प्रदेश सरकार की MSME प्रोत्साहन योजना के सहयोग से भिंड जिले के मालपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित न्यू लाइन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की इकाई सफलता की नई कहानी लिख रही है। कंपनी का एमबे ब्रांड फ्रोजन आलू उत्पादों के निर्यात से बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। यह इकाई न केवल मध्य प्रदेश को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक मानचित्र पर स्थापित कर रही है, बल्कि 200 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। इकाई के HR और एडमिन हेड श्री अनिल कुमार बताते हैं कि कंपनी की मालपुर इकाई की स्थापना में MSME पोषण योजना का भरपूर सहयोग मिला है। औद्योगिक क्षेत्र मालपुर की अन्य इकाइयों के सफल संचालन में भी MSME पोषण योजना अहम भूमिका निभा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के लिए भिंड से अनिल शर्मा।
0: हमारी अगली खबर है छिंदवाड़ा से, जहां सेवा संकल्प और स्वास्थ्य के 100 दिन अभियान के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य और स्वच्छता का लाभ पहुंचाना है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता राकेश प्रजापति।
4: सबका स्वास्थ्य और वंचितों की सेवा, इस मूल मंत्र के साथ छिंदवाड़ा जिले के हर्रे विकास खंड स्थित ग्राम छिंदा में एक विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर ने ग्रामीणों के लिए संजीवनी का काम किया। इस विशेष शिविर में 592 ग्रामीणों की गहन स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें मौके पर ही उपचार तथा दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। इसके अलावा जिन 16 मरीजों को विशेष चिकित्सा की आवश्यकता थी, उन्हें त्वरित रूप से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। उल्लेखनीय है कि सेवा संकल्प एवं स्वास्थ्य के 100 दिन के इस महाअभियान के तहत संपूर्ण छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर ऐसे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से हर दिन हजारों ग्रामीण घर बैठे उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम चलते हैं बुरहानपुर जिले की ओर, जहां आंगनबाड़ियों में 1 से 30 सितंबर तक नवा राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पोषण उत्सव मनाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बुरहानपुर से हमारे संवाददाता गणेश कुमार बाविस्कर।
5: बुरहानपुर जिले की आंगनबाड़ियों में 1 से 30 सितंबर तक नवा राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पोषण उत्सव मनाया जा रहा है। इस बार हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी थीम के साथ कुपोषण के खिलाफ जागरूकता की मुहिम छेड़ी गई है। यानी आंगनबाड़ी केंद्र में सिर्फ बच्चों की किलकारियां नहीं, बल्कि पोषण का संदेश भी गूंज रहा है। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और अन्य महिलाओं को पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करने के लिए तरह तरह की गतिविधियां बताई जा रही है। सेक्टर अधिकारी शारदा भटकर के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण मटका सजाया जाता है, जिसमें पौष्टिक खाद्य पदार्थों के जरिए संतुलित आहार का महत्व बताया जा रहा है। जिले की कई पोषण वाटिकाएं भी बच्चों के लिए पौष्टिक आहार का जरिया बन रही है। अभियान का मकसद साफ है, पोषण की जानकारी घर घर पहुंचे और कुपोषण को जिले से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर।
0: हमारी अगली खबर है गुना से, जहां बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। विस्तार से जानकारी दे रही है गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी।
6: गुना जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर माह युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार 24 सितंबर को आयोजित युवा संगम कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। इस संबंध में आकाशवाणी को जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी श्री डी एस मीना ने बताया,
7: जैसा कि आपको विदित है मध्य प्रदेश शासन कौशल विकास रोजगार विभाग द्वारा विगत दो साल से यहाँ युवा संगम का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी क्रम में जिला स्तर पर जिला स्तरीय युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा स्वरोजगार हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किए गए और ऑफर लेटर वितरण किए गए। जैसा कि आपको विदित है मध्य प्रदेश शासन की मंशा ये है कि युवाओं को निजी क्षेत्र रोजगार के साथ साथ ही एक ही मंच पर स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाए और हितलाभ वितरण कराया जाए। इसी क्रम में आदरणीय कलेक्टर महोदय श्री किशोर कुमार कन्याल के मार्गदर्शन में विगत 22 माह से लगातार युवा संगम का आयोजन जिला स्तर पर प्रकाशखंड स्तर किया जा रहा है। युवा संगम कार्यक्रम में 772 युवाओं को हितलाभ वितरण किया गया, 3 करोड़ से अधिक हितलाभ वितरण किया गया और इसके अलावा निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य 200 से अधिक हितग्राहियों को ऑफर लेटर का वितरण किया गया और इस कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लगभग विगत 15 माह में हमारा गुना जिला टॉप 5 में स्थान बनाए हुए है और इस वित्तीय वर्ष में भी शासन द्वारा लगभग 24,000 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया। इसमें हमारे सभी विभागों का, स्वरोजगार विभागों का, जनप्रतिनिधियों का और जिला प्रशासन का सक्रिय योगदान रहता है, इससे हमारे युवा लगातार लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन की लोकप्रिय योजना से हमारे बेरोजगार युवाओं को बहुत ही लाभ प्राप्त हो रहा है और आने वाले समय भी आप देखेंगे हर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये आयोजन सतत जारी होते रहेंगे। इसी क्रम में सभी बेरोजगार युवाओं से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि इस युवा संगम का कार्यक्रम भरमाए लाभ उठाए। इस युवा संगम कार्यक्रम में निजी क्षेत्र में रोजगार संस्था स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी जाती है, कौशल विकास विभाग की जानकारी दी जाती है, साथ ही नशा मुक्ति से संबंधित लोगों को जागरूक किया जाता है, साक्षरता वित्तीय साक्षरता की जानकारी दी जाती है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ चेकअप भी किया जाता है। इस योजना का सभी लोग लाभ उठाए।
6: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी।
0: तो श्रोताओ, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ़, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना, बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त। ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने वाले हैं, अब हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और

0: से क्षेत्रों की पहचान की गई है।
1: Annually, we have been meeting regularly.
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
1: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर ना हो। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि अब किसान बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया की डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाएगी। ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशिया खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। वहीं महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में पारुल चौधरी ने कांस्य पदक हासिल किया। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने रजत पदक देश के नाम किया। भारत के ही रोहित यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य सहित कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

0: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:10 होने वाले हैं। अब वक्त है प्रादेशिक समाचार का। आकाशवाणी
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन। 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल। वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अनूपपुर के किसानों से वर्चुअल संवाद किया। प्रदेश में पंचायत उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। 7 जिला पंचायत सहित विभिन्न पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। शांतनु मोहित्रा को आज इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहरें यूनेस्को की अस्थाई विश्व धरोहर सूची में शामिल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास से अनूपपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में किसानों से वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को मिलेट स्टेट बनाने में अनूपपुर का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने किसानों से श्री अन्न और धान उपार्जन के लिए समय पर पंजीयन कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तकनीकी और नवाचार से कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के साथ सिंचाई क्षमता के विस्तार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने किसानों चौपालों के साथ माध्यम से किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी और समस्याओं के समाधान पर भी जोर दिया। नई दिल्ली में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित बारिश और पानी की कमी के बीच केंद्र सरकार राज्य सरकारों और किसानों के साथ खड़ी है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर, कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: श्री चौहान ने राज्यों से पानी की उपलब्धता के अनुसार फसल योजना बनाने और समय पर रबी की बुआई की तैयारी करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ यह सफर निरंतर जारी है। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से रूबरू करा रहे हैं जहां सरकार की सोच और काम ने जमीन पर बदलाव की तस्वीर सामने रखी है। आइए जानते हैं कि रतलाम में आयुष्मान योजना लोगों के जीवन में कैसे बदलाव ला रही है।
2: रतलाम जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 11.25 लाख हितग्राहियों को अब तक लाभ मिल रहा है, जिन्हें निजी अस्पतालों में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। इसी तरह का एक लाभ लेने वाले हितग्राही से जब आकाशवाणी ने चर्चा की तो वे बताते हैं कि
3: हमारे परिवार में सभी का आयुष्मान कार्ड योजना के तहत बना हुआ है, जिसके द्वारा हाल में ही मेरे पिताजी की सर्जरी एक प्राइवेट अस्पताल में बहुत अच्छे से हुई। इसके बाद उनके घुटनों के दर्द में बहुत राहत है और वो अच्छे से चल फिर रहे हैं। यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी बीमारी के समय बहुत ही राहत पहुंचाती है। हम सरकार का इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।
2: आयुष्मान भारत योजना से इस जिले के लगभग सभी बड़े निजी अस्पतालों में घुटनों के प्रत्यारोपण से लेकर हादसों के समय पर कार्डियक अरेस्ट से लेकर किडनी फेलियर तक के मरीजों को राहत मिल रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
0: वहीं सेवा संकल्प अभियान के तहत विविध गतिविधियों के अंतर्गत सतना में सांसद गणेश सिंह ने आंगनवाड़ी केंद्र में माताओं, बच्चों और कार्यकर्ताओं से पोषण, शिक्षा और बाल विकास पर संवाद किया। वहीं सीहोर में आंगन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवास में चित्रकला प्रतियोगिता और प्रदर्शनी, जबकि खंडवा में विद्यार्थियों को जन कल्याणकारी और छात्र हितैषी योजनाओं की जानकारी दी गई। आगरमालवा में छात्राओं को महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी दी गई। वहीं मुरैना में स्वास्थ्य जाँच शिविर और गुना में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। प्रदेश में पंचायतों के उपचुनाव और आगरमालवा जिले की नगर परिषद सुसनेर में मतदान के चलते कल निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाश रहेगा। पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। उपचुनाव में जिला पंचायत के 7, जनपद पंचायत के 28, सरपंच के 110 और पंच के 4090 पदों के लिए मतदान होगा। पंच पद की मतगणना मतदान के तुरंत बाद केंद्र पर होगी, जबकि सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य पदों की मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इनमें उदयगिरी गुफाएं, बाघ गुफा चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला और चंबल घाटी के मंदिर समूह शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया संदेश में इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिलना गौरव की बात है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए सड़क चौड़ीकरण के तहत शाही मस्जिद का एक हिस्सा हटाने को लेकर आज विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान पथराव की स्थिति बनने पर पुलिस ने आश्रु गैस के गोले छोड़े। पुलिस के अनुसार ड्यूटी पर तैनात महिला थाना प्रभारी पुष्पा पंचाल के हाथ में चोट लगी। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई है। कलेक्टर रोशन सिंह ने कहा है कि मस्जिद का हिस्सा समाजजनों द्वारा अब स्वेच्छा से हटाया जा रहा है। वहीं शहर काजी खली कुर्रे रहमान ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और मौके पर अनावश्यक रूप से नहीं जाने की अपील की है। शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने के मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी है। इंदौर में आज राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2026 अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। लता मंगेशकर सभागार में आयोजित इस समारोह में सुप्रतिष्ठित संगीत निर्देशक शांतनु मोइत्रा को संगीत निर्देशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया जाएगा। उन्हें 5,00,000 रुपए की कर मुक्त राशि और प्रशस्ति पत्रिका सम्मानित की जाएगी। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। सम्मान समारोह के बाद सचेत परंपरा की संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार के तहत 3 अक्टूबर को ग्रामीण और 4 अक्टूबर को नगरी क्षेत्रों में मेगा शिविर लगाए जाएंगे। शिविर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की सेवाएं और लाभ के साथ साथ राजस्व सेवाओं में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आय और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाओं का निराकरण भी किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला एवं हिंदी पखवाड़े के समापन पर कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया। देवास जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए मतदाता जागरूकता के लिए गीतों और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की जा रही है। मुरैना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मई और महर्षि गालव स्कूल जौरा में सघन एचआईवी एड्स जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। धार कलेक्टर ने 4 अक्टूबर को डही में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित डही उद्वहन सिंचाई परियोजना के लोकार्पण के दृष्टिगत विभागों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैतूल में वन भूमि का नियमानुसार गैर वानिकी उपयोग किए जाने के लिए अधिकारियों को परिवेश पोर्टल पर प्रशिक्षण दिया गया। खंडवा के नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता जागरूकता पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और नीमच जिला चिकित्सालय के ट्रामा ओपीडी में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर निःशुल्क वृद्धजन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अनूपपुर के किसानों से किया वर्चुअल संवाद। प्रदेश में पंचायत उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। 7 जिला पंचायत सहित विभिन्न पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। शांतनु मोइत्रा को आज इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहरें यूनेस्को की अस्थाई विश्व धरोहर सूची में शामिल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:21 हो चुके हैं। अब वक्त है कुछ संदेशों का।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव

0: नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है, लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

0: श्रोताओ आपने ट्यून किया है आकाशवाणी शहडोल 102 मेगाहर्ट्ज पर
1: बढ़ रहे हैं
0: शाम के 7
1: आज भैया लोक रंग को दिन है सोमवार को दिन है आपके पसंद के लोकगीत तो हम आपको सुन रहे हैं भैया एक बात और हम बता दें मैं आपको कि आजकल जैसे हम बात कर रहे थे ना कि सब्जियां लगावे के लाने जो सही टाइम है सब्जी की पौधा आपके लगाने हैं पौध की रोपाई जा टाइम पे करने हैं और मल्च लगा के आप अगर पौधे लगे हो तो पानी कम लगे और ड्रिप अगर लगा दे हो तो पानी और कम लगे और जैविक अगर करो तो और ही कम पानी लगे कैसे कि जैविक विधि से खेती करे में मट्टी में नमी ज्यादा रहते है और पानी की बचत हो पाते और फलन अच्छे होते कीट पतंगों से बचत है और संगे ही संगे आप खरपतवार से भी बचाव होते तो पैसा कम लगते संगे ही संगे आप एक बात और कही जाते कि अगर सब्जियों के बीच में गेंदा की खेती करी जाए गेंदा लगाओ जाए तो कीट पतंगा जो है बासे बचाव हो जाते गेंदा एक ऐसी चीज है कि जैसे जो

मच्छर हैं, सफेद मच्छर हैं, ऐसे जो कीट हैं, वे गेंदा के पास नहीं आवे और वो फसल से उनकी बचाव हो जाते, तो जो भी करो जा सकते भैया। फूलों की व्यवसाय खेती आज देखो ना, लोग कितनों पैसा कमा लेते हैं। आप अपने एक एकड़ खेत में भी अगर जो काम करेंगे, गुलाब लगा लो, गुलाब के संगे संगे गेंदा लगा लो, एक के संगे आप चाहो तो जरबेरा लगा सकते हो, और भी दुनिया भर के फूलों की वैरायटियां अब हैं बाजार में जिनकी आप लगा के आप लाभ कमा सकते हो। तो कहा है भैया कि कहते ना कि खेती अब वो नहीं है कि घर की खेती वाली बात, अब खेती व्यवसाय हो गई है। एक एक इंच जमीन को हमें सदुपयोग कर बो आवो चाहिए और बस पैसा निकाल बो आवो चाहिए, बस तभी तो मजा है खेती को। यही सब बातें आज हम आपसे करत रहे मनु। हम जान रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि भैया गीत कब समय हो तो गीत हम आपको सुनवाए देते हैं। पहलो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो रई सिंह यादव और साथियों को गावो है, और बढ़िया हरी भजन जो हम आपको सुनवाए देते हैं, एक चेतावनी है, एक संदेश है, और एक हूं पसंद करो है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रोमिन राणा ने आनंद लेते भैया।

सही बात है भैया, टाइम कब निकल जाते हैं पता नहीं चले। और हम जब खड़े होकर सोच रहे थे तो लगा था अरे इतनो लंबो टाइम निकाल लो हमने, और फिर जब बुढ़ापे आ जाते ना तो हमें लगा था यार भजन तो हमने करो ही नहीं, काम ही काम करते रहे, एक को कर दो, एक को कर दो, खुद को कर लो, जाप को कर लो, बाप को कर लो, जय में गुजर गया पूरा जीवन। तो जो अच्छो गीत तो संदेश तो भैया कि हमें भगवान को भजन भी करना है, हरि को भजन भी करना है, कैसे के वो ही सबसे ज्यादा कीमती है। भैया अब वो भजन की बात आई है तो एक मैया को गीत जस आपको सुनवाए देते हैं, बड़ो नो नो बड़ो मीठो जस है, गाव है बसंत कटारे और साथियों ने, और एक पसंद करो है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा ने, सुन लेते हैं जो भी।

क्या बात है भैया, मजा आ रहा है ना? ऐसे गीत जब सुनो, अच्छे मजेदार गीत पसंद कर ले हमारे श्रोता, तो हमें भी सुने मजा आते हैं और आपको भी सुने मजा आते हैं। ऐसे ये गीत और हम आपको सुनवाए दे रहे हैं। एक कहरवा है, एक हुबाव है छगन लाल वर्मा और साथियों ने, और एक हूँ पसंद करो है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने। इनकी भजन को जो गीत सुनो आपको और आनंद आएगा।

ऐसो मन होवे तोहे कैया उठाए लऊं। वाकई कन्हैया जी की छवि जब आंखों में आ जाए तो मन करते बस मिल जाए, हम उनको खूब प्रेम कर ले। भैया अब थोड़ो मन बदला थे, मूड बदला थे। अगलो जो गीत पसंद करो है, जो गीत कृषि गीत है। अब वैसे देखो जाए तो कुंवर के महीना में जो कहते हैं कुंवर के धमंग का जो होते हैं, वे बड़े चैत बैसाख जैसे होते हैं, बिल्कुल जेठ में जो पड़ा था ऐसे गर्मियां होते हैं। अब वही कछु भाव इतने दिख रहे हैं जा गीत में। संतोष तंतवाय ने गाव है और पसंद करो है, खुरई तिगड्डा ग्राम कल्याणपुर बीर पोस्ट राहतगढ़ तहसील राहतगढ़ जिला सागर से जो एक चिट्ठी आई है, जहां में नाम तो बड़े मुलक लिखे भैया, मनीष कुमार पारासर, नन्ही परी देवी आकांक्षा पारासर, राधिका खुशी, बाबूजी श्री पंडित जी प्रेम नारायण पारासर, हीरा बाई पारासर, हेमंत अनीता सबिता छोटी बहू पूनम पारासर, किशन अभिषेक दीपेश मोहित रविशंकर दुबे दुबे दुबे और भी बड़े छोटे छोटे अक्षरों में नाम लिखे हैं भैया, पढ़ तो नहीं मन रहा हूं हमसे। तो जिस सब रेन खिलाने भैया जिन जिन ने नाम लिखे हैं, सो समझ लो कि आपकी चिट्ठी हमने ले ली है और सुना थे जो गीत।

चलो भैया, जो भी गर्मी को एहसास करात भव जो गीत है तो पीपर की छैया में बैठो मोरी गुइया, चैन ले लो दोपहरिया में, काम लगो राने उमरिया में। उमरिया भर काम लगो रहे थे मनु भैया, कितनी काम हुए कितनो ही मेहनत हुए, अच्छो नोनो श्रृंगार गीत अगर कान में आ जावे तो दिन भर की थकान फुर हो जाते। और ऐसा ही गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। जो गीत है भैया श्रृंगार गीत है और एक हूं गाव है हरचरण सिंह नरवरिया और साथियों ने, बड़ो मन लगा के सुनियो, बड़ो अच्छो नोनो गीत है और जाको पसंद करो है। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा।

क्या बात है भैया, बूरा बजना रे गोरी पायल ने जंडारो। अच्छा जा बताओ, मजा आओ कि नहीं आओ? हमें मालूम है मन खुश हो जाते अच्छा संगीत अगर सुनने मिल जाए तो। और भैया ऐसे गीत आप भी सुनवा चाह रहे हैं तो हमें चिट्ठियां लिख दो, वो में क्या बात, हम अगले कोनो कार्यक्रम में फिर आपकी पसंद के गीत सुनवाई दें। हर सोमवार को लोक रंग होता ही है, हमारा पतो है लोक रंग कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्याम लहर्स भोपाल, पिन 4620002। संगे संगे कार्यक्रम को नाम ग्राम सभा जरूर लिख दियो। अब भैया चला चला एक बात और हम आपको बता दे दें कि जो जो टेम है जा टेम पे पशुओं को ध्यान रखने की जरूरत है, कैसे के जो ब्यात वाले पशु हैं उनको जो मौसम बदलते ना जा टेम पे गर्मी से बरसात के बाद सीधे ठंड की तरफ जब जाते हैं तो इनको ध्यान रखने की जरूरत है। मच्छरों से अपने पशुओं को बचाने की जरूरत है। गौशाला में सार में धुआं जरूर करें, मनोजाबाद को ध्यान रखें कि तो धुआं ना करें कि वे सांस ही ना ले पाए, तो हल्को से धुआं कर दो जैसे कि मच्छर चले जाएं। और गीलो बिल्कुल ना रखो, साफ सुथरी जगह में उनके लाने रखो और बढ़िया उनके खान पान को ध्यान रखो, टीकाकरण उनको पूरा कराओ जैसे कि वे स्वस्थ रहें, ब्यात अच्छा हो, दूध अच्छा मिले और उनके जो बछेरू हैं वे भी अच्छे बढ़िया स्वस्थ रहें। संगे संगे बीमा जरूर करा ले, पशुओं को बीमा ऐमाने जरूर है कि कोनो भी अनहोनी होवे पे आपके लाने बाको मुआवजा मिल जाते हैं और बीमा से उनको इलाज भी आसानी से हो जाते हैं, आप उनको इलाज कर सकते हैं, है ना। और रहो सवाल खुद को, तो खुद को भी ध्यान रखने हैं कि आप जा टाइम पे अपने आप को स्वस्थ रखो, स्वच्छ रखो, अच्छो रखो जैसे कि आपकी खेती अच्छी हो सके और आप खूब स्वस्थ रहो, मौज में रहो, बढ़िया अच्छे से आपको जीवन चले और ऐसी ग्राम सभा से जुड़े रहो। अब आज को देखो चलवे की ब्रिया हो गई है, दो ही हाथ जोड़े की राम राम स्वीकार लो मनोज भैया की, जय सिया राम।

0: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा शिक्षा और कौशल भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक छोटी सी उंगली जिसने पहली बार स्कूल की किताब को छुआ, एक गाँव का बच्चा जिसके लिए स्कूल तक पहुंचना ही कभी सबसे बड़ी चुनौती थी, और एक युवा जिसके हाथ में डिग्री तो थी लेकिन दुनिया बदल रही थी और उसके सामने सवाल था कि क्या मेरी शिक्षा मुझे भविष्य के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि शिक्षा

0: एक पड़ाव मानने की बात की तो गुजरात से दिल्ली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में बिताए 25 वर्षों में क्या कुछ बदला इस दिशा में आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज का हमारा विषय है शिक्षा और कौशल भविष्य की नींव और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा और हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्व यूजीसी सदस्य सुषमा यादव आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है
1: धन्यवाद और नमस्कार
0: संजीव जी आपके साथ शुरुआत करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे अभिनव प्रयोग शुरू किए थे और इसका असर ये हुआ कि राज्य में ड्रॉपआउट रेट काफी कम हो गए और यहीं से जब आगे बढ़े तो निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जब हम देखते हैं तो गुजरात के उस मॉडल और आज के राष्ट्रीय विजन के बीच आप किस तरह का समायोजन या संबंध देख पा रहे हैं
2: जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि विकसित भारत बनने की 2047 में तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है उसके नागरिकों की शिक्षा जब देश शिक्षा में निपुण होगा तभी देश आगे तरक्की कर सकता है तो इस विषय में जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब 25 साल पहले अपनी यात्रा गुजरात से शुरू करी थी एज चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने वहां स्टेट में देखा गुजरात तब शिक्षा के स्फेयर में इतना डेवलप्ड नहीं था तो उन्होंने देखा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है सोशल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है सो उन्होंने ये दो इनिशिएटिव्स एक शाला प्रवेशोत्सव जिसमें कि एंट्री एनरोलमेंट स्टूडेंट्स की बढ़ाने के लिए ये प्रयोग किया था 2003 में सबसे पहले जो ड्रॉप आउट रेट था 37% था गुजरात में तो धीरे धीरे करके इससे बढ़ते हुए बहुत कंसिडरेबल ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस हुआ तो एक तो ये था और दूसरा था गुणोत्सव जिसमें कि इवैल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी बच्चों की देखी जाती है तो इन दोनों इनिशिएटिव से उन्होंने आगे प्रयोग शुरू किया और उसको अब स्टेट लेवल जैसे गुणोत्सव तो असम में भी अडॉप्ट हुआ और कुछ और स्टेट्स भी अब करना चाह रही हैं और नेक्स्ट इनिशिएटिव 7th एडिशन जो है वो जनवरी 7/27 को होगा असम में और गुजरात में तो चल ही रहा है तो ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं जैसे मैंने आपको कहा कि एजुकेशन के फील्ड में जैसे भारत जाना जाता है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से यूथ पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो भारत में है और वर्ल्ड में पॉपुलेशंस एज हो रही हैं तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके जो नागरिक और यूथ हैं वो निपुण हो शिक्षा के तरीके से स्किल्ड हो निपुण हो और तभी देश भी आगे तरक्की करेगा और तभी दुनिया में लीड कर सकता है भारत
0: जी हाँ हम अपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में बताएं तो गुणोत्सव जो योजना थी वो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता छात्रों के सीखने के स्तर शिक्षकों की उपस्थिति और स्कूल के बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने से जुड़ी थी जब हम निपुण भारत की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा प्राथमिक कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और जो नंबर ज्ञान है उसे अवश्य हासिल कर ले विद्या प्रवेश की जब हम बात करते हैं तो इसका मुख्य मकसद यही रहा कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल के नए माहौल में ढलने और औपचारिक पढ़ाई के लिए मानसिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार किया जा सके विद्या प्रवेश की चर्चा को प्रोफेसर सुषमा जी अगर आगे बढ़ाएं तो जैसा कि विद्या प्रवेश के बारे में हमने बताया कि 3 महीने के प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल का मुख्य लक्ष्य रखा गया कि बच्चा जब स्कूल में जाए उससे पहले उसको एक भावनात्मक और शैक्षणिक माहौल प्रदान किया जाए कि स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो सके कुछ समय पहले तक इस तरह की सोच रखना भी सरकारी स्तर पर किसी योजना को बनाया जाए कि बच्चा पहली कक्षा में जाने से पहले तैयार हो इसके लिए कोई योजना लाई जाए बहुत मुश्किल काम था लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता थी कि इस योजना को न सिर्फ शुरू किया गया बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले सामाजिक परिवर्तन के लिहाज से और बच्चों के मानसिक विकास के लिहाज से कैसे देखती हैं इस योजना को आप
1: भारत में विद्या प्रवेश या विद्यालय जाना बच्चों के लिए एक प्रकार से एक पनिशमेंट होती थी वो क्योंकि सीधे स्कूल में जाना घर का माहौल होता है जहाँ उस प्रकार की नियम बद्धता नहीं होती और बच्चा अपनी मर्जी का ऑलमोस्ट मालिक होता है स्वामी होता है और जब वो विद्यालय में जाता था तो बहुत सारे समय के अनुशासन की सीमाएं उस पर लग जाती थी उस गैप को दूर करने के लिए यह एक प्रकार से मैं बहुत सुंदर प्रयास मानती हूँ जो स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया गया और ये एनईपी 2020 जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं उसमें कहा गया कि लर्निंग शुड बी ए प्रेजेंट एक्सरसाइज

0: यानी सीखना आरंभ बच्चे का ऐसा होना चाहिए कि वो उसको एंजॉय करे, वो उसके लिए एक फन जैसी एक्सरसाइज हो। तो इस विद्या प्रवेश का यही उद्देश्य है। और आप जान सकते हैं कि बड़े शहरों में और शहरी उच्च वर्ग में प्ले स्कूल्स का कंसेप्ट आ चुका था, लेकिन वो पूरे देश के बच्चों को उपलब्ध नहीं था। तो उनको भी खेल आधारित गतिविधियों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया आरंभ करना, औपचारिक शिक्षा आरंभ होने से पहले उनको उस माहौल में सहज रूप से ढाल लेना और वहीं से निपुण भारत की भी नींव रखना। निपुण इज वेरी इंटरेस्टिंग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और आपको याद होगा आयशर जैसी बहुत सारी संस्थाएं पहले ये कहती रही कि दसवीं तक बच्चा पहुंच जाता है देश के सरकारी विद्यालयों में, लेकिन ना वो पढ़ सकता है, ना वो लिख सकता है पूरी बात, और ना ही वो गणना में निपुण होता है। इसलिए वह मिशन रखा गया था और उसी की रणनीति की नींव मजबूत करने के लिए, बुनियाद मजबूत करने के लिए विद्या प्रवेश का ये एक बहुत सुंदर मॉड्यूल बनाया गया। और जिसमें ये हो सकता था, क्योंकि ये प्रारंभिक है तो हर राज्य अपनी अपनी स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार पाठ्य सामग्री तैयार कर सकता था, ताकि बच्चे को बहुत अजनबी भाव ना लगे वहां पर। जैसे वो घर में अभी तक रहा, उसी को थोड़ा आगे ले जाते हुए पढ़ना लिखना और गणना करना आरंभ कर दे। थोड़ा शाला प्रवेशोत्सव पर और गुणोत्सव पर भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो कन्या केलमणि महोत्सव था एक तरह से, कि कन्या किस प्रकार से विद्यालय पहुंचे भी और फिर वहां रहे भी, क्योंकि ड्रॉपआउट दर बहुत ज्यादा थी उनकी, तो इसलिए बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल उसके माध्यम से दिया गया था। और 3 दिवसीय अभियान, यानी जिसमें जनप्रतिनिधि भी और अधिकारी भी गांव-गांव जाकर बच्चों को बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, प्राथमिक ये खेल विद्यालय, इन सब में प्रवेश दिलाते, शिक्षण सामग्री किट वितरित करते, तो अपने आप ही एक नामांकन उत्सव जैसा बन जाता और बच्चों को भी इसमें रुचि होती और शिक्षक इसलिए सजग रहते क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का विशेष ध्यान था। यही गुणोत्सव का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि ये माना गया कि जितने सरकारी विद्यालय हैं उनमें गुणवत्ता कम होती जा रही। तो गुजरात में 2009 में जो शुरू हुआ, बेसिकली माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी, इसीलिए जाने जाते हैं कि इन्होंने जिस भी क्षेत्र पर ध्यान दिया वहां गुणवत्ता और जवाबदेही उत्तरदायित्व निश्चित करने पर बल दिया। और विद्यालय शिक्षा में इन तीनों के माध्यम से ड्रॉपआउट कम करने की बात और शिक्षा और शिक्षण और शिक्षार्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही गई।
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और संजीव जी कुछ और योजनाओं पर चर्चा करते हैं। गुजरात से शुरुआत हुई डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी विशेष स्पेसिफिक विषय को लेकर शुरू की गई यूनिवर्सिटी को डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। इस तरह के विश्वविद्यालय आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। सवाल आपसे ये है संजीव जी कि जो पारंपरिक विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां हम देखते हैं कि आर्ट्स की भी पढ़ाई हो रही है, कॉमर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, विज्ञान के विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे अलग 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज शुरू हुए, आज के दौर में भारतीय युवाओं के लिए कितने कारगर हैं और 21वीं सदी की चुनौती के लिए वो कैसे तैयार कर रहे हैं?
2: जी, जैसे आपको पता होगा कि पहले यूनिवर्सिटीज में जनरली सब हर फील्ड में एजुकेशन दी जाती है, मास्टर्स आप अचीव करते हो, उसके बाद पीएचडी उसी फील्ड में लेते हो। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे इंजीनियरिंग होता था तो इंजीनियरिंग भी एक ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जैसे लॉ फॉर एग्जाम्पल, लॉ का यूनिवर्सिटी का 2 ईयर कोर्स होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको 5 ईयर्स कोर्स स्पेसिफिक कर दिया कि बच्चे को 12वीं के बाद ही एकदम एडमिशन वहां चले जाएं उस यूनिवर्सिटी में और उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन दें। तो लॉ के 5 ईयर कोर्सेज बने, 3 ईयर कोर्सेज भी बने, 5 ईयर कोर्सेज भी हैं कई। ये जरूरी था कि डोमेन स्पेसिफिक, जैसे फिर आपको बताऊं कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एंटर कर चुका है, लॉ स्कूल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बने ही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज भी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम और एनर्जी की एक यूनिवर्सिटी देहरादून में बनी, वो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां एक लॉ स्कूल भी बना प्राइवेट सेक्टर में, वही 5 ईयर स्कूल
1: जी।
2: वहां बच्चे खूब जाने लगे एंड उनकी इनटेक इन द इंडस्ट्री भी बढ़ गई, बिकॉज वो उसी स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे थे। जैसे कई यूनिवर्सिटीज में, मैं आपको बताऊं,

0: उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, जैसे इंटरनेशनली फोरेंसिक साइंस है या एस्ट्रोनॉमी की फील्ड. तो नासा वगैरह में भी यहाँ के स्टूडेंट्स कई गए हैं जो यहाँ से यूनिवर्सिटीज में पढ़ के, हालांकि एस्ट्रोनॉमी के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोनॉमी की मास्टर्स कराई जाती है. तो सिमिलरली फोरेंसिक साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइम की फील्ड में और कई फील्ड्स में, एनर्जी और पेट्रोलियम मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन मैंने आपको बताया, जैसे भारत बहुत आगे बढ़ रहा है स्पोर्ट्स की फील्ड में, जैसे एस्पिरेशनल इंडिया आगे चल रहा है, हर फील्ड में तरक्की हो रही है. सिमिलरली डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बन रही हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बनी, जैसे लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, और इनकी एडमिशंस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होता है CUET उसके थ्रू होती है. इसमें क्या है कि इंडस्ट्री की डिमांड, जब बच्चा ज्यादा टाइम एक ही फील्ड में लगाता है तो इंडस्ट्री की डिमांड उसको समझ में आती है और इंडस्ट्री को भी समझ में आता है कि ये बच्चा हमारे फील्ड की मास्टरी कर चुका है और इसको इनटेक लेना है. सो एक तो उससे मास्टरी होती है उस सब्जेक्ट में, दूसरी इंटरनेशनली भी प्रिपेयर होता है बच्चा, और तीसरा उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होती हैं बहुत ज्यादा.
1: सुषमा जी, अगर इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो पारंपरिक उच्च शिक्षा में अक्सर जो शिक्षण संस्थान और उद्योग के बीच की दूरी की बात होती रही है, और हमने देखा कि इस कारण कई बार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो युवक हैं या जो छात्र हैं वो रोजगार से वंचित रह जाते थे. गति शक्ति विश्वविद्यालय या नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जैसे डोमेन स्पेसिफिक मॉडल आपके अनुसार इस खाई को कैसे पाट रहे हैं, इस अंतर को कैसे खत्म कर रहे हैं?
2: जी, संजीव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये विश्वविद्यालय तो है ही, जैसे अगर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय तो अपनी तरह का एक विश्वविद्यालय ही है और उसने बाकियों से MOUs किए हैं. और फोरेंसिक टेस्ट के लिए हमारे यहाँ इतना लंबे समय अभी तक लगता था, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा था, अब इस विश्वविद्यालय ने उसको संभालना और अपने कैंपसेस के माध्यम से कुछ और एक्सपर्ट्स भी हमें प्रोवाइड किए हैं. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है पहले रक्षा शक्ति माना जाता था, देयर वॉज नो यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच वुड स्पेशली टैकल दिस एक्सेप्ट NDA, तो वह भी अब कुछ विशेषज्ञ तैयार कर रही है. लेकिन इसके साथ साथ आरंभ तो गुजरात से हुआ, लेकिन कौशल विश्वविद्यालय भी देश के बहुत सारे प्रांतों में खोले गए हैं जो स्पेसिफिकली स्किल इम्पार्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं, पहले नहीं थे. चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी खोली गई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खोली गई है, विमेन यूनिवर्सिटीज खोली गई है, और इनकी संख्या जो बड़ी है. केवल इतना ही नहीं, उसी बात को जो आपने मुझसे अभी पूछा है उसको ही पाटने के लिए मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि UGC से संबद्ध रही हूँ. 2014 में यदि इस देश में 723 यूनिवर्सिटीज थी, अब जाकर के लगभग 1400, डबल ऑफ दी नंबर, 1400 से अधिक विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं. इसका मतलब है एनरोलमेंट अधिक हो रहा है, विशेषज्ञता भी बढ़ रही है, और टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज भी खुली हैं जो पहले कहीं नहीं थी. एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खुली है, उद्यमिता विश्वविद्यालय, यानी ये जो स्किल बेस्ड एरियाज थे, डोमेन्स थे, वहां पर विशेषज्ञ उत्पन्न करने के लिए, तैयार करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय खोले गए हैं. एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है हम मेरू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज भी खोल रहे हैं जो थी पहले भी, लेकिन दूसरी तरफ जो विशेष विशेष क्षेत्र पहचाने गए जहां जहां विशेषज्ञता की आवश्यकता थी वो यूनिवर्सिटीज खुली हैं. कॉलेजेस को भी ऑटोनमस बनाने का प्रयास किया गया है, और जब मैं UGC में थी तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों को हमने इनकरेज किया कि वो ऑटोनमी के लिए आगे आए, बिकॉज इस देश में कुछ कुछ कॉलेजेस तो इतने बड़े थे दे कुड बीट एनी यूनिवर्सिटी और दे कुड कंपेयर विद द बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो उनको ऑटोनमी देने की बात, ताकि शिक्षा का विस्तार हो. जहां 38,000 के करीब कॉलेजेस थे 2014 में, वो अब 55,000 के लगभग हो गए हैं, उसका विस्तार भी आप समझ सकते हैं. इनके अपने तरीके भी हैं, एडमिशन क्लैट के माध्यम से लॉ यूनिवर्सिटीज में होता है, पहले केवल लॉ कॉलेजेस होते थे, अब लगभग हर प्रांत में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो जो लॉ ग्रेजुएट्स को तैयार कर रही है या एक्सपर्ट्स को तैयार कर रही है. और जो एक हमारे यहाँ गैप जिसकी आपने बात की कि मैं BA हूँ, मैं MA हूँ, मैं PhD भी हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उद्धरण देते हैं, तो बच्चा कोई जवाब नहीं दे पाता विश्वविद्यालयों के माध्यम से. अब जब बच्चा निकलता है तो उसके पास कोई ना कोई निपुणता, कोई ना कोई कौशल, कोई ना कोई विशेषज्ञता अवश्य होती है, और इस प्रकार ये रोजगार से जोड़ने का माध्यम है. दूसरी बात जो आपने पूछी है इंडस्ट्री, अब लगभग हर विश्वविद्यालय को ये निर्देश दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम

0: से भी और यूजीसी के माध्यम से भी कि वे तीसरे वर्ष में हो सके तो सेकंड से ही शुरू कर लें, इंटर्नशिप करें, इंडस्ट्री से बात करें, आसपास जो भी इंडस्ट्री हो उनको कांटेक्ट भी करें, उनको किस प्रकार की आवश्यकता है। एक तो बच्चों को वहां इंटर्नशिप के लिए भेजें, इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स को, उन इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं उनको विश्वविद्यालयों के स्टडी बोर्ड्स में या उनके मैनेजमेंट बोर्ड्स में, एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में स्थान दें, ताकि रोजगार और शिक्षा के बीच का, कौशल और विद्या के बीच का जो अंतर अभी तक था वह अंतर समाप्त हो सके। यह प्रयास विशेष तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से किया जा रहा है और इसमें बहुविषयक और लचीली शिक्षा हमने इसमें जोड़ी है उसके साथ ही, और कौशल कक्षा 6 से ही आरंभ हो जाए और IITs का नंबर बढ़ाया गया है, IIMs का नंबर बढ़ाया गया है, NITs बहुत सारी खोली गई हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस बहुत सारे खोले गए, ICERs बनाए गए हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक प्रकार से समानांतर बन सके, ताकि बच्चों को सच में ही जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था कि आप सपना देखें हम आपको उड़ान का अवसर देंगे, तो ये विश्वविद्यालय वस्तुतः उन सपनों को सत्य करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए सच में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में आ सकते हैं और बच्चों को अपनी विशेषज्ञता से लाभान्वित कर सकते हैं। ये बिल्कुल नई बात लगभग पिछले 3 वर्षों से भारत की उच्च शिक्षा में आई है
1: और इन सबका उद्देश्य यही है कि जो बच्चे जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं वो थियरी के साथ साथ इंडस्ट्री में क्या कुछ घट रहा है उसको भी करीब से जान सकें, समझ सकें, ताकि जब वो इंडस्ट्री में प्रवेश करें तो वो उन चीजों के लिए नए नहीं रहें। संजीव जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अगर पढ़ाई बीच में छूट जाए तो साल बर्बाद हो जाता था, लेकिन जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और उसमें बीच में पढ़ाई छोड़ने पर क्रेडिट्स सुरक्षित रखने वाला ABC सिस्टम हो या फिर मातृभाषा में पढ़ाई, कागजों पर तो ये बहुत बड़े नियम लगते हैं और लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया, लेकिन बतौर पत्रकार ग्राउंड जीरो में क्या बदला है इससे?
2: ग्राउंड जीरो पे बदलाव तो आया है, आप अगर देखेंगे तो भारत का फोकस जो था पहले, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले आई 1986 में, उसमें कुछ बदलाव हुआ 1992 में, लेकिन तब से लेके उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी आई, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने पॉलिसी ही नहीं लेके आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, मतलब ऑलमोस्ट 3 दशक बाद। तो अब ये जरूरी भी थी बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंडिया ने हस्ताक्षर किया था 2015 में और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके मुताबिक लानी थी टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाई 2030। सो उसमें बदलाव तो काफी आया है, लेकिन अगर आप एंशियंट इंडिया में देखें, हमारा ज्ञान पहले 3 चीजों पर आधारित था, ज्ञान जो नॉलेज, विजडम प्रज्ञा और ट्रूथ सत्य को अचीव करने के लिए।
1: जी।
2: सो आप देखेंगे कि हमारे एंशियंट भारत में तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटीज थी जो उन एंशियंट इंडिया में पुरानी शताब्दियों में भी लोग चाइना से और यूरोप से और कहां कहां से लोग पढ़ने आते थे वहां, और इन हाउस फैसिलिटी थी वहां स्टूडेंट्स के रहने की, 4-4, 5-5 हजार बच्चा वहां पढ़ता था। तो भारत ने कहीं ना कहीं बीच में जब इन्वेड हुआ, पहले मुगल से फिर ब्रिटिश से, समहाउ ये अपनी एज लूज कर दी, उसके बाद भारत ने दोबारा फोकस किया है, अब दोबारा अपने आप को, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो भारत के पक्ष में है और यंग कंट्री इंडिया माना जा रहा है, और स्किलिंग को बढ़ावा देते हुए हर युवा को स्किल से एम्पावर करने से उसको सक्षम बनाएं कि वो वर्ल्ड में टेक ओवर कर सके। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब की है, ये बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट था जो प्रिपेयर किया, इसमें हायर एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म्स आए, इसमें लोअर एजुकेशन में रिफॉर्म्स आए, जैसे हमने पहले इनिशिएटिव डिस्कस किए कि कैसे बच्चे को बचपन से ही प्ले स्कूल से ही उसको रुझान उसका, ताकि स्कूल जाने का हो, ड्रॉप आउट ना हो, ये सब इंश्योर किए, और प्लस क्वालिटी हायर एजुकेशन, जैसे हायर एजुकेशन में आप देखेंगे कि पहले बहुत ज्यादा किसी लेवल तक करप्शन भी थी और आज भी जो बच्चा कभी विचलित हो जाते हैं कभी, लेकिन रिफॉर्म्स के माध्यम से, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी पहले, उसको रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल कमीशन लेके आए, एंट्रेंस से एग्जाम होता है। अभी और रिफॉर्म्स प्रोसेस में है, और रिफॉर्म्स कस्तूरी रंजन कमेटी बैठी है, और इसके ऊपर हाई पावर्ड कमेटी एक और रिफॉर्म्स को आगे लेके जा रही है। सो ये बहुत जरूरी है कि रिफॉर्म्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसमें जो टार्डिनेस है, जो करप्शन है, जो चीजें एम्बेड कर जाती हैं हमारे सिस्टम में, उसको रिमूव करने के लिए कंटिन्यूअसली रिफॉर्म्स की प्रोसेस जरूरी है। शिक्षा ही भारत को आगे ले जा सकती है। जब हर इंडियन जब निपुण होगा शिक्षा में, तभी भारत आगे विकसित बन सकता है।
1: सुषमा जी, अभी संजीव जी ने एक अपने सवाल के जवाब में जो बताया एनएमसी के बारे में, हम उसी पर चर्चा करते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी के आने के बाद देश में मेडिकल सीटों को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। एमबीबीएस और पीजी दोनों की सीटें लगभग दोगुनी हो गई हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई के इस तरह आसान और सुलभ होने से हमारे देश के युवाओं के लिए और गांव शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं, और पिछले दो दशकों में इसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो भावी भारत के निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं?
0: अगर विकसित भारत की बात करें और भावी भारत की बात करें, तो शिक्षा और स्वास्थ्य वो दो मजबूत पिलर्स होते हैं जिनके आधार पर किसी भी विकसित राष्ट्र की नींव रखी जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परिवर्तन किए हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेके, जिसकी बात अभी हमने की, शिक्षा के लिए विद्यालय से पहले ही खेल खेल में तैयार किया जाए, से विशेषज्ञ डोमेन स्पेसिफिक विश्वविद्यालय खोले गए हैं, वह एक बात है। लेकिन रेगुलेशन भारत में एक समस्या थी, और ये माना जाता था या ये घटित हो गया था कि जो भी नियंत्रक नियामक आयोग हैं या परिषदें हैं, वह अपने आप में भ्रष्ट निकाय बन गए थे, क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी। इसलिए एक तरफ अभी हेकी जो जल्दी ही आएगा, यूजीसी का स्थान लेगा और बहुत सारी परिषदों का स्थान लेगा, लेकिन 2020 में ही भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर भारतीय चिकित्सा आयोग या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग लाया गया, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में इतना ज्यादा रेगुलेशन था, जैसे लॉ एजुकेशन में भी है लगभग। तो यहाँ संरचनात्मक सुधार तो ये हुआ कि 4 स्वायत्त बोर्ड बना दिए, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि एथिक्स भी उस रिसर्च के लिए भी आवश्यक है और शिक्षा के लिए भी आवश्यक है। और इसके साथ साथ शिक्षक संकाय से की योग्यता से जुड़े हुए जो नियम थे उनको भी अपडेट किया गया है। और वहीं से जो सुधार आरंभ हुए, तो मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की पारदर्शी वृद्धि प्रक्रिया, यानी आप नीट के माध्यम से एकीकृत हो गए, साथ ही साथ पारदर्शी प्रवेश व्यवस्था हो गई, क्योंकि आपको पता है आपका कौन सा स्थान है, आपने कहाँ अप्लाई किया है, एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज सपोज टू पुट इट ऑन देयर बोर्ड, पुट इट ऑन देयर वेबसाइट। तो यह भविष्य के लिए इसलिए बहुत सुंदर है कि भारत का बच्चा कहीं यूक्रेन भागता था, कहीं चीन भागता था, कहीं और किसी विदेश में भागता था, क्योंकि यहाँ मेडिकल सीट्स उसके लिए उपलब्ध नहीं थी। तो मेडिकल सीटों का बढ़ना दो प्रकार से उत्तम है। एक, जो बच्चा यहाँ चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, चाहती है, उसको यही अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। और जो भारत के विभिन्न चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है या टीचर, मेडिकल टीचर्स उपलब्ध नहीं थे, वह भी अब उपलब्ध होंगे।
1: भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठाने के लिए स्किल इंडिया, जिसे हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहते हैं, PMKVY 4.0 की शुरुआत हुई है इस देश में, और उसके तहत हम देख रहे हैं कि आज के समय की जरूरत के अनुसार AI, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल और रोजगार के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, और जब से ये योजना शुरू हुई है करोड़ों युवाओं को इससे प्रशिक्षित किया जा चुका है। और सुषमा जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कौशल से जुड़े विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, युवाओं में उनको स्किल बनाने में, उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने में, नौकरी खोजने की बजाय नौकरी देने में, इसकी कितनी बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं?
2: जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत को विकसित बनाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है, और शिक्षा का महत्व ये है कि अगर जब तक उसके हर सिटीजन ट्रूली ग्लोबल सिटीजन ना बने, कि शिक्षा यहाँ ग्रहण करे और हर जगह उसकी वैल्यू हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका विजन भी यही था कि एक तो अपनी मदर टंग में शिक्षा प्रदान करनी, उस पे फोकस था। दूसरा, इंडियन इथॉस में रूटेड हो हमारा एजुकेशन। और तीसरा, हर सिटीजन को एक ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बनाना। तो स्किलिंग बहुत जरूरी एस्पेक्ट था, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड

0: आपने बात करी, भारत का एक एडवांटेज है, बहुत मेजर एडवांटेज है, और जब तक उसके युवा शिक्षित नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे कि वर्ल्ड पावर के साथ जो बाकी देशों के युवा हैं उनके साथ कंपीट करने के लिए, जब ट्रूली ग्लोबल नहीं होंगे तो वो कंपीट नहीं कर सकते। तो इसलिए स्किल यूनिवर्सिटीज, अगर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में एक स्किल डिपार्टमेंट, एक स्पेशल अलग बनाया, जिसमें युवाओं को स्किल करने के लिए, जैसे पहले हमारे हायर लेवल पे आईआईटीज होती थी स्किल करने के लिए, आईआईएम्स थे, लोअर लेवल पे आईटीआईज वगैरह थी और पॉलिटेक्निक्स थे। तो उसके अलावा अब स्किल यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं, और जैसे एम्स की बात करी कि वो हेल्थ एजुकेशन में, अब एम ये है कि हर स्टेट के पास एक एम्स जरूर हो, एक एटलीस्ट हो, 12 या 14 निर्माण हो चुके हैं एम्स, एक से शुरू करके, सिमिलरली हर स्टेट के पास होगा। सो स्किल यूनिवर्सिटीज में भी स्पेसिफिक फील्ड्स में, जैसे हायर एजुकेशन की हमने बात करी, तो स्किल प्रदान करने के लिए युवाओं को इवन पॉलिटेक्निक्स और आईटीआईज जो थे उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो बहुत सारा फोकस जो है वो स्किलिंग पे लग रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एजुकेशन इज कंटिन्यूअसली वर्किंग इवन विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सो दैट द यूथ बिकम एम्पावर्ड विद ग्लोबल स्किलिंग स्किल्स।
1: सुषमा जी, एक सवाल परीक्षा पे चर्चा से जुड़ा भी। परीक्षा की जब भी हम बात करते हैं, परीक्षा की चर्चा करते हैं, तो दो दशक पहले के भारत में जब मैं विद्यार्थी था तो घर का माहौल ऐसा हो जाता था कि पता नहीं घर में क्या हो गया है। टीवी ऑन होना बंद हो जाते थे, अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो बता दिया जाता था कि अभी परीक्षा चल रही है बच्चों की, आप थोड़े समय बाद आइए। घर में शोर शराबा नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की, खुद बच्चों से बात करते थे, खुद उनके अभिभावकों को बताते थे, और कुल मिलाकर एक माहौल तैयार किया गया कि परीक्षा डर का मामला नहीं है, इसे आप एक त्योहार की तरह देखिए, एक उत्सव की तरह देखिए, अगर उसमें आप नाकाम हो भी जाते हैं तो सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जीवन में बहुत सारे अवसर हैं। इस बदलाव से बच्चों के मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस में बहुत परिवर्तन आया, अभिभावकों को भी बातें समझ में आई। कैसे देखते हैं बच्चों के मनोविज्ञान के नजरिए से, उनके विकास के नजरिए से और सामाजिक परिवर्तन के नजरिए से कितना बड़ा बदलाव आप मानती हैं परीक्षा पे चर्चा को?
2: जी, सबसे पहले तो इसकी जो खूबसूरती है या सौंदर्य है वो ये है, प्रधानमंत्री स्वयं बच्चों से बात करें, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रधानमंत्री से बात करने का, संवाद करने का अवसर मिल रहा है। तो राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ वो बात करते हैं, सीधा संवाद करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, शिक्षक करते हैं, अभिभावक करते हैं, और इसको एग्जाम वॉरियर्स अभियान भी उन्होंने आरंभ में चलाया। ये मुझे लगता है बहुत ही समीचीन था और सामयिक भी था, क्योंकि एक समय ऐसा आया, बिल्कुल सही है, मैं भी उसी समय की उपज हूँ, जब आपने कहा टेलीविजन भी बंद, घर में मेहमानों का आना भी बंद, कमरा भी बंद, और बच्चे के लिए जैसे सजा हो उसे एक एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और अधिक से अधिक मार्क्स लेने, उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, और एक एग्जाम ना हुआ ऐसा लगता था जैसे जीवन वहीं रुक गया है, और वहीं रुककर उसको सफलता ही हासिल करनी है, उसके बाद उसका दरवाजा खुलेगा। उसमें बहुत बड़ा बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद से आया है, और इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण अब तक, नौवां संस्करण 2026 में हुआ था उसमें इतने पंजीकरण हुए, और सहभागिता भी बहुत बड़ी है, क्योंकि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, अलग अलग श्रेणियों में पंजीकरण कराते हैं, और उद्देश्य भी ये है परीक्षा के तनाव को कम करना। यहाँ मैं विशेष तौर पर एक आंकड़ा लेना चाहती हूँ कि हमारे देश के यदि विद्यालयों के आंकड़े हम लें तो विद्यार्थी माध्यमिक स्तर तक तो एनरोलमेंट 88.5% है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक ये घटकर 56.4% हो जाता है। मुझे लगता है कि इनको भी एड्रेस करना अवश्य ही माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य रहा होगा, ताकि जीवन के प्रति, परीक्षा के प्रति, अंकों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो, और तनाव कम हो तो व्यक्ति अपने आप अवसर देखने लगता है, खोजने नहीं पड़ते पर उसको प्राप्त कर सकेंगे।
1: संजीव जी, आखिर में परीक्षा पे चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा स्ट्रेस को कम करना, और कहीं ना कहीं उससे जो परिणाम हमें देखने को मिले वो बहुत शानदार रहे। संक्षेप में, कार्यक्रम में समय कम है, क्या बताएंगे आप?
0: जी, ये जो परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इनिशिएटिव शुरू किया, इसका पर्पस मेनली यही था कि हाउ टू अप्रोच एग्जाम्स इन अ स्ट्रेस फ्री एंड इजी मैनर। सो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री

0: ने इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ और पेरेंट के साथ, मैं आपको बता दूं कि टोटल इस इनिशिएटिव के साथ अभी तक टोटल 4.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी, यू नो, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स जुड़ चुके हैं। 4.2 करोड़ तो स्टूडेंट्स ही हैं, 25 लाख टीचर्स हैं, 6 लाख पेरेंट्स हैं, और पहला संस्करण इसका 16 फरवरी 2018 को हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसमें काफी पहलू उठाए। फॉर एग्जांपल, 1 2024 में उन्होंने इस पे बहुत इंपॉर्टेंटली बच्चों को यह भी बताया कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए रीले देखने में, और हैव एनफ स्लीप, नींद बहुत जरूरी है ताकि अगले दिन फ्रेश होके अपना एग्जाम दे सके। उन्होंने पहले एक बारी पबजी का भी, जो बहुत रेज की तरह बच्चों में फैल चुका था, बाद में तो गेम बैन हो गई, लेकिन पबजी के बारे में भी मेंशन किया कि वो बच्चे नहीं उसमें करें। सो ये जो इनिशिएटिव था, बेसिकली बहुत स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसके साथ अपने अनुभव भी उसके साथ जोड़ देते हैं।
1: तो श्रोताओं, शाला प्रवेश उत्सव से शुरू हुई प्राथमिक शिक्षा की एक छोटी सी चिंगारी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत और गति शक्ति विश्वविद्यालय जैसे वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। गुजरात के दूर दराज के गांव में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए एक संकल्प से लेकर आज 145 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत 2047 के सपने तक, ये यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि सोच के परिवर्तन की यात्रा है। जब देश का शीर्ष नेतृत्व शिक्षा को केवल कागजी डिग्रियों तक सीमित न मानकर हर बच्चे के आत्मविश्वास, उसके मानसिक स्वास्थ्य, उसकी मातृभाषा और उसकी कुशलता से जोड़ता है, तब जन सेवा की यही भावना वास्तव में एक स्वर्णिम देश सेवा का रूप ले लेती है। चर्चा में शामिल होने के लिए संजीव जी आपका और सुषमा जी आपका बहुत बहुत आभार।
0: जी बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: अभी आप सुन रहे थे चिल्लर पार्टी फिल्म का गीत। हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती। चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं डी डे फिल्म का गाया हुआ एक गीत, और इस गीत को गाया है मुनव्वर मासूम जावेद अली और शंकर महादेवन ने। निरंजन अयंगर के बोल हैं और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

रीरे फिल्म के इस कव्वाली में आवाजें थी मुनव्वर मासूम, जावेद अली और शंकर महादेवन की, और ये थी आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा 72। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, बुलबीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और

0: लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
3: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
4: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर, कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
6: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने

0: की दिशा में एक अहम कदम है।
1: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
0: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
3: So if you want to make more export,
4: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
3: 6%
2: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उड़ी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
5: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
6: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया हुआ बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
7: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं। यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।

0: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
1: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा ड्राइवर भाइयों, सारथी भाइयों से कि सभी सरकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सरकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो रीजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
0: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया के हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेइचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबद्ध संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भालाफेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहते हैं और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार। विविध भारती के सुपरहिट प्रोग्राम आज के फनकार में बॉलीवुड के एनर्जेटिक, डायनामिक, डैशिंग, हैंडसम, वेरी टैलेंटेड एक यंग सक्सेसफुल एक्टर की बातें और उनकी फिल्म्स के गीतों के साथ हमें शिफाली क

इस सुपरहिट सॉन्ग और ब्यूटीफुल फिल्म ने इस यंग एक्टर को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, जिसमें उनकी अदाकारी के जलवों ने तो ऐसा कमाल किया कि देखते ही देखते लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन बैठे बॉलीवुड के डैशिंग अट्रैक्टिव यंग स्टार द वन एंड ओनली रणबीर कपूर।

बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर, उनके बेटे बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय अभिनेता ऋषि कपूर और उनके बेटे रणबीर कपूर 28 सितंबर 1982 को मुंबई में पैदा हुए। ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे, जिन्होंने अपनी फैमिली में बचपन से ही स्टारडम का स्वाद चखा है। एक सेलिब्रिटी फैमिली में जन्मे रणबीर एक स्टार चाइल्ड रहे हैं, जिनके पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ, लेकिन साथियों, रणबीर के भीतर संघर्ष का जज्बा बेशुमार।

मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पढ़े रणबीर ने क्लास टेंथ के बाद सन 1999 में अपने फादर ऋषि कपूर को असिस्ट किया और वो फिल्म थी आ अब लौट चलें। एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पढ़ाई पूरी करने के बाद रणबीर कपूर का क्रिएटिव माइंड कुछ नया सीखने की चाहत लिए फिल्म मेकिंग और अभिनय को निखारने के लिए पहुंच गया न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स और ली स्ट्रेसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट।

साल 2005 न्यूयॉर्क से लौटते ही बिना समय गंवाए रणबीर निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ उनकी फिल्म ब्लैक के लिए उन्हें असिस्ट करने लगे। संजय लीला भंसाली की पारखी नजरों ने रणबीर में छुपा हुआ एक उभरता सितारा देख लिया। और फिर क्या था, फिर सन 2007 जब संजय लीला भंसाली ने न्यू कमर्स को लेकर अनाउंस की अपनी फिल्म सांवरिया, जिसमें डेब्यू किया रणबीर कपूर और सोनम कपूर ने। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खरी नहीं उतरी, लेकिन रणबीर रातों रात युवा दिलों की धड़कन बन बैठे।

इसके बाद आया साल 2008 जिसमें रणबीर कपूर को मिली अपने करियर की पहली सफलता। फिल्म थी बचना है हसीनो। जी हाँ साथियों, दीपिका पादुकोणे के साथ वो पहले पर्दे पर इनकी जोड़ी दर्शकों ने खूब सराही और इस फिल्म का म्यूजिक भी बेहद हिट रहा।

साल 2008 के बाद तो रणबीर कपूर एक एस्टेब्लिश सक्सेसफुल स्टार बन गए और साल 2009 की बात करें तो इनकी फिल्में लगातार हिट होती गईं। एक के बाद एक हिट फिल्म्स का सिलसिला चल निकला और अपनी दमदार एक्टिंग से रणबीर ने सबके दिलों में जगह बना ली। अयान मुखर्जी की वेकअप सेड हो या राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी या फिर रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, साल 2009 की इन फिल्मों ने रणबीर को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया, यानी देखते ही देखते स्टारडम रणबीर की झोली में आ गया।

रणबीर कपूर की तमाम फिल्म्स ऐसी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई तो नहीं कर पाई, लेकिन उन फिल्म्स में अपने शानदार दमदार अभिनय के जलवों से सबका दिल जीत लिया रणबीर ने। प्रकाश झा की फिल्म राजनीति में तो इनके अभिनय की भरपूर प्रशंसा हुई।

साल 2011 में जहां एक ओर बच्चों की फिल्म चिल्लर पार्टी में रणबीर ने एक आइटम नंबर किया, तो दूसरी ओर इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार में जॉर्डन जाखड़ का रोल बखूबी प्ले करके ढेरों वाहवाइयां लूटी, जो कि उस वर्ष की सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्मों में से एक थी।

रणबीर कपूर का स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी डांसिंग स्टाइल, उनका ड्रेस सेंस, उनकी अदायगी, सब कुछ शानदार है। तभी तो है रणबीर युवा दिलों की धड़कन। रणबीर कपूर के कैरियर का ग्राफ बढ़ता ही गया। साल 2012 अनुराग बसु की फिल्म बर्फी में नजर आए रणबीर कपूर, जिसमें उनके साथ थी प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज। एक बेहतरीन फिल्म रणबीर

साल 2013, अयान मुखर्जी की फिल्म ये जवानी है दीवानी में दीपिका के साथ रणबीर की जोड़ी ने रुपहले पर्दे पर एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया।

साल 2015 में आई तमाशा, साल 2016 की सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्म साबित हुई करण जौहर की ऐ दिल है मुश्किल, जिसमें रणबीर के साथ थी खूबसूरत ऐश्वर्या राय और चुलबुली अनुष्का शर्मा। और इस फिल्म के लिए रणबीर को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया।

0: एक बेटा।
1: बॉलीवुड के इस यंग एनर्जेटिक हैंडसम स्टाइलिश एक्टर रणबीर कपूर को फिल्मों के अलावा फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। सोशल वर्क्स में भी रणबीर हमेशा आगे आते हैं। साल 2012 में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जोया अख्तर की एक शॉर्ट फिल्म में कुछ फिल्मी हस्तियों के साथ भी नजर आए रणबीर कपूर।

रणबीर कपूर स्टाइलिश यंग एक्टर ऑफ बॉलीवुड, जिन्हें 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, इनकी झोली में है 5 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, 2 स्टारडस्ट अवार्ड्स और 4 जी सिने अवार्ड्स।

श्रोताओ, आज के इस प्रोग्राम में बॉलीवुड के चमकते सितारे रणबीर कपूर के बारे में, उनकी फिल्म्स के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके उसे सरल सजीले शब्दों में पिरोकर आपके लिए पेश किया शिफाली कपूर ने। प्रस्तुति सहयोगी आकांक्षा सिंह, विविध भारती के इस सुपरहिट प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी। अब दीजिए इजाजत शिफाली कपूर को, नमस्कार। आज के फनकार।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुनेंगे छाया गीत बस कुछ ही लम्हों बाद।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों के लिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानव अधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगौड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगौड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग की 17वीं बैठक में व्हेल और अन्य समुद्री स्तनधारी